आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो शशि के साथ।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी
1: सारेंदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कन तुह सारी कार्यक्रम सुना देना
2: माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्या।

तुहा सारे दा अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कनिश्वतो तुहा सारे इस कार्यक्रम सुना दे माटी दी मैं ता सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तुहा सारे इये बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गुंज अपने बंदी।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तुहां सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कनेक्शन तुहां सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दिन कार्यक्रम दा अगला गीत।

कानवा दशमलव 2 MHz पर ए है तुहा सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कने तुहा सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महका। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही, तुहा सारे ए बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए है तोहां सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कने तोहां सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महका। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही, तोहां सारे ए बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात दे करके उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए, वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी।

0: फिर भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठे हैं?
1: पता नहीं तुझे उसे टीबी है।
2: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले।
3: पता है ना मुझे टीबी है।
2: चल तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी के दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है, तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: Oh, no. देख लो कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
5: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही रहेगा लगता, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे, इस घर में और रहते ही कौन है?
7: भारी मिस्टेक हो गया सर।
6: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी।
1: आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने, नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

नमस्कार, 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। विदेश से MBBS करने वाले छात्रों के लिए अब एक वर्ष होगी इंटर्नशिप। बैच वाइज भर्ती में योग्यता को नजरअंदाज करना गैर कानूनी। HPU में अत्याधुनिक हाई परफॉर्मेंस AI वर्क स्टेशन प्रणाली शुरू। अब पहले से कठिन नहीं लगेंगे गणित के सवाल। 30 जुलाई से शुरू होगी किन्नर कैलाश यात्रा। अब समाचार विस्तार से। दुनिया जलवायु परिवर्तन, बढ़ते कार्बन उत्सर्जन और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर बढ़ती निर्भरता जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे समय में हिमाचल प्रदेश सरकार की सौर ऊर्जा भविष्य के सबसे भरोसेमंद और टिकाऊ ऊर्जा के रूप में ग्रीन पंचायत योजना उभर कर सामने आई है। इस योजना के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार इस प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में हरित ऊर्जा आधारित विकास का नया मॉडल विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ग्रीन पंचायत की इस पहल के तहत जिला कांगड़ा के लंच के समीप गुब्बर परघोड़ में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा चुका है। ये परियोजना वर्तमान में कमिश्निंग के अंतिम चरण में है और शीघ्र ही बिजली उत्पादन शुरू करेगी। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर उपायुक्त कार्यालय परिसर में सहायक आयुक्त विवेक चौहान के नेतृत्व में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा तथा देश की सुरक्षा के लिए सदैव समर्पित रहने की शपथ ली। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए उनके अदम्य साहस, वीरता और सर्वोच्च बलिदान को स्मरण किया। वर्ष 1999 में भारतीय सैनिकों ने अत्यंत विषम परिस्थितियों में अद्वितीय शौर्य का परिचय देते हुए दुश्मनों को परास्त कर देश की सीमाओं की रक्षा की थी। ये विजय पूरे राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है। देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। राज्य सरकार ने दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के परिवारों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए निदेशालय भर्ती हिमाचल प्रदेश के माध्यम से जुलाई 2026 के दौरान करुणा मूलक रोजगार नीति के तहत विभिन्न विभागों में 94 ग्रुप सी कर्मचारियों को नियुक्ति प्रदान की है। ये नियुक्तियां जल शक्ति, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, गृह तथा बागवानी विभागों में की गई हैं। सरकार ने सभी विभागों की ये भी निर्देश दिए हैं कि वे करुणा मूलक नियुक्ति के वास्तविक मामलों को प्राथमिकता के आधार पर भेजें, ताकि पात्र आश्रितों को बिना अनावश्यक विलंब के रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। करुणा मूलक रोजगार नीति के तहत नियुक्ति प्राप्त करने वाले कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों को करुणा मूलक नियुक्ति के मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने के निर्देश दिए, जिससे वर्षों से लंबित पात्र परिवारों को राहत मिली है। मत्स्य संरक्षण एवं प्रजनन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर वर्ष लागू होने वाले मछली पकड़ने के प्रतिबंध के दौरान मछुआरों को होने वाली आर्थिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना शुरू की है। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के जलाशयों में मत्स्य पालन से जुड़े पात्र मछुआरों को वित्तीय सहायता एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। हर वर्ष मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की अवधि के दौरान आजीविका के लिए मुख्य रूप से मत्स्य पालन पर निर्भर बड़ी संख्या में मछुआरों की आय अस्थायी रूप से बंद हो जाती है, जिससे उनके परिवार आर्थिक संकट का सामना करते हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार ने प्रतिबंध अवधि के दौरान प्रत्येक पात्र लाभार्थी को प्रतिवर्ष 3500 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस योजना का उद्देश्य गैर मत्स्य अवधि में समयबद्ध वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर मछुआरों की आजीविका को सुरक्षित बनाना है। पर्वतीय प्रदेश हिमाचल में प्राकृतिक जल स्रोतों, झरनों, खड्डों और नदियों का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग और जल शक्ति विभाग के माध्यम से एक अभिनव एवं व्यवहारिक मॉडल अपनाया है। राज्य सरकार ने अलग अलग फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के बजाय सह उपचार को ट्रीटमेंट मॉडल को अपनाया है।
इस मॉडल के अंतर्गत मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का उपयोग फिकल सल्ज के वैज्ञानिक उपचार के लिए किया जाएगा। ये व्यवस्था हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है, जहां सीमित भूमि, दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां और व्यापक वन क्षेत्र बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समक्ष चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान विदेश के मेडिकल कॉलेजों से ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले MBBS स्नातकों को हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐसे पात्र विदेशी चिकित्सा स्नातकों की इंटर्नशिप अवधि को 2 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों की बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण और मार्गदर्शक कानूनी सिद्धांत स्पष्ट किया है। अदालत ने साफ किया है कि एक ही साल या बैच में डिग्री पूरी करने वाले उम्मीदवारों के मामले में नियुक्ति का आधार केवल प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख नहीं हो सकता। यदि किसी उम्मीदवार के कुल अंक अधिक हैं तो उसे ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए, अन्यथा मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया का मूल उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। बैच वाइज भर्ती में योग्यता को नजरअंदाज करना गैर कानूनी है। HPU के सेंटर फॉर ग्रीन एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी के शनिवार को हाई परफॉर्मेंस AI वर्क स्टेशन प्रणाली का कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने उद्घाटन किया। उनका कहना है कि इस नई व्यवस्था से AI नवीकरणीय ऊर्जा, नैनो टेक्नोलॉजी और कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शोध कार्य को नई गति मिलेगी। कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने कहा कि अब शोधार्थी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, जटिल वैज्ञानिक सिमुलेशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मॉडल तैयार करने, डिजिटल ट्विन तकनीक विकसित करने और बड़े पैमाने पर डेटा विश्लेषण जैसे कार्य पहले की तुलना में अधिक तेज और प्रभावी ढंग से कर सकेंगे। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की बुनियादी पढ़ाई लिखाई और गणितीय समझ को मजबूत बनाने के लिए हिमाचल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार और लखनऊ स्थित DEVI संस्थान के बीच पूरे प्रदेश में AALA FA कार्यक्रम लागू करने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि ALFA पद्धति को पहले शिमला और सोलन के कुछ शिक्षा खंडों में पायलट परियोजना के रूप में लागू किया गया था। वहां बच्चों की पढ़ने, लिखने और गणित समझने की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार देखने के बाद इसे पूरे प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में लागू करने का निर्णय लिया गया है। देवभूमि किन्नौर स्थित पंच कैलाशों में से एक पवित्र किन्नर कैलाश यात्रा 2026 का शुभारंभ 30 जुलाई से होगा। हालांकि यात्रा की अवधि पूरी तरह मौसम की परिस्थितियों पर निर्भर रहेगी और आवश्यकता पड़ने पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। शनिवार को SCM कल्पा एवं किन्नर कैलाश यात्रा आयोजन समिति के अध्यक्ष पदम भारद्वाज की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में वन, पुलिस, स्वास्थ्य, होमगार्ड, जल शक्ति, राजस्व तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। आयोजन समिति ने टेंट संचालकों को निर्धारित नियमों का पालन करते हुए 2 दिन के भीतर शपथ पत्र जमा करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात दे करके उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए, वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी।

0: फिर भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
1: तुझे उसे टीबी है।
2: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले।
3: पता है ना मुझे टीबी है।
2: चल तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है। तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: Oh, no. देख लो कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
5: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही रहेगा लगता, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे इस घर में और रहते कौन है।
7: भारी मिस्टेक हो गया सर।
6: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी इस समय ट्यून इन हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। सुबह के 9 बज गए हैं और श्रोताओं, ये समय रहता है आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला का। तो श्रोताओं, सभी श्रोता हमारे जो है नियमित श्रोता, वो ज़रूर रेडियो सेट के साथ बैठ गए होंगे और उन सभी को मालूम है कि कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अब शुरू होने वाला है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है और आपको बता दूं, आज के इस कार्यक्रम में मैं आपकी रेडियो दोस्त सुषमा हूँ आपके साथ। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे और अपने काम कर भी रहे होंगे और साथ में मनोरंजन के लिए आपने रेडियो गुंजन धर्मशाला को अपने साथ रख लिया होगा, जानकारियाँ भी आपने इसमें जाननी है। और श्रोताओं, कार्यक्रम का समय जैसे कि आप सभी जानते हैं 9:00 से लेकर 11:00 तक का रहता है। तो आज के इस सफ़र में भी आपके साथ रोज़ाना की तरह होंगी बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियाँ भी आप तक पहुँचाई जाएंगी श्रोताओं, और प्यारे प्यारे गीत तो हम लेकर आते ही हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं श्रोताओं, रोज़ाना की तरह एक अच्छे से विचार के साथ, अच्छी सी लाइनों के साथ। छोटी छोटी खुशियाँ ही तो जीने का सहारा बनती हैं, इच्छाओं का क्या, वो तो पल पल बदलती हैं। बिल्कुल श्रोताओं, छोटी छोटी खुशियाँ ही हैं जो हमें जीने के लिए प्रेरित करती हैं और आगे बढ़ाती हैं। तो छोटी छोटी खुशियों को संजो कर रखिए, और आज भी अगर आप कोई खुशी मना रहे हैं, किसी का जन्मदिन है, किसी की सालगिरह है या जो भी है, तो उसकी भी ढेरों आपको शुभकामनाएं। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला की शुरुआत हमने कर दी है श्रोताओं बातों के साथ, और आज खास क्या रहने वाला है उस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। फिलहाल के लिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। जितने भी श्रोता कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं उनका स्वागत है, और जो नहीं जुड़े हैं उनसे हम यही कहेंगे कि जल्द से जल्द रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़िए, हमारी बातों के साथ जुड़िए। लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं माई नेम इज़ खान फिल्म से, और इसके गीत को आवाज़ों से सजाया है श्रेया घोषाल और अदनान सामी ने।

0: भाभी, उस वक्त आपने जो कुछ कहा गुस्से में कहा।
1: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला का आगाज़ हमने कर दिया इस प्यारे से गीत के साथ। श्रोताओं, बहुत सारे गीत कार्यक्रम में आपको आज सुनाए जाएंगे और रोज़ाना हम सुनाते भी रहते हैं, और श्रोताओं कार्यक्रम में जानकारियाँ भी आप तक पहुँचाते हैं, और साथ ही बरसात का ये समय है और ऐसे में आपके साथ बहुत ख़ास बात भी आज आपके साथ रहने वाली है। श्रोताओं, फ़िलहाल के लिए कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं, और आप सभी जानते हैं कि हम बात करते हैं मौसम के बारे में। तो मौसम की बात अगर की जाए तो पहाड़ों की अगर हम बात करें तो पहाड़ों में कहीं ना कहीं इस समय भी बारिश हो रही होती है और वहाँ का तापमान भी ठंडा रहता है श्रोताओं। और थोड़ा सा अगर मैदानी इलाकों की ओर जाएं तो वहाँ बारिश कम होती है। धर्मशाला की अभी की अगर बात करें तो अभी इस समय तो बारिश नहीं है, लेकिन बादल जो हैं वो छाए हुए हैं, कभी भी बारिश की बूंदें पड़ सकती हैं। धर्मशाला में हम रहते हैं तो धर्मशाला की ही बात हम फिलहाल करेंगे श्रोताओं। धर्मशाला का आज का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। साथ ही हवा में नमी की अगर बात करें तो 93% हवा में नमी बनी हुई है, और आज भी हल्की फुल्की बारिश होने के आसार है। दोपहर बाद तक आपको बारिश नज़र आएगी। तो श्रोताओं, ऐसे में हम यही कहेंगे कि आप अपना ख्याल रखिए और मौसम के हिसाब से ही अपने प्लान बनाइए। मौसम की विस्तृत जानकारी भी श्रोताओं आप तक पहुंचाते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 28 से 31 जुलाई के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 27 जुलाई को अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने का येलो अलर्ट है। इसके बाद बात करेंगे 28 से 31 जुलाई तक कई क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश का दौर चलने का अनुमान है। साथ ही 1 अगस्त को भी प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। श्रोताओं, बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो 65.2 मिलीमीटर वर्षा जो है मंडी जिला में और सुंदरनगर में रिकॉर्ड की गई। साथ ही श्रोताओं, शिमला के जुब्बलहट्टी में 47.6 और बिलासपुर के बरंठी में 42.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तो श्रोताओं, ऐसे में हम यही कहेंगे कि बारिश का ये मौसम है, बरसात का ये मौसम है, और ऐसे में आप अपना ख्याल रखें और बिना मतलब कहीं भी बाहर ना जाएं, अपने आप को सेफ रखें। श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और कार्यक्रम में फिर से हम लेंगे कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। चलिए सुनते हैं इस गीत को आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला पर।

0: बत्ती गुल मीटर चालू, इस फिल्म का गीत श्रोताओं अभी आपने सुना आतिफ अली की आवाज़ में। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला भी आप सुन रहे हैं श्रोताओं, और कार्यक्रम को आप 88.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हमीरपुर के डटवाल की आवाज़ पर भी सुन रहे हैं और सुनते भी हैं। तो हमीरपुर के भी सभी श्रोताओं को सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं वहाँ के श्रोता भी हमारे बिल्कुल ठीक होंगे और हमारे साथ जुड़े होंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में जैसा कि आप जानते हैं 9:20 पर आपको सुनवाते हैं समाचार। तो समाचारों से पहले लीजिए सुनते हैं एक और गीत, सूरमा, इस फिल्म का गीत श्रोताओं अब आपके रेडियो सेट पर भेज रहे हैं दिलजीत दोसांझ की आवाज़ में।
1: कभी मैं हूँ

0: ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बोह में बादल फटने की घटना से प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। क्षेत्र के लिए 8.5 लाख देने का किया ऐलान। सरकार लोकसभा में आज पेश करेगी लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल 5 दिवसीय शिमला दौरे पर। और मीराबाई चानू ने ग्लासगो में आयोजित 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है, जिसका नेतृत्व प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा और इसकी रिपोर्ट के आधार पर आगामी परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश की परीक्षा प्रणाली विश्वसनीय, पारदर्शी होनी चाहिए और प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार आज संसद में परीक्षाओं से संबंधित कड़े कानूनी प्रावधानों वाला एक नया कानून पेश करने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता की रक्षा करने और लाखों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया।
1: पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
0: सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया जा रहा है। इसे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने त्वरित न्यायालयों की स्थापना और पेपर लीक तथा परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के मामलों में कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कल शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बोह क्षेत्र में बादल फटने की घटना से प्रभावित इलाकों का दौरा कर राहत व पुनर्वास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बोह में स्थापित राहत शिविर का निरीक्षण किया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बोह क्षेत्र के बेघर परिवारों को गृह निर्माण और अन्य सामान के लिए 8.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गाय या भैंस आपदा के लिए 55,000 प्रति पशु और बकरियों के लिए 15,000 प्रति बकरी की सहायता राशि दी जाएगी। जिन घरों में बाढ़ या आपदा का पानी घुसने से नुकसान हुआ है, उन्हें 1 लाख व क्षतिग्रस्त दुकानों के लिए नुकसान के आधार पर 50,000 रुपए से 1 लाख तक की सहायता राशि दी जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रिटकमार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने की घोषणा भी की।
2: राशन भी मिलेगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। ये हमारी योजना है और मैंने आपको जो पैकेज दिया है उसकी पहली किस्त आपको आगे आने वाले समय में सब अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, जिसका भी अकाउंट है, जिसकी जितनी बकरी मरी है, पटवारी की रिपोर्ट आएगी, पार्सली डैमेज रिपोर्ट आएगी, जो मैंने घोषणा की है।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के दूरदर्शी स्वप्न दृष्टा थे। उन्होंने कहा कि स्वदेशी मिसाइल और अंतरिक्ष कार्यक्रमों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का योगदान भारतीय विज्ञान के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अंकित है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने देश भर के लाखों युवाओं में आत्मविश्वास, नवाचार और राष्ट्र निर्माण की भावना को जागृत किया। रंग बिरंगी रोशनी, संगीत और लोक संस्कृति की अनुपम छटा के बीच 8 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या का कल रात भव्य आगाज हुआ। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ हुई, जिसमें विभिन्न राज्यों और हिमाचल के कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान के नेतृत्व में आयोग का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल कल से 5 दिवसीय शिमला दौरे पर है। इस दौरान आयोग अनुसूचित जाति समुदाय के कल्याण, अधिकारों के संरक्षण व विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करेगा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
3: अनुसूचित जाति आयोग आज 27 जुलाई को सफाई कर्मचारी कल्याण से जुड़े गैर सरकारी संगठनों, सफाई कर्मचारियों व नगर निगम शिमला के अधिकारियों के साथ नगर निगम कार्यालय में बैठक करेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय IGMC, एम्स चम्याणा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी शिमला के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। स्तर पर संचालित योजनाओं व समस्याओं की जानकारी प्राप्त करेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने ग्लासगो में आयोजित 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में 190 किलोग्राम के रिकॉर्ड तोड़ भारोत्तोलन के साथ शानदार प्रदर्शन किया। 31 वर्षीय इस भारोत्तोलक ने स्नैच में 85 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 105 किलोग्राम भार उठाकर राष्ट्रमंडल खेलों के लिए नए रिकॉर्ड बनाए। इस जीत के साथ ही उन्होंने 2018 और 2022 में स्वर्ण पदक जीतने के बाद लगातार तीसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मीराबाई चानू को उनकी इस उपलब्धि पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने उनके समर्पण, दृढ़ता और निरंतर उत्कृष्टता की प्रशंसा की, जबकि प्रधानमंत्री ने इस जीत को भारतीय भारोत्तोलन के इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय बताया। सिरमौर जिला में केंद्र सरकार की रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS के अंतर्गत 194,42,00,000 की राशि खर्च की जा रही है। ये परियोजना सिरमौर जिले की विद्युत व्यवस्था को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप मजबूत बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। पेश है ये रिपोर्ट।
4: की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत नाहन विधानसभा क्षेत्र में 86,75,00,000, पांवटा साहिब में 70,50,00,000 जबकि राजगढ़ क्षेत्र में 37,17,00,000 रुपए की राशि खर्च की जा रही है, जिससे बिजली व्यवस्था को आधुनिक बनाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
0: लाहौल आलू उत्पादक संघ का 60वां वार्षिक अधिवेशन कारगा में आयोजित किया गया।

दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के हवाले से लिखा है, न्यू कॉम्प्लेक्स प्रणाली पर शिक्षक दिवस से पहले होगा निर्णय। शाहतलाई में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, दो की मौत, कई घायल, पंजाब केसरी की एक खबर है। दिव्य हिमाचल के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का भव्य आगाज, राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने किया शुभारंभ, 8 दिन चलेगा मेला। केंद्र ने 94,805 क्विंटल दालों के आवंटन को दी मंजूरी, शीर्षक से हिमाचल दस्तक ने लिखा है, प्रदेश के डिपुओं में अब नहीं होगी दालों की किल्लत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक त्रिस्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बोह में बादल फटने की घटना से प्रभावित इलाकों का लिया जायजा, क्षेत्र के लिए 8.5 लाख रुपए देने का किया ऐलान। सरकार लोकसभा में आज पेश करेगी लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल 5 दिवसीय शिमला दौरे पर, और मीराबाई चानू ने ग्लासगो में आयोजित 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

श्रोताओं, समाचारों के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम में आज आपके साथ होने वाली है बहुत ख़ास बात श्रोताओं, और बरसात का ये मौसम है, सावन का ये महीना जो चल रहा है, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि सावन का महीना आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है, रिमझिम बारिश, मीठी की सौंधी खुशबू और हाथों में खनकती रंग बिरंगी चूड़ियाँ, यही तो है सावन की असली पहचान। कहते हैं कि सावन में हरी चूड़ियाँ पहनना खुशहाली, प्रेम और नई उम्मीदों का प्रतीक माना जाता है। लेकिन आज के समय में श्रोताओं, चूड़ियाँ सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि अपनी संस्कृति, रंगों और खुशियों को संजोने का खूबसूरत अंदाज भी है। तो इस सावन अगर आप भी चूड़ियाँ पहने तो उनकी खनक में सिर्फ श्रृंगार ही नहीं बल्कि अपने रिश्तों की मिठास, परिवार का स्नेह और जीवन की खुशियों को भी महसूस कीजिए। बिल्कुल श्रोताओं, सावन का ये महीना है और हमारी जो बहनें श्रोता हैं वो ज़रूर सावन के महीने में साजो श्रृंगार का सामान लेती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं और रंग बिरंगे सूट साड़ियाँ पहनती हैं। और कहते हैं ना कि ऐसी जो रौनक है वो घरों में देखी जाए तो अच्छा लगता है। तो चलिए कार्यक्रम को भी सजाते हैं चूड़ियों की खनखनाहट से। सुनाते हैं सनम बेवफा फिल्म का ये गीत आप सभी को लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोता, ये बहुत प्यारा गीत कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना और इस गीत को सुनकर आपको भी अपना समय याद आ गया होगा। ये जो गीत है श्रोताओं, इस गीत पर शादियों में जब भी कोई फंक्शन हुआ करता था तो बहुत सारी लड़कियां जो थी वो डांस भी किया करती थी। आजकल तो खैर बहुत सारे गीत आ गए हैं, लेकिन ये अपने समय का बहुत ही मशहूर गीत हुआ करता था जब शादियां होती थी और कहा जाता था कि चलिए डांस कीजिए, तो सबकी डिमांड रहती थी इस गीत की। तो श्रोताओं, इस गीत के साथ हमने अपनी यादें तो ताज़ा कर ली हैं और कार्यक्रम में अब हम आगे बढ़ने वाले हैं श्रोताओं, और अब समय है हमारे खास सेगमेंट की, यानी कि ऑन दिस डे की, जहां हम बात करते हैं आज के दिन के इतिहास के पन्नों में क्या क्या खास दर्ज हुआ। हर दिन श्रोताओं अपने साथ नई यादें लेकर आता है, लेकिन कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जो इतिहास में हमेशा के लिए अपनी पहचान बना लेते हैं। आज के दिन का भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, कई महान हस्तियों के जन्म हुए और कई ऐसे पल आए जिन्होंने दुनिया की दिशा बदल दी। इतिहास हमें केवल बीते हुए समय की कहानी नहीं सुनाता श्रोताओं, बल्कि भविष्य के लिए सीख भी दे जाता है। इसलिए आइए आज के दिन के इतिहास की ओर चलते हैं। 27 जुलाई के इतिहास में श्रोताओं, इंसुलिन की खोज, बग्स बनी की पहली पेशी और कोरियाई युद्ध का अंत जैसी कई बड़ी घटनाएं दर्ज हैं। 1921 की बात करें तो टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने डायबिटीज़ के इलाज के लिए इंसुलिन की खोज की थी। 1940 में अगर हम चलते हैं तो प्रसिद्ध कार्टून पात्र बग्स बनी ने ए वाइल्ड हेयर फिल्म में पहली बार अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। साथ ही 1953 की बात करें तो कोरियाई युद्ध को समाप्त करने के लिए एक युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर भी आज के दिन किए गए। साथ ही श्रोताओं, 1994 की बात करें तो भारत सरकार ने गर्भ में लिंग की जांच पर रोक लगाने वाला कानून भी आज ही के दिन पारित किया था। तो श्रोताओं, ये तो थी इतिहास की कुछ बातें, और इन बातों के साथ ही श्रोताओं आपको बताना चाहेंगे कि आज कार्यक्रम में खास बात होने वाली है बरसात की छुट्टियों की, क्योंकि हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो श्रोता हैं, आजकल अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रहे हैं। और साथ ही हम बात करेंगे 10th क्लास के बाद, जैसे ही 10th क्लास हमारी हो जाती है हमें एक सब्जेक्ट चुनना होता है, उस सब्जेक्ट को चुनने से पहले कौन कौन से सोच विचार हमें करने चाहिए, क्या प्लानिंग करनी चाहिए और कैसे हमें विषय की ओर बढ़ना चाहिए, इस विषय पर बात होगी श्रोताओं। और हम चाहेंगे कि 10 बजे के बाद हमारे नन्हे मुन्ने श्रोता या स्कूल गोइंग हैं या कॉलेज गोइंग रखते हैं और इस बातचीत का हिस्सा बन सकते हैं। उसके लिए आपको हम स्टूडियोज़ का नंबर जो है वो नोट करवाएंगे, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो नंबर रहेगा 7018117091। नंबर एक बार फिर से रिपीट करते हैं, 70181 17091, 7018117091। तो 10 बजे के बाद हमारे श्रोता अगर चाहें हमसे बात करना तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और फिलहाल के लिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का एक और अगला प्यारा सा गीत। बाजी फिल्म का गीत श्रोताओं अब आप तक पहुंचा रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आप सभी सुन रहे श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ, और कार्यक्रम का समय जैसे कि आप सभी जानते हैं प्रातः 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का रहता है। और इस कार्यक्रम में आज हम बच्चों के बारे में यानी कि बरसात की छुट्टियों पर बात करने वाले हैं। श्रोताओं सुबह का समय जब होता है और जब हम स्टूडियोज़ की ओर आते हैं तो सुबह बहुत ट्रैफिक रहता है क्योंकि बच्चों के स्कूल का समय भी हुआ होता है और बहुत सारी स्कूल वैन्स और स्कूल की गाड़ियां जो हैं वो हमें मिल जाती हैं, लेकिन आज रोड बिल्कुल खाली रहा और ऐसे में कई बार लगता है कि सच में बच्चों को छुट्टियाँ हैं और बच्चे अपने घर में इंजॉय कर रहे हैं और रोड पे ना तो हमें पेरेंट्स मिलते हैं ना ही बच्चे मिलते हैं। और आजकल बच्चे जो हैं वो मस्ती में होंगे ज़रूर, क्योंकि कहते हैं ना कि छुट्टियां जैसे ही आने वाली होती हैं तो हम दिन गिनते हैं कि बस इतने दिन और स्कूल जाना है, उसके बाद हमारी छुट्टियां शुरू हो जाएंगी और छुट्टियों की प्लानिंग जो है वो भी बच्चे करना शुरू कर देते हैं। तो आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो भी बिल्कुल आराम से सुबह उठ रहे होंगे, अपना दिन जो है बड़े ही अच्छे से बिता रहे होंगे और बच्चों को भी कोई चिंता नहीं है कि स्कूल जाना है, होमवर्क मिलना है। खैर छुट्टियों का होमवर्क जो है वो तो ज़रूर मिला होगा और वो बच्चे कर भी रहे होंगे। तो श्रोताओं थोड़ी सी बात करते हैं कि आजकल जैसे कि आप सभी जानते हैं जब छुट्टियां पड़ती हैं तो हमारा ख्याल जो है वो कहीं ना कहीं आसपास घूमने का बन जाता है, ख़ास करके आजकल मिंजर का मेला जो चंबा में शुरू हो गया है उसकी ओर हमारा ज़्यादा ध्यान जाता है। और मिंजर के मेले की अगर हम बात करें श्रोताओं तो ये मिंजर का जो मेला है इसकी शुरुआत राजा साहिल बर्मन के शासनकाल में हुई थी। त्रिगत कांगड़ा के राजा को युद्ध में परास्त करने के उपलक्ष्य में प्रत्येक व्यक्ति बर्मन ने मेले का आयोजन किया जो उसके बाद हर वर्ष मनाया जाने लगा और इस तरह मिंजर की शुरुआत हुई। श्रोताओं आपको पता भी होगा कुछ श्रोताओं को और कुछ श्रोताओं को शायद ना पता हो कि मिंजर नाम पड़ा क्यों। राजा प्रताप सिंह बर्मन ने युद्ध अभियान में सफल होकर लौटने पर चंबा के लोगों ने उनका स्वागत मक्की के बालों के गुच्छे भेंट किए क्योंकि उस समय मक्की की फसल तैयार थी। मक्की के बालों के गुच्छे को ही मिंजर कहा जाता है। श्रोताओं जब भी आप मक्की लेते हैं या मक्की खेतों में देखते हैं तो उसके ऊपर जो एक गुच्छा लटकता है बहुत ही मुलायम सी एक घास बोल सकते हैं या एक गुच्छा होता है, उसे मिंजर कहा जाता है। तो श्रोताओं मिंजर का ये जो मेला है इसे देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और बहुत सारी सांस्कृतिक जो यहाँ पर कार्यक्रम जो हैं वो भी शामिल किए जाते हैं। और मिंजर मेला में इस बार भी ऐसा ही है श्रोताओं, एक हफ्ते तक देश के मुख्य कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियाँ जो हैं वो चंबा के मिंजर मेले में होंगी। स्थानीय संस्कृति, नृत्य, संगीत, खेल और मेल मिलाप का ये पर्व माना जाता है। तो श्रोताओं अगर आप भी प्लान कर रहे हैं जाने का तो हम फिर से वही कहेंगे कि मौसम को देखकर ही अपना प्लान बनाएं और मौसम अगर ठीक नहीं है, रास्ते बंद हैं तो ना जाएं। तो कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं श्रोताओं और आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम के अगले एक और गीत की ओर, सपने साजन के। इस फिल्म का गीत शाशा घोषाल की आवाज़ में।

91.2 MHz पर श्रोता हूँ, आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आप सभी सुन रहे हैं श्रोता हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोता, हम रोज़ाना आपके साथ जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं और बातचीत में हमारे साथ आप सभी जुड़े होते हैं, हमें ये मालूम है। लेकिन जो बच्चे रहते हैं, चाहे वो स्कूल गोइंग हो या कॉलेज गोइंग हो, उन्हें जब भी छुट्टी होती है या छुट्टियां होती हैं तभी वो रेडियो के साथ जुड़ते हैं या रेडियो सुनते हैं। हम तो यही कहेंगे कि रेडियो को जितना हम सुनेंगे, हमारे बच्चे सुनेंगे, तभी उनका लगाव उस तरफ को होगा। और श्रोताओं, रेडियो पर बहुत कुछ सुनने को मिलता है, बहुत सारी जानकारियाँ भी आप तक पहुँचाई जाती हैं और बच्चों को भी इसके साथ ज़रूर जोड़ना चाहिए। और श्रोताओं, आज खास बातचीत जो है वो छुट्टियों पर ही होने वाली है, साथ ही विषय को लेकर भी हम बात करने वाले हैं कि टेंथ के बाद बच्चे जब विषय चुनने पर आते हैं तब उन्हें क्या फील होता है, क्या वो सोचते हैं, क्या सोच रख के वो विषय को चुनते हैं, इस पर बात होने वाली है श्रोताओं। और ऐसे में हम यही चाहेंगे, हम तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमारे नन्हे मुन्ने श्रोता या युवा वर्ग के जो हमारे श्रोता हैं वो हमारे साथ जुड़ना चाहें, बात करना चाहें, तो वो भी हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर रहेगा 7018117091। तो श्रोताओं, बच्चों की छुट्टियां शुरू होते ही घर में रौनक बढ़ जाती है। बच्चों के लिए ये आराम और मस्ती का समय होता है। और अगर हम अपनी बात करें तो हमें तो 2 महीने की छुट्टियां पड़ती थी और हमें हॉलीडे होमवर्क मिलता था, लेकिन हम लोग ये सोचते थे कि हॉलीडे होमवर्क हम जितनी जल्दी ख़त्म कर दें अच्छा है, क्योंकि कहीं भी अगर हमें छुट्टियों के लिए जाना है तो हम चाहते थे कि हम अपनी बुक्स को लेकर ना जाएं, हम सिर्फ वहां मस्ती ही करें। इसलिए हम दिन रात एक कर देते थे और जो 2 महीने का काम होता था उसे 4 या 5 दिन के अंदर ही ख़त्म कर देते थे श्रोताओं। और आजकल के बच्चों का भी कुछ ऐसा ही होगा ज़रूर, और होता भी है। हर कोई चाहता है कि पढ़ाई से हम फटाफट से छूट जाएं और मस्ती करें। तो श्रोताओं, आज खास बात इसी बारे में होने वाली है, तो आप सभी जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। चलिए तब तक सुनाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत कार्यक्रम में, लीजिए सुनिए आदमी खिलौना है फिल्म का गीत। अभी आप सुनेंगे अलका याग्निक और पंकज उदास की आवाज़ों में।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं। और जैसा कि कार्यक्रम में हम आपको बता रहे हैं कि आज हम बात करने वाले हैं बरसात की इन छुट्टियों की, जो कि हिमाचल में पहाड़ी इलाकों में बच्चों को पढ़ती हैं, और ऐसे में बच्चे छुट्टियों को एंजॉय करते हैं और ज़रूर रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ भी वो जुड़े होंगे और हमारे साथ बात कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। श्रोताओं, ये जो छुट्टियां होती हैं ये कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा ब्रेक पढ़ाई से मिलता है इसमें, और बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा मस्ती से घर पर रहते हैं और अपने बड़े बुज़ुर्गों के साथ भी समय बिताते हैं। जहाँ भी उन्हें जाना होता है उसके लिए उन्हें खुला समय मिलता है। तो श्रोताओं, अपने रिश्तों को कभी भूलना नहीं चाहिए और ज़रूर उनके साथ जुड़े रहना चाहिए, और ये छुट्टियाँ ही एक बहाना होती हैं हमें हमारे और रिश्तों के साथ जुड़ने का। कुछ लोग छुट्टियाँ पड़ते ही नानी के घर जाते हैं, मामा के घर, बुआ के घर, और ऐसे ही बहुत सारे रिश्ते हमारे आज भी हैं, और छुट्टियों का इंतज़ार जैसे हम किया करते थे वैसे ही आजकल के बच्चे भी करते हैं और ज़रूर छुट्टियों को एंजॉय करते हैं। तो श्रोताओं, आप सभी, मुझे लगता है कि कोई श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम करेंगे बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग मैम।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: मैं शौर्या बोल रहा हूँ।
0: शौर्या, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैम दाढ़ी।
0: अच्छा, आप कार्यक्रम को सुन रहे हैं?
1: यस मैम।
0: अच्छा, तो फिर आज छुट्टियों की बात हो रही है और आप, मुझे लगता है कि छुट्टियों को एंजॉय कर रहे हैं, है ना शौर्या?
1: यस मैम
0: जी। और बताइए, आपको छुट्टियों में हॉलीडे होमवर्क तो मिला होगा?
1: यस मैम।
0: बहुत ज़्यादा या बहुत कम?
1: मैम ठीक ही मिला है, जितना मैं कर सके।
0: ठीक ही मिला है। अच्छा, आपने कर लिया या अभी करना है?
1: मैं भी थोड़ा किया, मैम थोड़ा बचा भी।
0: ओके, थोड़ा बचा है, थोड़ा करना है। और छुट्टियों का बताइए, आप कहाँ घूमने जा रहे हैं, कहीं गए हैं या नहीं?
1: मैम बुआ घर।
0: बुआ घर जा रहे हो, ठीक है। छुट्टियों को एंजॉय कीजिए और अपनी मम्मी पापा का भी हाथ बटाइए काम करने में, और ज़रूर छुट्टियों को एंजॉय कीजिए। और आप मुझे ये बताइए, रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सुनते हैं या आज ही सुन रहे हो?
1: मैम सुनता हूँ, तब सुन लेते हैं।
0: जब आप?
1: मैम जब हमारे दादा दादी लगाते हैं तब सुन लेते हैं।
0: जब दादा दादी लगाते हैं तब आप सुन लेते हैं, तो दादा दादी को शुक्रिया कि वो रेडियो गुंजन को लगाते हैं, लेकिन आप भी कोशिश कीजिए कभी लगाने की, और जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। और शौर्या, आपने कार्यक्रम में फ़ोन किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में हमारे साथ बच्चे जुड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ उन तक पहुंच रही है, और बच्चों से बात करके हमें भी अच्छा लगता है। तो इसी तरह से जुड़िए हमारे साथ, तब तक के लिए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत। लीजिए श्रोताओं, ये गीत आप तक पहुंचा रहे हैं मस्ती की पाठशाला रंग दे बसंती फिल्म से, ए आर रहमान और नरेश अय्यर की आवाज़ों में।

0: हेलो
1: हेलो,
0: हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कौन
1: मॉर्निंग मैम।
0: बोल रहा है?
1: राध्या बोल रही हूँ, धर्मशाला
0: आराध्या बोल रहे हैं। आराध्या जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: से।
0: कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आराध्या?
1: फिफ्थ
0: कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
1: में।
0: फिफ्थ में पढ़ते हैं। और रेडियो गुंजन धर्मशाला सुन रहे हैं? कार्यक्रम सुन रहे हो आप?
1: जी, मेरे दादू लगाते हैं दुकान में, सुनती हूँ। सही
0: सबके दादू दादी ही फ़ोन रेडियो गुंजन लगाते हैं, बच्चे नहीं लगाते हैं। कोई बात नहीं, चलो दादा दादी ही लगाते हैं, आप लोग सुनते हैं। और आराध्या बताइए, आपकी छुट्टियाँ कैसी चल रही हैं?
1: चल रही
0: अच्छी चल रही हैं, लेकिन आपकी आवाज़ से नहीं लग रहा कि अच्छी चल रही हैं। अच्छी चल रही हैं?
1: है। जी,
0: अच्छा, छुट्टियों में कहाँ जा रहे हो आप?
1: मामी घर, बुआ घर, मासी
0: नानी घर, बुआ घर और मासी घर।
1: घर।
0: हाँ जी बिल्कुल, जाइए एंजॉय कीजिए छुट्टियों को। और हॉलिडे होमवर्क हो गया या करना है अभी?
1: अभी करना
0: लर्न करने के लिए दिया है, अभी करना है। ठीक है
1: है।
0: आराध्या, ज़रूर आप अपना हॉलिडे होमवर्क भी कीजिए और छुट्टियों को भी एंजॉय कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आराध्या। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में हमारे साथ जुड़ रहे हैं बच्चे और हम अब आपको सुनवाने जा रहे हैं वही गीत जो हमने छोड़ दिया था बीच में ही।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं, और इस कार्यक्रम का समय रहता है प्रातः 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का। और खास आज हम बात कर रहे हैं छुट्टियों की, और जो कॉल्स आई हैं, मुझे लगता है एक कॉल और आ गई है, तो श्रोताओं जुड़ते हैं इनके साथ। हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
1: यस मैम।
0: कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, अपना नाम बताइए।
1: मैं दाढ़ी से बोल रही हूँ।
0: हाँ, दाढ़ी से बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं भाई। कौन बोल रहे हैं दाढ़ी से?
1: सायरा।
0: सायरा, सायरा जी गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग मैम।
0: क्या कर रहे हो बच्चे?
1: मैम कुछ नहीं।
0: छुट्टियां पड़ गई आपको भी?
1: यस मैम।
0: अच्छा जी, और हॉलीडे होमवर्क कितना मिला है, ज़्यादा या थोड़ा?
1: मैम ज़्यादा मिला है।
0: ओ माय गॉड, तब तो आपकी मैम को बोलना पड़ेगा भाई, इतना ज़्यादा होमवर्क मत दिया करो बच्चों को, है ना। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं शायरा?
1: मैम सेकेंड क्लास।
0: सेकेंड क्लास में पढ़ते हैं भैया। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं हमें कॉल कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है। तो क्या नाम बताया आपने अपना? सायरा।
1: सायरा,
0: सायरा जी आप अपना हॉलीडे होमवर्क भी कर रहे हो, और छुट्टियों में कहाँ जा रहे हो?
1: दादा दादी के घर।
0: दादा दादी के घर जा रहे हो, अच्छा जी, बिल्कुल दादा दादी के घर जाइए और छुट्टियों को एंजॉय कीजिए, और मम्मा पापा की हेल्प भी कीजिए। छोटे छोटे काम आप अपने खुद करते हो या नहीं करते हो?
1: मैम करती हूँ।
0: कौन सा काम करते हो शायरा आप, क्या करते हो?
2: क्या करती?
0: चलो कुछ नहीं, किचन में हेल्प करते हो आप, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मम्मी पापा की हेल्प करनी चाहिए, और रेडियो गुंजन धर्मशाला में आपने अभी कॉल किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। बाय शायरा। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुनी ये बच्चों की छोटी मोटी बातें, और इन बातों को सुन के अच्छा लगता है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। कयामत से कयामत तक, इस फिल्म का गीत श्रोताओं अभी आप सुन रहे हैं उदित नारायण की आवाज़ में।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं, और अभी आपने सुना ये गीत पापा कहते हैं। तो श्रोताओं, सभी के पापा कहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हो के बड़ा काम करेगा, लेकिन कई बार हम अपनी उम्मीदें, अपने जो सपने होते हैं बच्चों पर थोप देते हैं। हम ये कहते हैं कि आप बड़े हो जाओगे, यानी कि जब आप पढ़ाई कर लोगे तो आप ये बनना वो बनना। लेकिन श्रोताओं, मेरा ये मानना है कि बच्चे का इंटरेस्ट जिसमें है, बच्चे को उसी में आगे बढ़ने देना चाहिए। इसीलिए आज हमने विषय भी यही रखा कि विषय चुनने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए, हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है उसे हमें करना चाहिए, ना कि किसी के बोलने पर। किसी के बोलने पर हम कर तो लेंगे, लेकिन वो इंटरेस्ट के साथ नहीं करेंगे और इतनी अच्छी कामयाबी शायद हमें ना मिले। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में बहुत सारे बच्चों ने हमें कॉल की और व्हाट्सएप पर भी हमें बहुत सारे श्रोता पूछ रहे हैं कि क्या हम भी कॉल कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप ही कर सकते हैं, ये रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी का अपना रेडियो है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। क्योंकि श्रोताओं, स्कूल की छुट्टियाँ हर किसी ने बिताई हैं, आजकल के बच्चे बिता रहे हैं, हम लोग बिता कर चुके हैं और अपना एक्सपीरियंस हम साझा कर सकते हैं। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी हम जुड़े हुए हैं और बच्चों ने जितनी भी बात की उसमें हमें यही पता चला कि जो रेडियो है, अभी एक कॉल आ रही है वो सुनते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: हेलो, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैम, मैं इंदु बोल रही हूँ, सिद्धवाड़ी से।
0: इंदु, अच्छा जी,
1: जी रेगुलर लिसनर हूँ मैं आपकी।
0: जी बिल्कुल इंदु जी, आपको हम जानते हैं क्योंकि आपके लाइक्स और आपका जो आशीर्वाद है, आपका प्यार हमें समय समय पर मिलता रहता है और हमें पता है कि आप हमारे नियमित श्रोता हैं। तो इंदु जी, कैसी हैं आप?
1: बढ़िया मैम, आप सुनाइए।
0: बढ़िया, हम भी बढ़िया हैं। और आपने पूछा कि आप कॉल कर सकते हैं कि नहीं, क्यों, इसमें पूछने की कोई बात ही नहीं है, जब भी हम बोलते हैं तो आप भी कॉल कर सकते हैं।
1: जी मैम, एक्चुअली आपने बच्चों के बारे में बात की, मैंने सोचा क्या पता फिर बच्चों से बात करनी होगी, मैं क्या पूछ लेती हूँ एक
0: तो
1: बार।
0: आप भी अपना बचपना, आप भी अपनी छुट्टियों को हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि आपने भी अपने स्कूल टाइम में अपनी छुट्टियों में क्या करते थे, कैसे आप छुट्टियों को एंजॉय करते थे?
1: जी जी मैम, बिल्कुल। हमारे टाइम में तो मैम ऐसा होता था कि हमें तो छोड़ देते थे मम्मी पापा, हम तो मजे से रहते, पर आजकल वो टाइम नहीं रहा कि हम बच्चों को अकेला छोड़ दें ना किसी, मतलब आजकल तो बच्चों को हम अपने साथ ही लेके जाते हैं, क्योंकि बच्चों को प्रोटेक्शन बॉडी जरूरी है, क्योंकि बच्चों को हम नहीं कर सकते ऐसे।
0: बिल्कुल इंदु जी, आपकी इस बात से बहुत बड़ा संदेश जो है वो हमारे श्रोताओं तक पहुंच भी रहा है कि बच्चों को बिल्कुल भी आजकल के समय में किसी के भी घर अकेले नहीं भेजना चाहिए, खास करके जब माँ साथ हो तभी बच्चा जाए।
1: जी बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि मैम, मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, जैसे कई होते हैं कि जैसे कि इनके बच्चों के नाना नानी नहीं होते
0: जी,
1: तो होता है उनके घर में वो वाला माहौल नहीं रहता पहले जैसा।
0: बिल्कुल,
1: जैसे तो मेरे पेरेंट्स भी नहीं है अभी इस दुनिया में, पर ये है कि मेरे चलो भाई भाभी अच्छे हैं, लेकिन सबके अच्छे नहीं होते, सबकी सोच अपनी अपनी होती है। तो कहीं क्या होता है कि बच्चों को छुट्टियां पड़ती हैं तो वो चिढ़ते हैं कि ऐसे मत अंदर ही अंदर गुर्दे की क्यों आ गए, या ऐसा होते हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बस बच्चों को भी दो चार छुट्टियाँ होती हैं, इन्होंने कहाँ दिल्ली आना होता है और कहाँ कोई क्या किसी के घर क्या खा जाता है, दो चार दिन इंजॉय करते हैं बच्चे, तो प्लीज माइंड ना करें। जैसे हमने अपनी छुट्टियां एंजॉय की हैं, हमारे बच्चे करते हैं वैसे उनके बच्चे भी करते हैं, तो ये सभी भेदभाव नहीं करना कभी भी।
0: बिल्कुल इंदु जी, आपने सच बोलूं तो एक सच्चाई के ऊपर मतलब बोला है और सच में ऐसा देखने में आता भी है और आ भी रहा है। लेकिन इंदु जी, हम अपनी बात करेंगे, हम भी किसी के मामा मामी हैं, अगर उनके नाना नानी नहीं हैं, हम उन बच्चों को वो प्यार दें तो बच्चों को वो कमी खलेगी नहीं। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए। हम लोग कई बार घर पर गेस्ट आ जाते हैं, भांजा भांजी या छुट्टी में बच्चे आते हैं तो नाक उठा लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों का बचपना एक ही बार आता है और बचपने में बच्चे अपनों को ही ढूंढते हैं। बहुत अच्छा
1: संदेश
0: और
1: दूसरा
0: बहुत अच्छी
1: मैम
0: बात।
1: टाइम ही कहाँ है किसी के पास आजकल की, कहीं मैं ही अपने मायके में कितनी की जाती हूँ या मेरी ननदी कितने क्या रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल हिंदी जी, आपकी कुछ बातों को हम बिना कहे भी समझ रहे हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि आजकल का समय ही ऐसा है। लेकिन आपका ये संदेश जो है वो सब तक पहुँच रहा है कि नाना नानी ना हो लेकिन उनकी कमी हमें किसी को भी नहीं खलने देनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कार्यक्रम में आज इंदु जी की है, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए। जब भी कभी ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो आप अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करते रहिए और अपना प्यार इसी तरह से हमें देते

0: हेलो, हाँ जी बोलिए जी। मेरा नाम तनिष्का, मैं धर्मशाला से बात कर रही हूँ।
1: जी तनिष्का जी, आपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में कॉल किया, आपका स्वागत है। तनिष्का जी बताइए, आप क्या करती हैं?
0: मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है और मैं अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ।
1: बिल्कुल तनिष्का जी, बहुत अच्छी बात है। तनिष्का जी, हमने आज विषय ये लिया है कि 10th के बाद जब बच्चे कोई ना कोई सब्जेक्ट चुनते हैं तो उस समय उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए?
0: मतलब उनको तो यही अपना इंटरेस्ट के हिसाब से ही जो भी है, जिसमें जैसे मान लो मैं हूँ तो मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था, क्योंकि
1: जी
0: मेरे को

0: ऐसा कुछ बिजनेस या कॉर्पोरेट सेक्टर में इंटरेस्ट था, तो
1: जी
0: उसके अकॉर्डिंग ही इनको भी, मतलब जो भी बच्चा 10th के बाद अपना कोई भी स्ट्रीम चूज़ करे तो उसको उसके अकॉर्डिंग चूज़ करना चाहिए।
1: बिल्कुल तनिष्का जी, कई बार हमें पेरेंट्स कहते हैं कि आप ये सब्जेक्ट चुन लो, ये रख लो, ये बन जाओ, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगी?
0: अब हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में सही बोलेंगे, अब वो हमारा भला ही सोचेंगे, तो हमें उनकी भी बात सुननी चाहिए।
1: जी
0: बट ज़्यादा अपना ये करना चाहिए कि पढ़ना तो आपने है, मतलब जैसे
1: बिल्कुल
0: मेरे को भी बोला गया था कि मेडिकल वाला वो ले लो, स्ट्रीम ले लो, बट फिर मेरा इंटरेस्ट उसमें था, मैंने उनका मतलब पूछा उनसे कि मैं क्या करूँ, बट फिर
1: जी
0: उन्होंने बोला बट पढ़ना मुझे था और फिर मेरा वो सब्जेक्ट था भी नहीं,
1: बिल्कुल
0: तो फिर मैंने कॉमर्स ले लिया। जी
1: बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही है। और आप जैसे युवाओं का कार्यक्रम में जुड़ना बहुत ज़रूरी है श्रोताओं, क्योंकि देखिए आप ही बता सकते हैं, क्योंकि 10th में जब बच्चा आता है तो उसे कुछ समय के लिए समझ नहीं आता कि हम किस तरफ जाएं, लेकिन आप एक्सपीरियंस्ड हो, आप बता सकते हो कि किस तरह से हमें कोई सब्जेक्ट चुनना चाहिए। तो तनिष्का जी, और कुछ संदेश आप देना चाहेंगे?
0: मैं तो क्या ही संदेश दूंगी, मतलब जो आपको लगता है कि आप मतलब अच्छा कर पाओगे जिस स्ट्रीम में, आप वही स्ट्रीम चूज़ करिए। ऐसे कि देखा देखी में नहीं आओ कि अब मेरा दोस्त ये चूज़ कर रहा है तो मैं भी उसके साथ साथ में वही चूज़ कर लूँगी, जो आप कर सकते हो, जिसमें बेटर कर सकते हो, आप वही चूज़ करिए।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही तनिष्का जी। और मुझे ये बताइए कि रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप जुड़ते हैं, क्या सुनते हैं?
0: हाँ जी, जब मैं मतलब ऐसा तो मैं भी लाइब्रेरी में होती हूँ, पर सुबह और शाम के टाइम जैसा दादू होते हैं घर पे तो वो रेडियो वगैरह चलाते रहते, तो उस पर चला होता है ये कार्यक्रम।
1: जी, तनिष्का जी आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और कॉल किया, उसके लिए आपका धन्यवाद।
0: जी कोई बात नहीं जी।
1: बिल्कुल श्रोताओं, इस कॉलर ने, तनिष्का ने हमें बहुत अच्छी बात कही कि हमें जो है वो अपने अकॉर्डिंग, हमें जो लगता है कि हम कर सकते हैं, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, वो हमें वही सब्जेक्ट चुनना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही थी। तो सभी श्रोताओं को जिन्होंने हमें कॉल किया, उन सभी का धन्यवाद है। और इसी तरह से अपना प्यार जो है वो रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ बनाए रखिए। श्रोताओं, सबसे बड़ी धन्यवाद हम करेंगे आजकल के जो दादा दादी हैं उनका, क्योंकि मैक्सिमम कॉल जो हमने आज ली हैं उनमें सब ने यही कहा कि जब भी हमारे दादा दादी रेडियो लगाते हैं तो हम सुनते हैं। तो दादा दादी कहीं ना कहीं हमें सिखाने का काम करते हैं और हमें रेडियो के साथ जोड़े रखते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल के समय में मोबाइल हमसे छूटते ही नहीं और रेडियो की तरफ तो हम जाते ही नहीं हैं। तो रेडियो जो है वो सिर्फ दादा दादी तक सीमित ना रह जाए, आगे बच्चों तक भी पहुँचे, इसमें उनका बहुत बड़ा हाथ। तो धन्यवाद उन सभी का। और कार्यक्रम में फिर से चलते हैं, आपको लिए चलते हैं एक प्यारे से गीत की ओर।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं और कार्यक्रम में आज हमारे साथ बच्चे भी जुड़े, युवा भी जुड़े और बाकी श्रोता भी हमारे साथ जुड़े। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में थोड़ी सी बात यही करना चाहेंगे कि रिश्ते जो है वो किसी के ख़त्म होने के बाद ख़त्म नहीं होने चाहिए, नाना नानी हो या कोई और रिश्ता हो। तो जब बच्चों को छुट्टियां पड़ती हैं तो वो यही कहते हैं नाना नानी के यहाँ जाना है, लेकिन जब नाना नानी नहीं रहते हैं तो बच्चे भी थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। लेकिन श्रोताओं, अगर उसी घर में वही मामा मामी नाना नानी का प्यार दे दें तो बच्चे दौड़े चले जाते हैं। बच्चे क्या, घर की बेटी भी तभी जाती है जब वहाँ के भाई भाभी उतना प्यार उतना लगाव उन्हें देते हैं। तो बहुत खुश किस्मत हैं वो लोग जिनके यहाँ उनके भाई भाभी वो प्यार और वो मामा मामी नाना नानी का प्यार बनाए रखते हैं। अगर हमारे भी ऐसे ही हैं तो हमें भी वो प्यार वो इज़्ज़त देते रहना चाहिए। और घर पर जब तक, कहते हैं ना कि बच्चे और अपने रिश्तेदार आएँ तो अच्छा लगता है, और जब तक घर पर कोई ना आए तो घर में रौनक भी नहीं रहती। तो श्रोताओं, बहुत अच्छी बात हमारे श्रोता इंदु ने कही और हमें ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में जो एक बात होती है, दिल में जो एक बात होती है, वो कहीं ना कहीं बाहर निकल आती है। और अपनी दिल की बातों को निकालना भी चाहिए, अंदर रखेंगे तो वो बातें ना तो किसी को समझ में आएंगी ना ही कोई समझेगा। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आपको बहुत ही प्यारा गीत हकीकत फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, तलत महमूद और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत आप सभी के रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये गीत, और ये गीत 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें मोर्चे पर तैनात सैनिक अपने घर परिवार और अपनों को याद करते हैं। हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, पंक्ति उस भाव को व्यक्त करती है कि शायद घर पर कोई अपना उन्हें याद कर रहा होगा, पुकार रहा होगा, लेकिन देश सेवा के कर्तव्य के कारण वे लौट नहीं सकते। इसी दर्द, विरह और देश प्रेम का सुंदर संगम इस गीत में अभी आपने सुना। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अब हम आगे बढ़ेंगे और एक और प्यारा सा गीत आप तक पहुंचाएंगे। लीजिए, सुनिए मिस्टर इंडिया फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

बिल्कुल श्रोताओं, वक्त भी जैसे एक मीत है और ये वक्त हमारा साथ देता है, वक्त हमें अपने साथ लिए चलता है। कार्यक्रम में भी अब समय हमारा हो रहा है, यानी कि कार्यक्रम को संपन्न करने का समय हो रहा है। श्रोताओं, तो चलते चलते आप तक पहुंचाएंगे आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत। परदेस फिल्म से ये गीत लिया गया है और कुमार शानू, अलका याग्निक की आवाज़ें हैं।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला का समय अब यहीं पर संपन्न होता है। फिर किसी दिन और बहुत सारी बातों के साथ, जानकारियों के साथ हाजिर होंगे हम आपके साथ। तो आज के लिए दीजिए सुषमा को जाने की अनुमति। जय हिंद।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात देकर के उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए। वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी।

0: फिर भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठे हैं?
1: तुझे उसे टीबी है।
2: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले।
3: पता है ना मुझे टीबी है।
2: चल चल, तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है, तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: Oh, no. देख लो कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
5: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा?
7: मेरा ही रहेगा लगता, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं।
5: मेरे ही होंगे, इस घर में और रहते ही
8: कौन है। भारी मिस्टेक हो गया सर।
6: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।
9: गजब डूबी बाजा।

सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारी से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात दे करके उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए, वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी है।

0: फिर भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठे हैं?
1: तुझे उसे टीवी है।
2: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले।
3: पता है ना मुझे टीबी है।
2: चल तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी के दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है, तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: Oh, no. देख लो कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
5: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही रहेगा लगता है, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे, इस घर में और रहते ही कौन है।
7: भारी मिस्टेक हो गया सर।
6: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।
8: गजब डूबी बाजा।

0: नमस्कार दोस्तों, 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और अब समय है दोस्तों कार्यक्रम हमारी सेहत का। तो दोस्तों ये कार्यक्रम हमारी सहयोगी संस्था ऑर्गन इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जीवन एक अनमोल उपहार। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 MHz पर।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं सहयोगी संस्थान ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्था पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर।
2: आप सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सागर। इस शो का नाम है जीवन एक अनमोल उपहार और इस शो को आप लोगों तक पहुंचाने का श्रेय जाता है ऑर्गन इंडिया को। ऑर्गन इंडिया जो कि एक संस्था है जो बढ़ चढ़ कर जो है लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है, ताकि लोग जागरूक हो सके और लोगों को पता चल सके कि जीवन जो यकीनन एक उपहार है वो सबके लिए एक जैसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए वो उपहार शाप में तब्दील हो जाता है, लेकिन उस शाप को वापस से उपहार बनाया जा सकता है। और इसी बात को विस्तार से आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लेकर आए हैं ये शो जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद है, मिस्टर भवानी सिंह। 38 वर्ष इनकी आयु है, झुंझुनू राजस्थान के रहने वाले हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं और 2004 में इनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। आइए जानते हैं इनके एक्सपीरियंस के बारे में और एक छोटी सी विनती आप लोगों से करूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये वो बातें हैं जो आपके बहुत काम आ सकती हैं और जो किसी और का जीवन बचा सकती हैं। तो सबसे पहले भवानी जी आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद आपका।
2: सर मैं जानना चाहूंगा आपके उस टाइम फेज के बारे में जब आपके साथ ये सब हुआ, तो कैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि आपकी किडनी में प्रॉब्लम हो रही है, सिम्टम्स क्या थे आपकी बॉडी के?
3: ये लगभग अप्रैल 2004 की बात है जब मैं नर्सिंग फर्स्ट ईयर के अंदर था, तो उस वक्त एक स्पोर्ट्स शूज पहने के कारण मेरे पैर के अंदर थोड़े से कॉर्न हुए थे और उनकी एक रिप्लेसमेंट सर्जरी के कारण जो पोस्ट ऑपरेटिव सिम्टम्स थे हाइपरटेंशन वो हुआ। बाद में एक महीने तक एनालिसिस किया कि हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है, किडनी के रीनल फंक्शन टेस्ट वगैरह करवाए, तब पता चला कि जो एंटीबायोटिक मेरे को दी गई थी, पेन किलर्स जो मेरे को दिए गए थे पोस्ट ऑपरेटिव, उनके कारण किडनी फेल्योर हो गई। तो पोस्ट फेल्योर जयपुर के अंदर ही मेरा डायलिसिस हुआ और एक महीने तक डायलिसिस होने के बाद मेरे को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। तब किडनी ट्रांसप्लांट का इंडिया के नॉर्थ इंडिया में जो सबसे अच्छा सेंटर था वो गुजरात के अंदर अहमदाबाद के पास में मूलजी भाई पटेल यूरोलॉजी हॉस्पिटल था, वहाँ पर मेरे को शिफ्ट किया गया। एक महीने तक वहाँ पे फिर डायलिसिस हीमोडायलिसिस किया गया और जस्ट एक महीने बाद में मेरे फादर्स, मेरे जितने मेरे रिलेटिव थे जो किडनी डोनेट करने के इच्छुक थे, उनका क्रॉस मैच किया गया। तो सबसे अच्छा जो क्रॉस मैच मिला वो मेरे फादर का था, लगभग 55% के करीब क्रॉस मैच हुआ और फिर 9 जून 2004 को मेरा सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हो गया। पोस्ट ट्रांसप्लांट बिल्कुल नॉर्मल एकदम जो जीवन था, पहले प्रिकॉशन रहा 2 साल तक, अच्छा प्रिकॉशन रहा, मास्क लगा के रखना, बॉइल्ड वाटर पीना, बाहर नहीं गया मैं कहीं भी, लगभग घर के अंदर ही रहा और काफ़ी थोड़े वो प्रिकॉशंस थे जो रखने पड़े। उसके बाद में डेली रूटीन लाइफ के अंदर इन्वॉल्व हो गया, जॉब लग गई, हाँ पोस्ट ऑपरेटिव मेरी शादी हुई, अभी 2 बच्चे हैं और अभी मैं मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान के अंदर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पोस्ट पर वर्क कर रहा हूँ और आज तक मैं दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ। पोस्ट ट्रांसप्लांट बिल्कुल फिट हूँ, कंटिन्यू मैं अपनी मेडिसिंस ले रहा हूँ।
2: सर इन सब बातों पर आएंगे लेकिन मैं थोड़ा सा विस्तार से आपके उस टाइम को अच्छे से जानना चाहता हूँ जब आपके साथ ये सब हो रहा था। लाइक जैसा कि आपने कहा स्पोर्ट्स शूज पहनने के कारण आपके पैर में दिक्कत हो रही थी, तो जब डॉक्टर ने आपको बताया कि किडनी खराब हो गई है तो उस टाइम पर क्या गुजरी, पूरे परिवार में कैसा माहौल था, आपके क्या विचार थे अगर आप याद कर पाए, क्योंकि पुरानी बात है।
3: हाँ जी ये मैं रिकॉल कर सकता हूँ क्योंकि जिस वक्त पहली बार जब ये रिपोर्टिंग हुई किडनी की और उसमें पता चला कि क्रिएटिनिन जो था वो 10 के आसपास आ रहा था, तो जब उसका रीज़न पूछा गया तो डॉक्टर्स ने मेरे को नहीं बताया लेकिन फादर को साइड में लगा जाके बोला कि किडनी फेल्योर हो गई है तो अब इनको डायलिसिस पे लेना पड़ेगा। तो एक शॉकिंग मोमेंट था फैमिली के लिए भी, मेरे लिए भी, क्योंकि आसपास ऐसा कोई केस था नहीं कि जिसकी किडनी फेल हो गई और हमने सुना हो। तो मेरे हिसाब से जो मेरी 5,000 या 10,000 की आबादी वाला एक गाँव था उसमें शायद मेरा पहला था, तो बहुत शॉकिंग थी ये। और फिर 10-20 दिन लगे नॉर्मल होने में लेकिन फिर जो भगवान ने कहा उसके हिसाब से ढलना पड़ा और अंततः डायलिसिस भी लिया गया मेरे को।
2: जी जी, तो किडनी पूरी तरह से खराब हो गई थी और अब डायलिसिस तक पहुंच गए। दोस्तों इसी के साथ एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम जो आगे का सफर है वो आपको बताएंगे। आप सभी लोगों से वापस एक बार विनती करूंगा, हमारे साथ बने रहिए और इन बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बातें अगर किसी के समझ में आ गई तो बहुत सारे लोगों को जो है जीवन दान मिल सकता है, उनका जीवन एक उपहार वापस से बन सकता है। पर अभी आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ।
1: ब्रेक से पहले आइए सुनते हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का अंग दान से जुड़ा अपना व्यक्तिगत अनुभव।
4: कहते हैं जान है तो जहान है, बात सच है, लेकिन जब जान नहीं रही तो क्या हम किसी और को जिंदगी दे सकते हैं? जी हाँ, हम जाने के बाद अपनी आँखें किसी को दे सकते हैं, तो हमारी आँखों से वो दुनिया को देख सकता है। हम अपने दूसरे ऑर्गन दे सकते हैं, दिल दे सकते हैं, और किसी और को ज़िंदगी मिल जाएगी। मेरी वाइफ मेधा, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और 13 साल उसने ज़िंदगी और गुजारी। ये तभी हो पाया कि जिसने हार्ट डोनेट किया था उसको ये अवेयरनेस थी कि मेरे जाने के बाद मैं किसी और को एक्स्ट्रा ज़िंदगी दे सकता हूँ। अगर ये चीज़ हम आप सब समझ जाएं तो ना जाने कितने लोगों का संसार खूबसूरत हो सकता है हमारे जाने के बाद। हिंदुस्तान में हर साल करीब 5 लाख लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनको वो ऑर्गन नहीं मिलते जिससे कि उनकी ज़िंदगी बच सकती है। आप ऑर्गन डोनेट करके हीरो बन सकते हैं। हीरो बनने के बहुत से तरीके हैं, ये भी एक तरीका है हीरो बनने का कि ज़िंदगी भर कोई आपकी बातें करेगा। एक व्यक्ति 8 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। 8 लोगों को आप ऑर्गन डोनेट करते हैं केवल एक बॉडी से, और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो सब लोगों के तो आप हीरो हो गए। तो कितना अच्छा होगा कि इस बात को समझें और लोगों को समझाएं। हमारा मकसद यही है कि ये खबर सब तक पहुंचाएं, सब इस बात को जानें कि एक आदमी 8 लोगों की जान बचा सकता है, उन 8 लोगों के आप हीरो बन जाएंगे। तो आज ही फ्लैश करिए और हमारा साथ दीजिए।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: चलिए दोस्तों अपने उसी बातों के सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं। ये शो जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार, जिसको आप लोगों तक पहुंचाने का श्रेय जाता है ऑर्गन इंडिया को। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर भवानी सिंह, जो किडनी रेसिपिएंट है। 2004 में इनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। इनकी जिंदगी का सफर हम जान रहे थे। अभी तक इन्होंने बताया कि कुछ प्रॉब्लम हुई, उसके बाद डॉक्टर्स ने बताया कि किडनी खराब हो गई है, डायलिसिस पर गए। और उस टाइम पर माहौल ऐसा था, क्योंकि पूरे गांव में, पूरे उस कस्बे में जो इनका इलाका था, वहां पर किसी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो उसके बाद सर क्या सोचा, मतलब किस तरह के विचार आपके चलते थे? लाइक आपको पता था कि कोई किडनी दे देगा, उम्मीद थी, या फिर ऐसा था कि नहीं बस हो गया?
2: उस वक्त ट्रांसप्लांट का तो ख्याल ही नहीं था। पहले तो किडनी फेल हो गई थी, तो पहले तो ये था कि ये इसको अब क्या करना आगे। तो सबसे पहले जब डॉक्टर से मिले तो उन्होंने डायलिसिस का ही उन्होंने सजेस्ट किया कि डायलिसिस कराओ अभी तो, और फ्यूचर के अंदर जब भी आपको डोनर मिले और क्रॉस मैच मिल जाए तो फिर ट्रांसप्लांट की हम सोच सकते हैं। लेकिन फिर रिव्यू के लिए मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली गया, तो उन्होंने बोला कि अभी यंग एज है, तो आप डायलिसिस ज़्यादा ना करवा के ट्रांसप्लांट पे शिफ्ट हो जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फिर उनकी एडवाइस के हिसाब से फिर मेरे फादर ने, मेरी मदर ने, मेरी ग्रैंड मदर ने क्रॉस मैच करवाए। और जो क्रॉस मैच थे जो सबसे बढ़िया मिले वो मेरे फादर के थे। और डोनेशन के लिए तो एक मेरी सिस्टर्स भी जो अनमेरिड थी वो भी तैयार थी, लेकिन फादर ने फिर प्रेफर किया कि मैं ही दूंगा, कि वो तैयार थे इस चीज़ के लिए। मतलब इसे कोई घबराहट नहीं थी कि मेरी ये किडनी मैं अपने बच्चे को दूंगा तो फिर मेरे शरीर में क्या बीतेगी। वो उनको बिल्कुल, मेरे फादर को चिंता नहीं थी, वो बिल्कुल इजीली तैयार हो गए थे देने के लिए।
1: जी, और खास तौर पर बच्चा जिसकी उम्र महज 19 वर्ष हो। तो 19 साल के आप उस टाइम थे, क्या कर रहे थे उस टाइम? आप कौन सी क्लास में थे, कॉलेज में थे, क्या थे?
2: जी, मैं उस वक्त अलवर के अंदर, जो राजस्थान के अंदर है, NCR में आता है, दिल्ली NCR में। उस वक्त मैं वहाँ पे नर्सिंग कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और वहीं पे फर्स्ट ईयर के अंदर स्टडी कर रहा था।
1: तो पढ़ाई प्रभावित हो गई थी। अब यहाँ पर बात आ गई थी जीवन के ऊपर, कि जीवन कैसे बचे। तो जैसा कि आपने कहा कि इतने सारे लोग आ गए थे आपके लिए, अपने जो है ऑर्गन्स डोनेट करने, अपनी किडनी डोनेट करने। पर सवाल सर यहाँ पर ये है कि लोग आ जाते हैं लेकिन सबका मैच नहीं हो पाता। जैसा कि आपने कहा कि फादर साहब का मैच हुआ आपके, ठीक है, तो अब क्या, किस तरीके से अब आप उस चीज को देखते हैं? क्योंकि ऑर्गन डोनेशन जो आज भी मेरे हिसाब से एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, लोग डर जाते हैं। जबकि एक इंसान अपने ऑर्गन्स अगर डोनेट करे, जो इंसान इस दुनिया से जा चुका है, जो अभी ब्रेन डेड नहीं हुआ है, तो उससे काफी लोगों की जिंदगी जो है बचाई जा सकती है। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है कि ऑर्गन्स डोनेट करना कितना जरूरी है, और जस्ट इन केस आपके परिवार में से अगर किसी का भी आपके साथ मैच ना करता क्रॉस, तो आपके क्या कंडीशन होती, कहाँ होते, आप कैसे देखते हैं उस चीज को?
2: पहले तो मैं यूं बता दूं कि लगभग पर ईयर 5 से 6 लाख जो पीपल है उनकी किडनी डैमेज होती है और डायलिसिस पे आते हैं। मतलब वो आदमी है जिनको किडनी ट्रांसप्लांट की या एक किडनी या एक ऑर्गन की जरूरत है जीने के लिए, लेकिन महज उनका मात्र 8% मान के चले अब 35-37,000 का ट्रांसप्लांट हो पाता है। तो आप ये मानिए कि जो बाकी के जो 92% या 90% पीपल है वो डायलिसिस पे रहते हैं। डायलिसिस एक जटिल प्रक्रिया है, उसके अंदर आपका जो ब्लड है एक मशीन के थ्रू हर 3 दिन के बाद में साफ किया जाता है, तो उसमें इन्फेक्शन के काफी चांस होते हैं और उसमें सर्वाइवल रेट भी बहुत कम होती है। तो डायलिसिस में आप लाइफ जी सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस है, और आपको हर 3rd दिन डायलिसिस करवाना होता है। मशीन के थ्रू आपका ब्लड साफ होगा, वापस पूरी प्रोसेस है, वापस आपके ब्लड में, आपकी बॉडी में वो डाल दिया जाता है। तो एक पेनफुल प्रोसेस भी है और एक बहुत थ्रेटनिंग प्रोसेस है। तो उसके लिए क्या है कि ट्रांसप्लांट जो है वो बेटर ऑप्शन है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपका परिवार का कोई सदस्य या आपके जो मिलने वाले हैं रिलेटिव्स हैं, जो आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है उसके ऑथराइजेशन के अधीन हो, क्योंकि काफी जगह अंकों का व्यापार भी किया जाता है। तो उस चीज से परे जो आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं या आपके मदर हैं, फादर हैं, सिस्टर हैं, आपकी दादी माँ हैं, आपके दादाजी हैं या आपके नाना जी या नानी जी, बिल्कुल जो ब्लड रिलेटिव्स हैं वही अंगदान कर सकते हैं। जो नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के उस हिसाब से तो अंगदान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कम से कम, मतलब जो किडनी होती है, जो जैसे डॉक्टर्स बताते हैं कि आपके शरीर में भले ही 2 किडनी है लेकिन बॉडी के अंदर जो एक्टिव रहती है 60% वो 1 किडनी रहती है, दूसरी तो बिल्कुल स्टैंड बाय पे रहती है, जो सारा वर्कलोड लेती है वो 1 ही किडनी लेती है। अगर आप एक डोनेट भी कर देते हो किसी दूसरे को तो आपके शरीर पे कुछ फर्क नहीं पड़ता उस चीज का, डोनर इजीली लाइफ जीते हैं। तो अगर आपने एक अपना अंग या किडनी दूसरे को दे दिया तो 2 जने सर्वाइव कर रहे हैं ना उन्हीं चीजों से। तो एक जागरूकता बिल्कुल एक सोसाइटी के अंदर होनी चाहिए कि अंगदान से डोनर के कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बेटर लाइफ जीता है वैसे पहले की तरह, कोई प्रिकॉशन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है लाइफ लॉन्ग। एक कोई ज्यादा से ज्यादा एक लेप्रोस्कोपी के तीन टांके आते हैं तो 3 दिन बाद में एंटीबायोटिक के बाद में हील हो जाते हैं, और उसके बाद में ना कोई फॉलोअप है डोनर का, ना उसके बाद में कोई उसकी मेडिसिन है, ना कभी उनके कोई ऐसी कंपलसरी वो मेडिकल रिव्यू है कि उनको हर महीने में 6 महीने में साल भर में चेक करवाना है। हाँ, रेसिपिएंट जरूर प्रिकॉशनरी लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेता है, लेकिन डोनर के लिए कोई बाध्यता नहीं है। तो इसलिए अंगदान बहुत जरूरी है ताकि एक नया जीवन मिल सके।
1: जी जी। अब यहाँ पर सर दूसरा सवाल मेरा कि अगर आपको उस टाइम पर वो किडनी ना मिलती, किसी का भी मैच ना करता, तो आप कैसे देखते हैं जीवन कैसा होता या नहीं होता, या क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आपके सामने होते?
2: ये सोच के तो बड़ा थ्रेटफुल लगता है, पेनफुल भी लगता है कि शायद मैं डायलिसिस पे होता, नहीं मिलती तो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर रिलेटिव्स की या मदर फादर की अगर क्रॉस मैच नहीं होता तो शायद मैं डायलिसिस पे होता, और डायलिसिस पे कितना दिन सर्वाइव करता ये तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि मैं आज जैसी लाइफ जी पा रहा हूँ वैसी जी पाता।
1: जी जी जी। इसी के साथ दोस्तों एक और बहुत छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, और उस ब्रेक के बाद इस सफर को आगे लेकर चलेंगे, और अब हम जानेंगे ट्रांसप्लांट के बाद के जीवन के बारे में, उस प्रोसेस के बारे में, ताकि आपको पता चले कि जीवन से बड़ा कोई उपहार है नहीं। तो ये तमाम बातें हम करेंगे भवानी सिंह जी के साथ, पर अभी आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे इस खास शो में जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: चलेंगे दोस्तों अपनी बातों के सफरनामे को आगे लेकर चलेंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन एक अनमोल उपहार एक खास प्रोग्राम है जिसको इनिशिएट किया है ऑर्गन इंडिया ने। उसमें हमारे साथ मौजूद है आज मिस्टर भवानी सिंह, एक किडनी रेसिपिएंट है। मैं हूँ सागर। आइए जानते हैं भवानी सिंह जी से कि उनके जीवन में जब वो फेज आया, जब ट्रांसप्लांट उनका हुआ, उस टाइम पर कैसा वो सब रहा। तो सर बताइए कि कैसे वो सब चीजें मैनेज हो पाई, लाइक कौन कौन आपके लिए सामने आए एंड क्या वो प्रोसीजर रहा पूरा। आप तो जाहिर सी बात है डायलिसिस पर थे।
2: डायलिसिस के दौरान जब ट्रांसप्लांट होता है तो जैसा मैंने बताया कि जो एमपीएस हॉस्पिटल है किडनी का नडियाद गुजरात के अंदर, वो अच्छा नॉर्थ इंडिया का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है। तो अच्छा होने के साथ साथ वहाँ पे पैसे भी, मतलब एक पैसे की काफी रिक्वायरमेंट होती है, तो फाइनेंशियली भी आपको मजबूत होना पड़ता है। क्योंकि मेरे फादर वेटनरी के अंदर एक बीए थे, कंपाउंडर थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे काफी पैसा खर्च हुआ। लेकिन मेरी अच्छी किस्मत थी कि मेरे जो मामा जी थे उन्होंने काफी हेल्प की, मेरे जो अदर रिलेटिव थे फूफा जी वगैरह वो भी आ गए, पूरे परिवार के लोग, मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी वहाँ पे आए। और लगभग गुजरात के अंदर इतनी दूर से 700-800 किलोमीटर से चल के वहाँ पे आना बड़ी बात थी। तो मेरे को एक मॉरल सपोर्ट मिला कि अपना अकेले नहीं है, परिवार के साथ जो रिलेटिव भी आ रहे हैं, फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, तो बहुत लकी हूँ मैं कि वो वहाँ पे मौजूद थे। फाइनेंशियली भी रूप से भी सपोर्ट कर रहे थे और मॉरली भी बहुत सपोर्ट कर रहे थे, उससे मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई और मैं मजबूत रहा खुद भी। और पोस्ट ट्रांसप्लांट के बाद में ऐसी बात है कि जैसे ट्रांसप्लांट हो गया उसके बाद में जैसे 10 दिन तक तो वो आईसीयू में रखते हैं, उसके बाद में मैं 3 महीने तक वहीं रहा नडियाद के अंदर। नडियाद अहमदाबाद में छोटा सा टाउन है लेकिन वो अच्छा हॉस्पिटल है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए और सबसे ज्यादा सक्सेस रेट भी वहीं की है इंडिया के अंदर अभी। तो वहाँ पे मेरा ट्रांसप्लांट हुआ, डॉक्टर महेश देसाई ने मेरा ट्रांसप्लांट किया जो गोल्ड मेडलिस्ट है और अभी यूके रहते हैं। और उसके बाद में पोस्ट ट्रांसप्लांट के बाद में

0: रखा गया। मेरा अलग रूम था, खाना पीना भी बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से बॉइल्ड करके मेरे को दिया जाता था। किसी घर पारिवारिक सदस्य की अगर किसी तरह की कोई वायरल है तो उसको मेरे से दूर कर दिया जाता था, ताकि जब तक हाई डोज इम्यूनोसप्रेस की चले, रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटाने वाली दवाइयों की चले, तब तक मैं सेफ रहूं। और दिन में जो खाना है वो है, जो नेफ्रोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया उस हिसाब से मैंने मेडिसिन और दवाइयों को बरकरार रखा।
1: जी, अब जानेंगे यहाँ तक आपका ट्रांसप्लांट हो गया, आपने बताया कि उसके बाद का जीवन कैसा रहा, आप अस्पताल के पास रहे, 3 महीने तक फॉलोअप चला और वो तमाम जो प्रोसीजर होता है वो फॉलो किया गया। सबसे पहले आपके पिताजी के बारे में जानेंगे, जब उन्होंने किडनी आपको डोनेट कर दी उसके बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आया और कैसा उनका जीवन रहा?
0: किडनी डोनेट करने के बाद में जैसे साथ में ट्रांसप्लांट जब होता है तो दोनों साथ ही रहते हैं, डोनर और रिसिपिएंट। मैं जरूर 10 दिन तक रहा आईसीयू में, लेकिन उनको 3 दिन बाद में डिस्चार्ज कर दिया गया। और 3 दिन बाद में डिस्चार्ज करने के बाद में वो रेगुलर फॉलोअप पे रहे, 15 दिन बाद में फिर उनकी दवाइयाँ बंद हो गई। उसके बाद में मेरे साथ 3 महीने तक वो यहीं रहे, तो चूंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट में थे तो अपनी छुट्टियाँ लेके रहे। और वहाँ जाने के बाद में जब हम यहाँ से चले गए राजस्थान, गुजरात से जब राजस्थान वापस चले गए, तो फिर उन्होंने जाते ही अगले दिन से अपनी जॉब पे वापस जाना स्टार्ट कर दिया। तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी किसी चीज़ की, और उनके जो डिपार्टमेंट था मेडिकल हेल्थ उससे भी काफ़ी सपोर्ट मिला, और उनके जो ऑफिसर्स थे उन्होंने काफ़ी उनकी मदद की। तो और वो खुद भी बहुत स्ट्रांग पर्सन थे, हालांकि फिर बाद में पोस्ट ऑपरेशन के 15 से 20 साल बाद में जस्ट 2-3 साल पहले उनके लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ और आज वो इस दुनिया में नहीं है।
1: जी, लेकिन वो किडनी की वजह से जो डोनेट की उन्होंने उससे कोई दिक्कत नहीं
0: हुई? नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। वो लंग कैंसर तो एक अलग वो अलग चीज है, वो उसका तो अननोन कारण था।
1: जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके जीवन के बारे में, ट्रांसप्लांट के बाद आपका जीवन कैसा चल रहा है अभी तक, एंड आपने बताया कि शायद आपकी शादी भी ट्रांसप्लांट के बाद ही हुई, तो उस पूरी जर्नी के बारे में बताइए, क्या क्या कठिनाइयां आपके सामने आई, कैसा अभी तक का जीवन रहा है?
0: 2004 में ट्रांसप्लांट के बाद में जब मैं 3 महीने के फॉलोअप के बाद में अपने वहाँ आया, गांव आया, तो शुरुआत में किसी से मिलने जुलने नहीं दिया जाता था, क्योंकि गांव कोई मिलने वाला आता तो हो सकता है उसके वायरल हो और मेरे हो जाए, तो बिल्कुल सेपरेट रखा गया। ना किसी बर्थडे पार्टी में, ना किसी शादी के अंदर, ना किसी प्रोग्राम में, कहीं नहीं जाता था। जो बॉइल्ड खाना है, बॉइल्ड वाटर है, उसको कंटिन्यू किया। फिर धीरे धीरे फिर मेरी जो स्टडी थी वो बिल्कुल ड्रॉप आउट हो रही थी, तो फिर मैंने उसको कंटिन्यू करने का फैसला किया। और 1 साल बाद में मैंने बैक के रूप में, वो तो बैक तो लग गई थी 2004 वाली, तो उसके बाद में मैंने स्टडी को वापस स्टार्ट किया। 2007 में मैंने नर्सिंग कंप्लीट करी। नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद में 2007 के अंदर नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ और मैं मेडिकल कॉलेज के अंदर एज ए नर्सिंग ऑफिसर पोस्टेड हुआ। उसी दौरान मेरी शादी हुई, और उसके बाद में शादी होने के जस्ट 1 साल बाद में मेरा एक लड़का हुआ, और अभी एक लड़की भी है, गुड़िया भी है जो 8 साल की है, लड़का अभी 12 साल का है। और अभी मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पे कार्यरत हूँ, और एडिशनल चार्ज भी है मेरे पास में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO का, तो मैं दोनों चार्ज देख रहा हूँ।
1: कुल मिलाकर जो एक नॉर्मल जीवन होता है, मतलब वैसा जीवन आपका चल रहा है, एक सुखद परिवार है और अच्छे से आपका जीवन जो चल रहा है। अब जानना चाहेंगी स्पोर्ट्स, क्योंकि आप खेलते हैं अभी, तो कोई कठिनाई आती है स्पोर्ट्स खेलने में, या कैसा लगता है, या क्या वो प्रेरणा है आपकी?
0: ये तो एक माइंडसेट की बात है। हम सोचते हैं कि स्पोर्ट्स के अंदर इंजरी हो जाएगी, या फिर पोस्ट ट्रांसप्लांट इतना हैवी नहीं करना चाहिए कोई भी एक्टिविटी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके मन में बिल्कुल नॉर्मल एकदम एग्जिस्टेंस है तो आप बिल्कुल एकदम सही रहेंगे। पहले मैं ट्रांसप्लांट से पहले क्रिकेट वगैरह खेला करता था, लेकिन इंजरी की वजह से मैंने छोड़ दिया, कि हो सकता है बॉल ऐसी जगह लग जाए जहाँ अपना ट्रांसप्लांट हुआ। तो हैवी गेम्स को मैंने अवॉइड किया, लेकिन जो लाइटर गेम थे जिनके अंदर अपने को डायरेक्ट इंजरी नहीं हो, बैडमिंटन है, चेस है, पेंटांग है, लॉन बॉल है, इनके अंदर पार्टिसिपेशन चालू किया, और धीरे धीरे आज मैं अभी इंडिया की जो नेशनल टीम है उसके लिए फाइनल हुआ हूँ। तो जो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ के अंदर जो 2023 के अंदर अभी जो वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स हो रहे हैं, उसमें मैं इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ।
1: कौन सा गेम है जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं?
0: मैं वैसे तो ग्रुप है गेम्स के, 3 गेम्स हैं, एक है लॉन बॉल, एक है पेंडांग और एक है डार्ट।
1: आपको मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप जाएं और परचम हमारा लहरा कर आए। सर, यहाँ पर एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, मतलब इतना सब हुआ अभी तक, आप ट्रांसप्लांट के बाद 19 साल का सफर आप तय कर चुके हैं, एक चीज बताइए, मानते हैं आप कि जीवन यकीनन एक अनमोल उपहार है?
0: बिल्कुल, जीवन तो एक अनमोल उपहार है, क्योंकि जिस वक्त मैं बिल मौत के कगार पे खड़ा था उस वक्त कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, और मेरे को लग रहा था कि शायद कल का मैं

0: सूरज देख पाऊं या नहीं पाऊं, लेकिन जब मेरे एक दूसरे का अंग मेरे शरीर में आया और आज मैं जी रहा हूं, तो बहुत बड़ी बात है कि पूरे जो भगवान की बनाई हुई सृष्टि है उसको मैं देख पा रहा हूं, जीवन को अच्छे से जी पा रहा हूं। तो मेरे हिसाब से सबको अंगदान के लिए प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो डोनर है उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ उनके परिवार का एक सदस्य, उनका एक रिश्तेदार एक नई जिंदगी प्राप्त कर सकता है, और जो जीवन वो जी रहे हैं दाता, वो एक रिसिपिएंट भी बढ़िया और शानदार जीवन जी सकता है।
1: जीवन यकीनन एक अनमोल उपहार है। तो भवानी सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए, जबकि एक दर्द भरा फेज था आपका, उसने आपको बहुत अच्छे से विस्तार से बताया, लोगों को बताया। तो दोस्तों आपने सुना भवानी सिंह जी के विचार, आपने सुने 19 साल का एक लड़का जिनको दिक्कत होती है और किडनी पता चलता है दोनों खराब हो गई हैं, डायलिसिस फिर जाते हैं और जीवन एक शाप बन चुका होता है, जो कि हमने अपने शो की स्टार्टिंग में कहा था। उसके बाद इनके पिताजी उठकर आते हैं, ये लकी रहे कि इनके वो ब्लड ग्रुप मैच कर गए, जो भी उनके क्राइटेरियाज होते हैं वो सब मैच कर गए, लेकिन अगर वो नहीं करते तो शायद बहुत ज्यादा कठिनाई हो सकती थी, शायद अभी तक भी डायलिसिस पर हो सकते थे। तो उतनी जागरूकता बहुत जरूरी है, लेकिन ये लकी है कि इसके बाद उनके पिताजी का वो मैच कर गया और इन्हें किडनी मिल गई और इनका जो जीवन अनमोल उपहार है, जो शाप बना था वापस से वो एक अनमोल उपहार बना। आप सभी लोगों से यही एक गुजारिश मैं करना चाहूंगा कि बढ़ चढ़ कर अंगदान करिए, क्योंकि देखिए पहले तो लोग करते ही नहीं है, उसके बाद लोग करेंगे तो वहां पर जाकर पता चलेगा किसका मैच कर रहा है किसका नहीं कर रहा है एंड कौन क्वालिफाई कर पा रहा है कौन नहीं कर पा रहा है। तो ये जो रेशो है बहुत कम रह जाता है, बहुत सारे फिल्टर्स लग चुके होते हैं। कोई आखिरी पैगाम जो आप लोगों को देना चाहते हैं जो इस टाइम आपको सुन रहे हैं?
0: मैं जितने भी श्रोतागण ये चैनल सुन रहे हैं उनको यही कहना चाहूंगा कि जो किडनी फेल्योर्स के जो कारण है वो हमारी अज्ञानता भी है। जैसे हम बाजार में अपने को पेन हुआ और पेन किलर्स ले आए बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, उन जो पेन किलर्स हम डायरेक्ट मेडिसिन से खरीद के ले आते हैं और ले लेते हैं, वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा कारण है कि वो जो पेन किलर्स हैं उनका लेने से किडनी फेल हो रही है। दूसरी बात, अगर आपको हाइपरटेंशन के कुछ सिम्टम्स लगे, भारी सर दर्द हो रहा है, तो अपनी मर्जी से पेन किलर्स ना लें, प्रॉपर उसकी जाँच करवाएँ। और जो डायबिटिक हैं, जो दूसरी बीमारियों से ग्रसित जो लोग हैं, वो कंटिन्यू अपना फॉलोअप करवाएं, क्योंकि किडनी फेल्योर का सबसे बड़ा कारण भी डायबिटीज़ है, तो मेरे हिसाब से। और दूसरी बात, अगर आपका रिश्तेदार में या आपके परिवार में जन में किसी किडनी फेल्योर्स या आरसीएफ से पीड़ित है, तो आप उसको अपना अंग देके उसका जीवन बचा सकते हैं। किडनी देने से आपके शरीर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उनकी फैमिली एक सिक्योर हो जाएगी और जो नॉर्मल जीवन एक व्यक्ति जीना चाहता है, उम्मीद करता है, वो आपकी तरफ से गिफ्ट होगा उनको कि आपने किसी एक आदमी की जान बचाई, और इससे बड़ा उपहार तो कोई है ही नहीं। भगवान ने जो आपको दी है शरीर, आपने एक अन्य व्यक्ति को एक तरह से नया जीवन दान दिया है और उसका एक नया जन्म है जो आपके कारण हुआ है। तो अंगदान बिल्कुल बढ़ चढ़ कर करना चाहिए, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, ना आपके शरीर में किसी तरह की कोई क्षति होती है या काम के अंदर कोई दिक्कत होती है। जैसा आप नॉर्मल वर्कआउट कर रहे हैं, जैसा नॉर्मल आप ऑफिस जा रहे हैं, जैसा नॉर्मल आप अपने बच्चों के साथ अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वैसा ही करेंगे। तो ये जो कोई मिथ्या है ऐसी कि कमजोरी आएगी या फिर मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दोस्तों आशा करता हूँ जो मूल्य आप लोगों को देने के लिए हमने शो स्टार्ट किया था वो हम दे पाए हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और भवानी सिंह जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ पर कि सर आप हमारे साथ जुड़े और अपने विचार हमारे साथ साझा किए। जाते हुए वापस से एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ, जीवन यकीनन एक अनमोल उपहार है, लेकिन सबके लिए बराबर नहीं होता, कईयों के लिए बीच में दिक्कत हो जाती है। तो कोशिश करिए किसी और का जीवन जो आप वापस से एक अनमोल उपहार बना सके। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऑर्गन इंडिया की पहल जीवन एक अनमोल उपहार आप सुन रहे थे। मेरा नाम है सागर, फिर मुलाकात होगी, तब तक आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार।
2: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चहुं ओर फहराएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का, जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। अंतरतम के विश्वास संग बाती नहीं की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं।
3: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंग दान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
1: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
0: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर भारोत्तोलकों को बधाई दी। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
2: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूँ, ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूँ, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाने और रखना आपकी जिम्मेदारी है।
0: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा। भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि परीक्षा में अनुचित साधनों पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लॉन्गलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला है। उधर असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराइदेह जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से सम्मानित और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 638 अंक बढ़कर 76,698, जबकि निफ्टी 185 अंकों की बढ़त के साथ 23,952 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात देकर के उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए। वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी है।

0: फिर भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठे?
1: पता नहीं, उसे टीबी है।
2: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
3: पता है ना मुझे टीबी है।
2: चल चल, तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है, तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: Oh, no. देख लो कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
5: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही रहेगा लगता, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं, मेरे ही होंगे इस घर में। और रहते ही कौन है?
7: भारी मिस्टेक हो गया सर। भारी मिस्टेक हो गया सर।
6: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।
5: गजब टोपी बाजा।

दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिता के साथ। तो आइए श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.9 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। बिल्कुल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों पंजाबी गीतों का कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी आशीर्वाद रुचिका के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात दे करके उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए और वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी।

साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर

0: भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठा
1: है? तुझे उसे टीबी है।
2: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
3: पता है ना मुझे टीबी है।
2: चल चल तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है, तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: Oh, no. देख लो कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
5: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही रहेगा लगता, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे इस घर में और रहते ही कौन है।
7: भारी मिस्टेक हो गया सर।
6: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।
5: गजब टूटी बाजा।

दर्शो तो सारे रेडियो गुंजन धर्मशाला च शशि का प्यार भरा स्वागत है। तो स्वागत जेड़े से यहाँ करी ते कने तो हाँ सारे ही फिरी ते वापिस पुजी उसी दौर च या दौर बोली सकते या अगले दिने दी शुरुआत हाँ बोली सकते। वैसे तो हाँ शुरुआत जेड़े से करी ती हुए कने दोपहर दे जेड़ा 2:02 कार्यक्रम च हुई न कने जेड़ा दोपहर दी थोड़ी दी सुस्ती अहां अंदर छाई होंदी से जरूर अहां भगाना आई हो न कने तो हाँ सारी भी इस सुस्ती जो भगाने वास्ते अपना अपना रेडियो सेट जेड़ा से तो हाँ ऑन करी ले आना है कने रेडियो सेट सुनना जेड़ा से शुरू हुई होने न तशो तो हाँ सारी कार्यक्रम सुना देन माटी दी महक कने मैं तो हाँ सारे दी अपनी रेडियो दो शशि कार्यक्रम लेकर ही हाजिर हुई हो कने जेड़ा ए कार्यक्रम दा सफर तुहां तक रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक कने कार्यक्रम फरमाइशी कार्यक्रम है तुहां सारे भी इस कार्यक्रम च जेड़ा रहिंदा है से तुहांदियां फरमाइशां भी जरूर तुहां तक पहुँचांदे न कने इसी कने जेड़ा गलबात है सभी रहिंदी है कने कुछ जानकारियां भी जरूर तुहां तक पहुँचांदे न कने तुहां ध्यान ने सुनदे भी है तो जरूर इस कार्यक्रम दे सफर कने जुड़िया। सफर की शुरुआत अहां एक प्यारे दे गीत कने करदे न क्योंकि गीत कने कार्यक्रम दा जेड़ा सफर है से और भी प्यारा लगता है तो इस सफर जो और भी प्यारा बनाना है कने तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर कने जुड़ना है तो श्रोताओ जुड़ते न अहां भी इस सफर कने इस गीत कने तुहां सारे भी इस गीत कने जरूर जुड़ा कने अपनी जेड़ा यादा न तिना जो जरूर याद करी सकते कने अहां कने सांझा जेड़े से जरूर करी सकते।

0: ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे सुना ये प्यारा दिया गीत प्यारी दे शुरुआत तई शुरुआत जड़ा से हाँ जो मजबूर कर दी है अपने बचपन की ओर ले करी जाती है कने तो हाँ सारे भी इसी शुरुआत कने अहाँ दे जड़ा पहले श्रोता न तिना कने कर दे न गल बात। हेलो
1: हेलो, नमस्ते शशि जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला जी। तुहां कुथु ते बोला दे कने तुहंदा नां की है जी?
1: तंगरोटिया के बोलना जा रमेश मेरा नाम है।
0: जी तां रमेश जी, आज अहां जिड़ा गलबात करा दे ना तुहां जरूर रेडियो सेट शुरू ते ही ऑन कित्ते होना ना जी?
1: चुप क्या था, बिल्कुल कही जाएगी तो कब है।
0: जी, तां गलबात ये है कि पुरानियां यादां जरूर तो हाँ भी सांझा करी सकते ना जी।
1: हाँ जी, हाँ जी। हाँ
0: जी तो गाँव दी कुछ पुरानी याद जिड़ा तुहंदे बचपन कन्ने जुड़ी है या तुहं जो अली भी से कुथी ना कुथी तुहंदे चेहरे पर स्माइल ले करी आंदी है
1: जी,
0: जी। जी तो क्या जिड़ा याद है से तुहां सांझा करना चांगे आप बाकी श्रोता तक?
1: बचपन
0: जी मेरी जानता है ना जी।
1: में
0: जी जी तां रमेश जी, आज तो हाँ कुंदिया गीत अपनी पसंद का सुनना है जी। जी इना बड़ियां जो तुड़का लगाना ठेकेदार ने है। जी जरूर जी, तुहंदी जिहड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचांदे जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा।
1: ठीक है जी।
0: जी

दर्शकों तो सारे सुनिया ये गीत। इस गीत के बाद अहाँ अपनी गलबात ले करी तुह तक पूछियो ने ये फरमाइश अहाँ जो आई हुए रमेश जी दी कने से रहने वाले ने तंगलोटिया ते तो जरूर तिना तक अहाँ ये गीत ये फरमाइश पहुँचाई कने फिर ते अपनी जेड़ा गलबात है से ले करी अहाँ आई हो ने माटी दी मेह कार्यक्रम तुह सारे जो पता है कि अहाँ जो जरूर है अपनी मिट्टी कन्ने जोड़ी के रखता है अपनी धरती माता कन्ने जोड़ी के रखता है। कुछ यादा चाहे से गाँव दिया न गाँव दिया यादा जड़ा न से बड़िया सुहानिया होंदिया या याद करी करी थोड़ा दिया मने च तनाव है तो सभी दूर भागी आंदा है। तुहांदा तनाव भी जरूर भागा दौड़ा है कने जेड़ा दोपहर दी सुस्ती तुहां पर छाई हुए सभी जरूर तुहां तिहा जो भगा देने न क्योंकि भगाना तो बन रहा है ना। तुहां सारे दे अपना कार्यक्रम है माटी दी महक तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर चाह करने जुड़ी सकते तो जरूर यादा जेड़ा न सहां साझा करनिया न। अगर गाँव की गल करिए तुहां भी अपनी कोई छोटी दे जेड़ा कहानी है से साझा करी सकते कि तुहां अपने जेड़ा रहन सहन है या अपना जेड़ा जीवन का सफ़र है से किस प्रकार तुहां दा निकलिया या तुहां किस प्रकार अपने जीवन दे सफ़र च अगे बढ़े या तुहां जो क्या जेड़ा सीख है से मिली। कई बार होंदा ना कि हर इंसान च जेड़े से अपनी अपनी खूबी होंदी अगर खूबी अहाँ खुद अंदर ढूंढते न या खुद अंदर विश्वास करते न ताही अहाँ आगे बढ़ी पाते न कने जलू अहाँ जो फैमिली सपोर्ट करती है या फैमिली दा साथ अहाँ जो मिली आंदा है तहाँ दा जेड़ा कोई भी लक्ष्य है से अहाँ हमेशा उस जो पार करते न कने अहाँ हमेशा चाहे से अहाँ परिवार दी गल करिए या कोई भी है भाई बहन तिना दी गल करिए भाई बहन दा रिश्ता भी अहाँ दे जीवन च बड़ा प्यारा है पर इससे अहाँ पर निर्भर करता है कि अहाँ किस प्रकार उस रिश्ते जो समझते न या उस रिश्ते दी अहमियत जड़े से समझते न। आज के दौर दी गल करिए इतना तो तुहां सारे जो ही पता है कि रिश्तों जिहड़ा प्यार भावना है से बिल्कुल ख़त्म है पर अहाँ अगर इदी पर सोच विचार करते न ज़्यादा सोची करी चलते न ताई अहाँ कुथी ना कुथी अपने जेड़ा रिश्ते न तिना जो बचाई पाते न। गाँव का रहन सहन अहाँ जो क्या सिखाते है अपनापन अहाँ जो सिखाते है अगर अहाँ कोई काम करते न अगर अहाँ तिस कमे जो किले करा दे न अगर मैं तिस कमे जो किली करा दी है तो तिस कमे जो करने वास्ते बड़ा ज़्यादा टाइम लगता कने उसी काम जो अगर अहाँ मिली जुली करी कर दे न तो कुछ ना कुछ तिस कमे करने दा भी अलग ही अंदाज है चाहे तो हाँ अपने घरे च दिख दे होने न चाहे अपने आस पास दिख दे होने न पर से यहाँ पर निर्भर करता है कि अहाँ किस प्रकार अपना जेड़ा सफ़र है उस जो इंजॉय करते हैं ना इसी सफ़र जो आगे बढ़ाना है करे तो हम जो अगली फरमाइश की ओर ले करी चलना है। इंतज़ार था तो हम जो भी लग गया कि कालू दिया अगली जड़ा फरमाइश है से तो हम तक कहाँ पहुँचा देन तो ज़रूर ये जड़ा गीत है ये फरमाइश तो हम तक पहुँचा देन तो हम सारे भी इस प्यारी दिया फरमाइशा जो इंजॉय करा कने फिर बाकी दिया जेड़ा गल्ला न से तुहां तक ले करी आउंदे न तुहां सारे इन्ने ही सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। गीते दे बोल हैं असा चढ़ी बुझाना चंबे जो तो जरूर चढ़ना तो पौना ही है ना।

0: अगले जेड़ा श्रोता ने तीना गने कर देना गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी, क्या हाल चाल है मैम
0: जी? हाल चाल ठीक ठाक है जी। तो हाँ, अपना परिचय जड़े से जरूर दे दिया जी।
1: जी मैं कांगड़े से बोल रही पवना
0: जी। तो पवना जी, कांगड़े आले दे क्या हाल चाल है? मौसम क्या बोला था इस टाइम?
1: कदी धूप लगी पौधी, कदी बदल हो याद है
0: जी। कदी धूप है तो कदी छाव है तो कदी बरखा है ना जी।
1: जी
0: तो पवना जी, कुंडे याद तुहां सांझा करना चाहेंगे आज?
1: जी याद तो भूली भी गई हूँ, क्या क्या कि बचपन च।
0: जी भूलना नहीं है, याद करने फिर ते।
1: हाँ जी
0: जी जी।
1: हाँ जी, तो बड़ा बारी सोचना पौना क्या क्या कि हमारा हाँ बचपन च।
0: जी कोई जेड़ा तुह जो मतलब जेड़ा तुहंदे दिमागे चली भी है या कुछ खास होंदा ना, जेड़ा कोई यहाँ शरारत कीती हो है या कोई यहाँ मस्ती कीती हो है या कुछ भी कीता है तहां जो बार बार याद होंदा कि नहीं यहाँ अपने बचपन च मस्ती कीती हो ना जी?
1: हाँ जी, बचपन च जी यहाँ लड़ाई झगड़े तो बड़े कीते बच्चे ने।
0: जी जी जी।
1: स्कूल लड़ाई झगड़े कीते खूब सारे सारे बच्चे मारने।
0: जी जी, ये तो गलत है ना जी, थोड़ा देर ज्यादा हुई है फिर ये।
1: हाँ जी सब भाई लाइक थे पर मैं तो जरा दबदबा था ना बच्चे पर।
0: जी अच्छा, दबदबा भी रख दे थे तो उस टाइम कदिया लगता था तुम्हें तो कि थोड़ा दिया बच्चे पर दबदबा रखना भी जरूरी था ना जी?
1: हाँ जी हाँ जी, सर बाहर आए कि नहीं नहीं क्लास का मारी लैने बाहर आए कि बोलना उन्हें बैठी टीचर बोल रहे मारा था मारे हाँ मारे।
0: जी जी, चलो कई बार जरूरी भी होंदा ना जी, पर आज कने दौर दी गल करिए ता आज यहाँ कुछ बोली भी नहीं सकते ना जी। बच्चा ता पहले ते जवाब देना शुरू हो जांदा कि नहीं तो हाँ बोली ही कहो इन्ना।
1: हाँ जी, आजकल नहीं है ना सर, पहले बोलते हैं टीचर की अगर कुछ बच्चे नहीं हो जिस आई जिस बोल दे कि मारा इसे दो थप्पड़।
0: जी जी,
1: नहीं होता है ना, होता नहीं है सर, उनका कुछ नहीं बोली सकते टीचर भी बच्चे आए।
0: जी जी, चलो यादा जरूर अहां जो साझा करना चाहिए क्योंकि कई बार अहां दे चेहरे पर स्माइल ले आउंदियां ना जी।
1: हां जी,
0: कई बार बचपन स्ट्रगल च भी गया होंदा, पर अगर भाई बहन दी गल करिए तो सभी अहां वास्ते कितना मतलब सपोर्ट करदे अहां दा ना जी।
1: हां जी,
0: क्योंकि अगर मैं अपनी यादों तक साझा करें तो कुछ याद थी कि पहले स्कूल जाते थे ना हाँ भी तालू तो ये होता था कि गुत्ता करनी है, दो गुत्ता करनी है ना जी।
1: हाँ जी, ऐसा भी दो गुत्ता करनी
0: जी, तो फिर होया इन्ना कि मिंजो जेड़ा ऐसे दो गुत्ता करना नहीं होनी थी है ना जी।
1: जी
0: कहना मम्मी जेड़ा ऐसे घर नहीं थे, फिर अच्छा। दीदी भी थे पर दीदी ने थोड़ा दिया मेरा लड़ाई हुई थी ना जी।
1: अच्छा।
0: फिर मेरा भाई था तीना मेरिया जेड़ा गुत्ता ने से कितिया थी तीना।
1: अच्छा।
0: जी जी, तो मुझे से याद जेड़ा से बार बार आंदी, मैं अगर कभी भी अपने भाई बहन के गल बात कर दी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। जी जी, तो दिखा बचपन दिया याद ना कुछ यहाँ जो अहां दे चेहरे पर स्माइल जेड़ा से जरूर ले करी होनिया ना जी। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, जी, जी तो जरूर
1: पवना
0: जी, आज भजन सुनना तो हाँ
1: जी हाँ जी, कोई भी सुनाई जी।
0: जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी, तो हाँ
1: धन्यवाद जी,
0: जी। ये है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। तशो तो बचपन है, बचपन दिया यादा हर कुसियो याद होनिया, पर कुछ मस्ती भरे पल भी होंदे। अगले जेड़ा श्रोता ने तीना कन्ने कर देना गल बात। हेलो
2: हेलो
0: हेलो, नमस्ते जी।
2: हाँ जी नमस्ते शशि जी।
0: जी स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च, ठीक ठाक है ने?
2: जी
0: तो हाँ कुछ ते बोला दी कने तो हम दा ना किया है जी।
2: जी यही ऐसी तो बाड़ी ते बोला दी ना हरा अनु है
0: जी। अनु जी क्या काम कार छेड़े तो हाँ क्या करा दे?
2: जी कुछ नहीं करा दीदी
0: जी। तो तुहां कुन दी अपनी याद साझा करना चाहेंगे श्रोता तक?
2: बचपन दिया तो ये कि मतलब मैं कुछ भी न्याणे मार दी नहीं जेडे ने पढ़ते थे।
0: जी
2: हाँ जी हाँ जी
0: जी जी चलो अच्छी गल है। कने क्या तुहां जेड़ा बचपने दी कुछ खास है कि तुहां दिसा याद जो याद कर दी ना कुथी तुहां दे चेहरे पर स्माइल आंदी है?
2: बचपन च मतलब मेरी एक फ्रेंड थी ना बचपन ते असि इकट्ठे पढ़े
0: जी जी
2: फिर अहीं बड़े होंदे गए फिर वो चंडीगढ़ चली गए अहीं मेरा ब्याह हुई गया
0: जी
2: फिर उसा दा भी ब्याह ही हो रही बहरीन उन्हां नौकरी कीती होटल च 3-4 साल
0: जी जी
2: फिर उसा मुनिया दा भी ब्याह ही हो कने सोहरिया दे लेंटर पर टहला दी ब्याह ते को 15 दिन बाद
0: जी जी
2: कने उथे ते पई गई है कने रीढ़ दी हड्डी टूटी गई
0: जी। अच्छा बड़ी दुख दी घटना है।
2: दो हां जी हां जी 2 साल होए ता वो नीरे ही पई
0: जी।
2: तम मेरे आना जीना मतलब बहरीन से उन्दी ही मेरे यार साले साले आना जीना तल्लू छुट्टियां पाउनी है बाहर
0: जी जी।
2: हां जी हां जी ए मिस कर दी बस और क्या था बचपन ते कट्ठे रही हो रे
0: जी। चलो दोस्ती जेड़ा से है तोहंदी जेड़ा थी बड़ी खूब थी पर समय दा दौर ऐसा था कि ये दोस्ती बिछड़ी गई ना जी।
2: हाँ जी
0: जी चलो थोड़ा दिया बड़ी दुखद भरी घटना जिड़े से तुहा सुनाई ता जिंदगी है जिंदगी दा भरोसा नहीं है ना जी कि होने वाला समय यहाँ वास्ती किस प्रकार रहना है ना जी।
2: कई बार यहाँ जैसे बोलते पे तू बहरीन रहंदी मालदीप
0: जी जी
2: तू अपनी पसंद दा ब्याह कर बोलदी नहीं जिथे माँ प्यो ने करना उथे करना माँ प्यो दी मर्जी दा ब्याह भी किता
0: जी जी
2: रा मुंडा भी है खरन निकले क्योंकि है तालू लेंटर ते पे ये उते बाद अपने मापिया दे घर रही है
0: जी जी
2: फिर वो कदे उनी 2 साल मंजे परे उनी कदे भी पूछया नहीं उसायो
0: जी
2: कि तू ठीक है नहीं या कुछ भी नहीं थोड़ा जी सही जिस दा लगी पिया पे पूछदा मंगदा नहीं
0: जी जी चलो सही है ना कि पता नहीं कुंडिया पल

0: जरूर जी, तुहदी जिहड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचान दें जी।
1: हाँ जी हाँ जी, कल असि तो ही ना लाइव दिखे थे पहली बार
0: जी जी, तक
1: मैं सोचा मैं क्या मतलब जी जेडे रेडिये च आंदे हक दे होंगे दिखने, फिर मेरी मुन्नी बोला मम्मी ये लाइव होंगे, फिर असि तुहानू ना 2 मिनट दिखिया हा 2 बजे
0: जी जी। अच्छा कदे लग्या था तो जो दिखने का एक्सपीरियंस
1: ना तुसी मुझे मतलब जिन्ना जनानी लगे ना कुड़ी लगे या लगे जी मीडियम से
0: जी जी।
1: मेरी मुन्नी बोले मम्मी ये जनानी की कुड़ी, मैं ले ना जनानी है ना कुड़ी मतलब इं लगन भेजियां
0: कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ांदे ने कने सुनदे ने सब प्यारी दिया फरमाइशा जो
2: अजीबो गरीब रूप देखकर चकाचौंध को देख अपने आप को

0: तशु तो ये गीत हाँ पहुँचाया पवना जी तक कने से रहने आए न कांगड़े ते तो जरूर कांगड़े तक हाँ ये गीत ये फरमाइश पहुँचाई कने तो हाँ सारे भी इंजॉय की थी तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर च जुड़ी सकते कने अगले जेड़ा श्रोता न सभी इस सफर कने जुड़ी उन कर दिन तिना कने गल बात। हेलो
1: हेलो, नमस्ते श्रीशी जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना
1: जी? बिल्कुल जी, और बड़ा धन्यवाद
0: जी। इंदु जी तुहां बोला दे सिदबाड़ी ते ना जी?
1: हाँ जी, हाँ जी
0: जी। ता इंदु जी, क्या याद तुहां आज साझा करना चाहते या क्या पुरानिया याद है ना तिना जो तुहां जरूर बाकी श्रोता तक साझा करना चाहेंगे?
1: वैसे तो ज्यादा तो बड़ी है, इस टाइम याद नहीं होती, पर ठीक है, याद है हल्की दी
0: जी।
1: मैं जरूर शेयर करनी थोड़े
0: जी जी जरूर।
1: आप तो क्या करते बोलते ना बचपने से ना
0: जी,
1: बोलते बच्चे जड़े होंगे है हड़पंगे भी होंगे
0: जी जी।
1: ऐसा भी है ना, बचपन होता ही ऐसा, चल
0: जी
1: मैच्योरिटी का बात ही होंगी है ना, के मतलब नहीं, पर हाँ जो बचपने से किते नोट देंगे हम से तह क्या करना ना, छोटे छोटे हाँ था रस्ते जिया पहले तो कच्चे रस्ते होंगे है, पक्के कुछ होंगे है ना
0: जी जी।
1: करना ना असिया अगर चलने होंगे ना रस्ते, पर रस्ते जिया आखे पखे गा आना ना, अह क्या करना छवन ही देना करी कोई आने जाने ना पे ही जाना जिस तरह, मतलब बड़े भी नहीं बना बच्चे की गठा कितनी चुनी है माड़िया दी यही है कदा, पर मतलब ठोकर दे बंदे लगी जी ना
0: जी जी। अच्छा
1: हाँ ना, एक ताऊ के मुंडे है ना फिर बड़ा खराब था ना उस टाइम, कहना हाँ डरते बड़े पर ये किसी ना हूं दसा बच्चे तो डरते भी नहीं, पर तब बड़े फिर डरदार हों
0: जी।
1: क्या किया गा बंदे धीया कहना सह पे ही है बेचारा भाई
0: जी,
1: कहना किसी लगी भी है पता की यह काम ही ना ही होया फिर
0: जी जी।
1: कि जिसे आगे आगे हाँ चले है ना पीछे पीछे चले है ना, बची गया बोलिया ठोकर लगी
0: बचपन भी इंजॉय करना थोड़ा क्या ज्यादा जरूरी है ना जी।
1: हां जी,
0: बचपन दिया यादा कई बार यही होंदा कि आहां दे चेहरे पर स्माइल जरूर रखी दी है ना जी। बरसात का मौसम है कुथी ना कुथी अहां जो सतर्क रहने वास्ते भी पेरेंट्स बोलते ना, अहां अपना बरसात का मौसम भी इंजॉय कर दे ना, हर कुसी दी अपनी अपनी मस्ती है ना जी।
1: हां जी
0: जी। ता इंदु जी, आज तुम्हां कुंदिया गीत संगीत सुनना पसंद करगी?
1: आज पानी की टंकी से नहीं सुनाया आज
0: जी,
1: आज लाइट आधी जा दी ना
0: जी। नहीं नहीं,
1: आज प्रोग्राम ठीक से सुनया नहीं ना
0: जी, अली बस प्ले ही करना है जी।
1: धन्यवाद
0: जी तुहांदा। श्रोताओं तुम सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कन्ने, इसी कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाने कने जेड़ा गीत संगीत है या फरमाइशां दा दौर है सभी जरूर तुहां तक पहुँचाने कने तुहां सारी भी इस कार्यक्रम दे सफर च अहां कन्ने जुड़ी सकते कने अहां कन्ने गलबात जेड़े से जरूर करी सकते। गलबात दे चलदे थोड़ा दे अग्गे बढ़दे न कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचांदे न, सुनने इसा प्यारी दिया फरमाइशा जो तुम सारे भी इंजॉय करा इस गीत जो भी जरूर इंजॉय करना है करे इस कार्यक्रम दे सफर करने जुड़ी भी सकते। सफर जो थोड़ा दे आगे बढ़ा देना करने ये गीत जेड़े से तुम तक पहुँचा देना, तुम सारे भी इंजॉय करा।

दशोत्तम पानी दी टैंकी तो हाँ सारे ये गीत सुनिया करने। इस गीत की फरमाई शाह जो आई हुए इंदु जी दी कने अनु जी दी तो जरूर तिना तक कहा ये गीत पहुँचाया करने। इसी करने श्रोताओं तो हाँ सारे जो याद होने कि नाहल अगर पुराने दौर की यहाँ गल करिए पबजी की गेम आती थी, नाहल बाकी जड़ा गेम सन से आती थी, बस जड़ा खेम गेला जड़ा खेला न तिना दी गल करिए जड़ा गाँव दियाँ खेला न हाँ तिना जो खेलते थे कने तिना ची ही अपना जड़ा बचपन है से कुथी ना कुथी इंजॉय करते थे। बरसात का मौसम चलिया कागज़ दी जड़ा ना होए से हाँ बनाते थे कने तिहा जो बारिश दे पानी च जड़े से चलाते थे तिसे दिखी के यहाँ खुश हो जाते थे। पर अजकने दौर की गल करिए हाँ जिड़ा अपना बचपन जड़े से फोना तक ही सीमित जड़े से रखी दिया ना हाँ अगे बढ़ते न ना हाँ उसी जगह च बैठी रहते न उसी मोबाइल तक मोबाइल च ही बिजी रहते न कुथी ना कुथी अपना जड़ा समय है से हाँ मोबाइल फोन च ही सीमित करी दिया। दशो तो कुछ जड़ा जानकारियां न सभी तो हाँ तक पहुँचाते न कने गलबात अहाँ दी चलियो थी जड़ा पुरानियां यादा न तिना जो जरूर आज हाँ ताज़ा करा देना कने जड़ा श्रोता न तिना भी अपनियां यादा ताज़ा कीतियां न कने तिना दे चेहरे पर भी जड़ा स्माइल है कने दोपहर दी जड़ा सुस्ती है से जरूर गायब हुई होनी है। समय दी जड़ा घड़ी है सभी टिक टिक टिक कर करी अगे बढ़ा दी है कने हाँ भी इसा समय दी घड़ी कने अगे बढ़ा दी न समय दे अनुसार कने गल करिए जानकारी दी तो हिमाचल प्रदेश सरकार जिड़ा लोक निर्माण विभाग ने जिड़े से फील्ड कार्यकर्ता जिड़ा जूनियर इंजीनियर जिड़ा न से जेई जो राहत देते राहत जिड़े से दिती है कने इसी कने जिड़ा 1000 मानसिक जिड़ा ये भत्ता से देने दी मंजूरी जिड़े से कीती हो है। तो श्रोताओं परीक्षा व्यवस्था च सुधार करने वास्ते पीएम मोदी ने जड़े से बनाई है हाई पावर स्टार्क जड़ा फोर्स है से ज़रूर तैयार जड़े से कीती है। तो ज़रूर तो हाँ ये जानकारी जड़े से सुनी होनी कने इसी कने हाँ फिरी ते अपने कार्यक्रम दे सफ़र जो अगर बनाना है कने सफ़र इन्ने चलता रहता है तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर करने जुड़ी सकते कने हाँ करने गलबात जड़े से जरूर करी सकते। गलबात करने वास्ते फ्री ते तुहां तक नंबर पहुँचाई देना क्योंकि नंबर तुहां तक पुजेगा ताई तो तुहां इस नंबर पर कॉल करी सकते या टेक्स्ट मैसेज करी सकते या व्हाट्सएप मैसेज करी सकते। नंबर नोट करा नंबर है 701-811-7091। इस नंबर पर कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा कने हाँ तो जो अगली फरमाइश की ओर लेकर चल देना जाने तो हाँ सारे भी अगली फरमाइश की ओर कि नहीं जाना है ज़रूर टेंशन मत लिया लेकर ही जाने न तो हाँ जो जड़ा फरमाइशों का दौर है सभी जरूर अहाँ तो हाँ तक पहुँचाना है कने गलबात के बाद गीत संगीत होना भी जरूरी है कार्यक्रम का जिड़ा सफ़र है से और भी प्यारा लगता है तो इस सफ़र जो और भी प्यारा बनाना है कने धुन हाँ सुननी है ये गीत ये फरमाइश सुननी है।

श्रोताओं तुम सारे सुनिया ये प्यारा देया गीत, प्यारी देई फरमाइश। चलते चलते यहाँ ये गीत ये फरमाइश भी तुह तक पहुँचानी है। कने कार्यक्रम जेड़ा समय है से हाल बड़ा थोड़ा दे

दर्शो तो इस गीत की फरमाइश यहाँ तक पहुंची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने तिना का नाम है अजय जी कैसे रहने वाले ने गोपालपुर के तो तुम सारी अपनी रेडियो दो शशि जो दे अनुमति करने कर फिरी जेड़ा ठीक समय 2 बजे जेड़े से मिलते हैं इस कार्यक्रम से करने हमेशा खुश रहा कने सफर जो इंजॉय करा क्योंकि ये सफर तो जरूर इंजॉय करने कने अपनी जेड़ा पुरानी यादा ने तिना जो हमेशा संजोई करी रखने कने जेड़ा बच्चे ने से अपना बचपन जरूर इंजॉय करा इसी कने तुम अपने रेडियो दो शशि

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात देकर के उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए। वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी है।

0: साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
1: पता नहीं, उसे टीबी है।
2: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले।
3: पता है ना, मुझे टीबी है।
2: चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी के दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है, तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: Oh, no. देख लो, कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
5: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही रहेगा लगता, रख के भूल गया होगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे, इस घर में और रहते ही कौन
7: है। भारी मिस्टेक हो गया सर।
6: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।
8: गजब टूबी बाजा।
0: 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: ऑलराइट, इसमें झगड़ने की क्या बात है?
1: पहले तो पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टरका
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
0: मेरी
1: है
0: भी तो सुनो।
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए,
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर
0: मंडरा,
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं
0: चलती।
1: तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
2: 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात दे करके उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए। वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी है।

0: फिर भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
1: तुझे उसे टीबी है।
2: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले।
3: पता है ना मुझे टीबी है।
2: चल तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी के दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है, तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: देख लो कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
5: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही रहेगा लगता, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे इस घर में और रहते ही कौन है।
7: भारी मिस्टेक हो गया सर।
6: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।
8: गजब तुम्हें।

0: नमस्कार श्रोतों, FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और हूँ सचिन कपूर हाजिर हो चुका कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। हाँ जी, क्या हाल चाल न? ठीक न? उम्मीद करनो ठीक बुने और कर करे लग रहे हिन। उम्मीद हाँ, अपने अपने कम में कह रहे सब के न सो व्यस्त बुने हिन और अपने अपने कम में कह रहे के न सो लग रहे बुने हिन, है ना। तो कामकार भी जरूरी है श्रोतों, लाइफ में बहुत जरूरी है। इंसान जो व्यस्त रहना भी जरूरी है, हंसते रहना भी जरूरी है, कमंदे रहना भी जरूरी है और हगों बढ़ते रहना क्या सो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निरंतर अपने प्रयास क्या न सो अपनी फील्ड में लगातार तो है जारी रखना तो बिल्कुल कामयाबी की सो जरूर मोल दे है शो। तो अपने आप जो समय समय पर किया सो बदलना, समय समय पर अपने आप जो डेवलप करना किया, ये जो व्यक्ति जीवित ने तैयारी ये एक तो है बल्ले सकदन की कहानी बोल सक दिया कि समय समय पर अपने आप जो बदलना जरूरी है और समय सो के आगू बढ़ना भी जरूरी है। हम सचिन कपूर हा हिंदी अपनी गप्पा लेकर हाजिर हुआ तुम अपना गादा कार्यक्रम है श्रोताओं। इस कार्यक्रम में तो है कॉल कर सकते हैं, अपना पसंदीदा गीत होने सकते हैं 7081889 पर नंबर आक मौके फिर आऊँ शेयर करी नो जनाब 7081889 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत होने सकते हैं, अपने क्षेत्र रे जानकारी किया सो साझा कर सकते हैं। यह गल्लारा खास ख्याल रहे कि जानकारी किया सो साझा करने लायक जरूर बहुत जानकारी किए श्रोता हूँ सो रेडियो मंच दसने लाइक किया सो जरूर हुआ। चली जी इंदे पहले श्रोता सोगी कनेक्टेड हैं पुस दिन कुल वल्लों दिन और कड़ी थम वल्लों दिन। नमस्ते जी।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी। नमस्कार।
1: क्या हाल चाल जी?
0: बहुत बढ़िया जी। तो है बल्ले तुंदे क्या हाल चाल ना?
1: बहुत बढ़िया जी।
0: और कर लुगरिन?
1: बस ये करना क्या जी, बस बैठे।
0: अच्छा
1: ड्यूटी पे?
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ जी।
0: हाँ कुंडन गीत सुनना पसंद कर ले तू है?
1: ईशांत भारद्वाज जी की आवाज भोले बाबा का भजन सुना दो कोई।
0: अच्छा ईशांत की आवाज से भोले बाबा का भजन
1: जी।
0: चलिए कौन बलुंदन और कड़ी थम बलुंदन जी?
1: मैं एजुकेशन बोर्ड धर्मशाला से बोल रहा हूँ जी, अनिल कुमार।
0: अच्छा अच्छा अच्छा चलिए ठीक है जी, आज जरूर सुन ले तू।
1: धन्यवाद जी।
0: धन्यवाद जी। धन्यवाद। चलिए श्रोताओं कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर है हाजिर हुआ हिन, कुछ एक बहुत सारी जानकारी तू हो गया सो शेयर करनी हिन साझा करनी हिन श्रोताओं सो भी जरूर कर ले है तू होगी जरूर साझा कर ले शेयर कर ले। बहरहाल आगाज कर लेंदे इन श्रोताओं कार्यक्रम रहा इस गीता सो गया और फिर गीता थो बाद श्रोताओं तुसु सभी तक जानकारी रहा पिटारा गया सो भी बिल्कुल ओपन हाँ श्रोताओं और धीरे धीरे इंदे जो श्रोता सूगे कनेक्ट हुए सो श्रोता भी असू तुसु होगे कनेक्ट किए ना सो करना हिन। आइए था आगाज कर लेंदे कार्यक्रम रहा श्रोताओं इस प्यारे दे गीता सोगे बने दे तो सब आरजे सचिन कपूर सोगे गूंज अपने बन रहे और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रे।

শত এফএম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডি গুঞ্জন ধর্মশালা তো এস সব টিউন কর রো আর কার্যক্রম হিন্দি আপনি গপ কে ন আসো চল রিন তা চলিয়ে শত তো সব জুড়ে সকতে হ্যাঁ 7018817091 পর কল করে গে নম্বর এক মোকে ফির এ হ্যা আতু ও কি শেয়ার কর দেন সাঝা কর দেন 7018817091 পর তো কল করে সকতে হ্যাঁ। चलिए तो कुछ एक जानकारी के सतुस हो गया है शेयर कर दें साझा कर दें। श्रोतों हिमाचल प्रदेश सरकार की सो लोक निर्माण विभाग में फील्ड में जो कार्यरत जूनियर इंजीनियर हिन जई जितियो वलदन है तीनों राहत देते हैं और तीनों वर्क्स एंड अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम भत्ता देने वास्ते कि ऐसो निर्णय लियो है। श्रोतों सरकारी औरतों के ऐसो जारी अधिसूचना के अनुसार फील्ड में तैनात प्रत्येक जूनियर इंजीनियर जो किया सो 1000 रुपया प्रतिमाह भी दर थो किया सो भत्ता अब मुड़ना है। श्रोतों ये आदेश तत्काल प्रभाव तो लागू बुझी गया हिन। तो इस प्रकार होगी जानकारी रहा सिलसिला चलते रहना श्रोतों जानकारी रहा पिटारा किया सोएं खोलते रहना हाँ ज़रूर बने रहे तो सब वेड़ी गुंजन धर्मशाला सोगी गूंज अपने पन रे और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रे। ताइए जी कार्यक्रम जो है को बढ़ते हैं और फरमाइश और दौर किए सो पूरा करते हैं श्रोतों।

শত এফএম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডি গুঞ্জন ধর্মশালা তো হে সবই টিউন কর রো আর কার্যক্রম মে আর জে সচিন কাপুর সো কে বিলকুল লাইভ ফোন কর দেন শত আপনে আপনে রেডিও সেট মা তা চলিয়ে জি জানকারি রা পিটারা গিয়া সো খোলতে চলতে হিন তো সব বন্ধু নে সময় রেডি গুঞ্জন রে গুঞ্জ সো কে আর বিলকুল আর জে সচিন কাপুর সো কে এস নাচি সো কে শত ইয়া কার্যক্রম জো আগো বড়ন দে হিন আর লেকে চলতে তো সবই শ্রোতা জো ऐसा खास जानकारी री किनारी शतों मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखु के ऐसो कांगड़ा जिला शाहपुर उपमंडल रहे तहत राजकीय वारिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बोमा स्थापित राहत शिविर रा निरीक्षण करो शतों और तड़ी ठहरू रहे प्रभावित परिवार थो मुलाकात के असो करी सीएमए वल्लो हा कि जिया परिवार रे गाय या भैंस आपदा मा के असो गुजरे गया मरे गया तिन्यों के असो 55,000 रुपया प्रति पशु तथा जियारी बकरी के न सो मरी गई न तिन्यों 15,000 रुपया प्रति बकरी मुलना प्रति बकरी 15,000 रुपया सहायता राशि की असो मोलने हैं और जियारे घर में आपदारा पानी घुसने तो नुकसान हुआ है तीनों 1,00,000 रुपये रे राहत किया प्रदान होने हैं शोतम क्षतिग्रस्त दुकाना वास्ते की असो नुकसान रे आधार पर 50,000 तो 1,00,000 रुपये तक की असो मोलना है फसल वे नुकसान पर किसान जो 5,000 प्रति कनाल रे हिसाब थो मुआवजा के अशोतों सो मुलना हा और जिया परिवार जो अस्थाई रूप थो किराए वे मकान मा रेव कर दे हिन तिया तिन्यों के सो 5,000 रुपया प्रति वो घाटी मा पुजे करे आपदा प्रभावित परिवार थो जान मुख्यमंत्री जी है कि ऐसो त्यारा हालचाल पूछो त्यारा क्या हालचाल न त्यार है मतलब सो जानू है ना और श्रोताओं बिल्कुल वीर कुमार पीएचसी जो किया सो अपग्रेड करने वास्ते किया सो सरकार वल्लों कर दे है प्रभावित परिवार थो 6 महीने रा राशन भी निशुल्क उपलब्ध किया सो प्रभावित परिवार जो कराना है ये कुछ वाइद्य के न सो इंदे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखु के न श्रोतों सो करें बहरहाल तो सब बने रहे आर जे सचिन कपूर सो गए वेड़ी गुंजन री गूंज सो गए इसी प्रकार हो गए श्रोतों सो जानकारी रा सिलसिला जानकारी रा पिटारा किया सो ये खुल दे रहना श्रोतों लेके चलते तू सभी जो कजो की तो है बन रहे इस समय वेड़ी गुंजन री गूंज सो गए और आर जे सचिन कपूर सो गए तो कॉल जरूर कर सकते हैं जनाब अपना पसंदीदा गीत सुनने वास्ते अपने क्षेत्र जानकारी किया सो साझा करने वास्ते 7018879 एक पर नंबर एक मौके फिर यूँ शेयर करना हाँ 7018879 एक पर तो सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत श्रोताओं जरूर तो सब किया सो हो नहीं सकते हैं चलिए चल दें छोतों और उन्हें तो सभी जो इधर बहुत ही प्यारे राणा अंकल जी हैं जारी कि इनते ऑफिस तो थोड़ी करी हार्डली थोड़ी करी ऊपर गया सो त्यारी अपने बहुत बढ़िया शॉप आ हमेशा हूँ देन दे राणा जी और त्यारी मिसिस जी तैयारी पसंद में गीत हूँ देना ऐसा बने रहे तो सब आर जे सचिन कपूर सुगे ऊंच

0: तशोधम बिल्कुल तो है, जरूर अस होगी, जुड़ी सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 7018887091 पर, नंबर एक मौके फिर आऊँ शेयर करनो हाँ 7018887091 पर तो है, सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सो होनी सकते हैं, अपने क्षेत्र रे जानकारी किया सो वो गीत साझा कर सकते हैं। एक अल्लाह का खास ख्याल रहे कि जानकारी जनाब साझा करने लायक जरूर बुआ रेडियो मंच दसने लाइक किया सो जरूर बुआ शो दो। ये चल दिन कार्यक्रम जो है बढ़न दिन थोड़ा करी और हगू और अगली कुछ एक जानकारी होगी कि ऐसा तुसु रूबरू करवाते हैं तो ऐसा बन रहे इस समय आरजे सचिन कपूर सो के लाइव कार्यक्रम हो कर देने अपने अपने वीडियो सेट में 91.2 MHz पर। चलिए अमेरिके में राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है बाखूबी जान दें सब है ना, तिन्या ईरान सोगे के सो पिछले 13 दिन था लगातार जारी हमले पर फिलहाल के सो ब्रेक लाई देते हैं श्रोता हूँ, लगभग 2 हफ्ते था रोज के श्रोता हूँ हर रोज के सो हमले बच्चू करते थे और 2 हफ्ते रे हर रोज रे हमले था बाद किया ये पहला विराम किया सुनिए करो हर श्रोता हूँ, नए हमले व प्लान तैयार करने व बावजूद ट्रंप है कि ऐसो सेना जो नए स्ट्राइक करने था कि ऐसो मना करी देता है, अमेरिका रहा ध्यान अब बातचीत रही और किया सो बड़ू करता है श्रोता हूँ, हालांकि ज़रूरत पैने पर किया सो अमेरिका रे सैन्य अभियान जो किया फिवित हूँ शुरू करने भी पूरी तैयारी के सो रख रही हैं, अमेरिका मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर है गल करने श्रोता हूँ तो ट्रंप है कि ऐसो कूटनीति के कोशिश जो मौका देने थो घटित मिसाइल रक्षा भंडार री चिंता और युद्ध ज़्यादा बड़े गाने वे डरा थो किया सो फैसला किया सो ले हाशो तो सो बल देना कि कभी भी गुमान किया सो किसी गल रहना करना चिंता। हाँ बिल्कुल अमेरिका रे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो भी बहुत गुमान तो गया अमेरिका के सो सब तो और हाँ भी विकसित देश भी हा ताकतवर देश भी हा नो डाउट बहुत सारे हथियार बहुत सारी सेना किया सो अमेरिका ले थे लेकिन फिर भी आजकनी डेट में अगर हम गल करूँ तो अमेरिका किया सो बिल्कुल ईवान नगो किया सो जो मीडिया रिपोर्ट्स बल्लू कर दिन सो ये बल्लू कर दिन कि अमेरिका के असो गलबात करने हो तैयार है झुकने हो तैयार है बिल्कुल श्रोता हूँ और ताएँ अमेरिका के असो गलबात करने हो तैयार बुआ क्या है कभी भी कि असो दुए ये ना कह सकते क्या है बहुत चतुर चलाक हिन और दुआ बंदा मतलब इसी कुछ ना पता या ये कुछ जानता नहीं या फिर ये इंदे बराबरी रहने हाँ है ना या ये इंदा लेवल रहने ये ना बोले सकता शो तो बहुत बड़ा एग्जांपल है अमेरिका और ईरान रा युद्ध असु सभी सामने बने रही है तो सब वेड़ी गुंजन धर्मशाला सोगी इस प्रकार होगी जानकारी चलती रहनी इन श्रोताओं इन दे श्रोता भी असुगी कनेक्टेड हैं तो तुस होगी भी जरूर कनेक्ट करें दे हिन नमस्ते जी
1: नमस्ते सचिन जी
0: नमस्कार जी नमस्कार
1: और क्या हाल है
0: बहुत बढ़िया जी थोड़ी करी आवाज क्लियर इल्ली तुंदे
1: हां जी
0: आवाज में ले थोड़ी करी क्लियर पूछ लिया सु तकर
1: क्लियर में छोड़ दे
0: हाँ अभी चले आए जी जी
1: सिग्नल तो यार कलपुरे थोड़े थोड़े सिग्नल तो पुराना मुड़े
0: मेरे अच्छा जी जनाब कौन बोल लंदन और कड़ी थों बोल लंदन
1: कमलेश कपूर बोल रहा खनियारे पटोली
0: अच्छा कमलेश कपूर जी खनियारे थों तो लगुरे जी खनियारे पर का
1: अरे हल्के हल्के लगे यार जी शुरू
0: हुए अच्छा हल्के हल्के लग गया चलिए जी और ठीक ठाक न खनियारे वाले सब
1: सब
0: बिल्कुल अच्छा ये दस कि जिस प्रकार हो कि पहले दूरदार पेंदे थी खनियारे जिस प्रकार हो कि पहले खरे दूर रेंदे थी ना पटोला ग्राउंड साइड है ना अभी भी तीन दिन रेंदे न की बरसाले की न रेंदे
1: ना बस सो दे ना कभी कदाय पेंदे ना बस सो दे पहले ये ज्यादा कर दूर के बारे था अगले महीने ना ऐसे बाजू महीने वाले तो ते पेंदे काड़े बिल्कुल
0: हाँ जी हाँ जी
1: बिल्कुल
0: काले महीने पहले या 10 साल पहले

0: किया घाव वरना
1: जी
0: ऐसा टाइम ऐसे क्लाइमेट होता है मजा ही बड़ा होंगे पर सुन दिन अज लाल बरसात लगू रही है त्रीया दिहाड़ा तू पास कीता नहीं
1: अच्छा
0: सावन का महीना सावन के महीने बस करने बारी ने बोल रहे थे
1: बिल्कुल चलिए जी
0: सो धारा और पानी आला तो रही उन्हें आका तो गा पल्ला है
1: बिल्कुल आका गा है
0: मैं सारे पानी के अंदर खेती छूड़िया
1: हाँ जी
0: छूड़ा भी अंदर
1: जी तबे मुझे ना में था कि धारा अंदर भी मनु बंदे बुल्ले तूने बरे है ना जी
0: अबे क्या करूं और भाई कि जेड़ा फालतू माल अतः सी आवारा छड़ी छोड़ रहे धारा जी
1: जी
0: तो कर का दिया दो ही डेरे हो रहे हैं ऊपर उपर क्या नाम से चटकर
1: जी
0: अक उपर तक ठंडे सो मरवाने से थी अक रकड़ा थी
1: अच्छा
0: धारा
1: अंदर रौनक भी ना रही है ना जी रही नहीं
0: रौनक
1: दिन प्रतिदिन मुकी चल रहा काम इनका
0: मुकी ना साहब और क्या नाम से लाके के आजकल दुकान में खुल भी
1: जी
0: सोई रौनक बाकी कोई रौनक कल पूरी जगह सो गोरू गोरू घर उस ना नहीं उस भर भी होंगे तो आदमी इंदा गंदा रहा क्रॉस कर रहा जोता
1: बधेरना
0: पैरा रस्ता होता अजकल का पत्ता लगेगा सिर धा नहीं गंदे बेचारे जरा दाना बना रहे
1: सोए बंदे वे बस चलिए ठीक है जी शांत रहा कोई गीत तो सुबह है जरूर होने ले शांत भारत वर्ष रहा
0: ठीक है धन्यवाद जी
1: ठीक है जी धन्यवाद
0: ओके
1: शतम कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा कैन सो बिल्कुल लाइव चल रही तुंदे वीडियो सेट में और इस कार्यक्रम मंच तो सब श्रोता जुड़ी सकते हैं जी क्या है दसो तुसु जुड़ने वास्ते कॉल करने पैने हैं जनाब 7088879 पर चलिए जी तो शांत रहे काना री मुरली गीत हूँ दिन फिलहाल इंदे अगले श्रोता सो की कनेक्टेड हैं नमस्ते जी हेलो हेलो नमस्कार जी वेड़ी गुंजर में स्वागत है तुंदा
2: नमस्कार सचिन भाई ठीक ठाक ने
1: बहुत बढ़िया जी तो है बल्ला
2: बढ़िया बिछैन हुआ
1: ना ना बिछैन दे एकदम की बिछा नहीं सकते सो भी इस सिचुएशन में इस लाइव रूम में तो बड़ा मुश्किल रहा सो बिछैनना
2: एरा नराने को बोलूंगा
1: हाँ जी नराने थो
2: नराने थो नराने थो
1: नराने थो इंदे रेगुलर श्रोतागण भी बहुत सारे लालू जी
2: हाँ जी हाँ जी
1: क्या बात है लालू जी तो बड़े सवाल न तुसु थो
2: जी बल्ला
1: जो जनता जानना चाहते है
2: बल्ला जी
1: चलिए लालू जी कजो किया है फेसबुक रे माध्यम तो भी लाइव इंदे तो तड़ी थो बया है थोड़ा करी कोशिश कर दे कि अपने श्रोता री गल कहने सो फेसबुक रे माध्यम तो बया है जरूर पहुंचान श्रोता तक लालू जी दारो तो है गंदे इंदे रहते हैं ना जी
2: हाँ जी हाँ जी
1: दर्द कराऊ गल इतनी है ता अबे भी गछूरे थी है लेटेस्ट गछूरे थी है तो है दारा मंच
2: बस दुत्ते पे गफे कोई गाना पुरा
1: दुत्ते पे गफे रे कोई गाना तो चलिए आगे इंदे शो तो थी जो तो है होने भी मुने शायद खने आ रहा था हूँ
2: हाँ लोरी तो मेरा गप चट करा खाने खोलने री
1: जी जी जी जी तो तू है ता धारा की है सो रोजाना अप डाउन रोजाना तो ना पर मतलब गंदे रहने 10-15 दिन बाद है ना महीने बाद 15 दिन बाद और बरसाले आई थिंक तू है ज्यादातर ऊपर ही बंदे ना
2: ज्यादातर बरसाले पर ही बंदे का

0: बंदे तो क्या है तुंदे जो नजरन सो के परखन दी ना बे कि पहले ही है हा अबे भी कि बड़ा चेन छूरा बड़ा उतार चढ़ाव बुझगो दार अंदर भी
1: ऐसा पहले दारा ने रौनक लगी रही बरसा लगना रौनक लगनी जगह
0: जी।
1: जगह मन उड़े ऐसा कर की भी दारा जगह खीतो ही दारा अंदर मन उन्होंने बाकी खाली प्योरी
0: अच्छा
1: दूगा प्रो फिर वैसा सो साहब जी पहले इंच कुछ होता है जुक्का जुक्का बजी भी
0: अच्छा
1: हाँ अगर सो जाए घा न रहे सो जाए मन रहे माई न रहे पुराने मन न रहे ना वे
0: मुट्टी गलते है
1: मुट्ठी गाले या बिना मार मारो गोरू पालो बिना कुछ पालो दे पहले पाल दा पाल दी है
0: बाल दे बाल देती है।
1: माच माच मचने या उड़ा उड़े चला जी दा रहा
0: चलो जी दा रहा हूँ।
1: अबे गाय पाल रही सो फीड डाली गाय पाल रही गाय में भूत है फीड से गाले पालो वैसे से बस कुछ ना दस दूध दा ताकत है ना कुछ
0: वैसे लालू जी धारा रही जिंदगी कदे कदे तो काफी रही रे धारा मंच।
1: तारा भी जिनकी से मुझे पता जैसे यहाँ पर ना कोई क्राइम भी नहीं तारा भाई ने प्रो तो
0: हाँ जी
1: साला जो पर श्री राव कट लगे दो पानी
0: अच्छा
1: चेंज होगा प्रो वाला पानी पीना उस
0: स्वच्छ पानी।
1: वातावरण का बस पानी तो
0: बिल्कुल फ्रेश
1: खुली
0: हवा।
1: हवा लेनी प्रो वाली
0: हाँ
1: है फिर जी थल इतनी सुंदर प्रो जी यहाँ मंजरी मुंजरी अंदर सुंदी है
0: हाँ जी
1: ना पिट्ठी पीड़ा बुनी अरे बड़ा पर सोने का कवर दे पिट्ठी पीड़ा सो पिट्ठी पीड़ा बुनी नहीं करते बोलो है ना पहले प्रो सुना तो थल्ले सुना
0: जी।
1: तो ऐसी चीजें नेचुरली चीजें ना जब मंजरी मुंजरी सुनते तो सो आगो बच्चों जी श्री का जो कसरत होती है अबे
0: जी
1: बेटा अगर सुन रहे करते हैं तो क्या कसरत होती है पीछे पीड़ा करानी
0: पिट्ठी पीर बनी तो
1: जी
0: दारामंज लालू जी मतलब सात बुंदा तो हुआ ना ताई तो दारामंज कोई ऐसी वैसी चीज ना खंदे थे है ना
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
0: सात बुंदा दारा अंदर। हाँ
1: हले भी नहीं था प्रो जोड़े कंजे वाला कंजे तो आना है
0: जी
1: जो तो हले भी छो उत्तर कई ये जगह ये अलग गाड़ी की सकते हैं कई ये जगह बोलते हैं कि ये हुआ तो गया ना वैसे प्रो गंजे गंजे तो
0: जी
1: अक्की जगह बोलते हैं खाना बनाना तो
0: जी
1: अक्की जगह खाना तो
0: जी
1: अक्की जगह भांडे मारने अक्की जगह बाथरूम वगैरह अक्की जगह ना कुछ तू ना कर सकते जोर है खिलाना ना हेड़ना मारनी देवी देवता थान ना प्रो जी एमपी जी
0: जी जी जी जी जी जी
1: ना छोटम जी अच्छी जो मैं पहले खा लेंगे बल्कि
0: अच्छा क्या बात है
1: कभी बार ना खाना जेड़ा ले लेना बल्कि क्या ले खाने सोए कभी बार ना ले सकते भाई
0: ना ले सकते।
1: ऐसे ऐसे ले जगह है ना प्रो तो दाना ना इंडिया को जा संजन देना चाहे
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आज संजन
0: कोई लालू जी प्राणा दनाड़ा मुड़ला ना तो सुखरा पुराना बोआ जो आज भी दाना सोगे बोआ
1: ए ना प्रो मेरा गंद है
0: तिन्यो ना इस कनारी ले तो तिन्यो ये रेड़ी गुंजन मत है जरूर लेंगे है
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ना
1: जरूर कर
0: लालू
1: लो
0: जी।
1: जरूर
0: रेड़ी
1: फोन कर
0: गुंजन
1: ला
0: तुहे जरूर बुना या मेरा नंबर तुसु ले आए पर्सनल है ना
1: हाँ जी हाँ जी हाँ
0: तो
1: जी
0: तुहे जरूर मुलाकात कराएं। लेकिन जो एट प्रेजेंट इस समय के ऐसो दारामंज बुआ सोवेन
1: हाँ इन्हें
0: लपाल।
1: की पढ़ाई पे बुजुर्ग ना ले रहते हाँ
0: हाँ बस तीन तीन
1: जी
0: ठीक है लालू जी कौन दिन की थोड़ा पसंद कर ले। हाँ
1: गाना हना या कोई सो सिरा हे तो मेरे यहाँ लोड़ा लोड़ा पांगी यारे देसा
0: खेलंगा रे बस की पांगी रे
1: हाँ
0: दिसा।
1: केलंगा रे बस लोड़ा रे बस सोएगा हाँ
0: हाँ
1: जी हाँ जी
0: खेलंगा रे वासा हो है ना जी। ओ मेरे ठीक है
1: हे
0: लालू
1: तो
0: जी
1: मेरे यहाँ लोड़ा लोड़ा जोगी यारे बस आओ
0: ठीक है लालू जी जरूर तुसु एक गीत होने ले है।
1: ठीक है सचिन भाजी धन्यवाद ठीक
0: ओके लालू जी धन्यवाद और तुम द कॉल रे इंतजार जरूर रहना मुझे।
1: है धन्यवाद
0: नमस्ते जी। श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो ऐसा भी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा हूँ कर देना आरजे सचिन कपूर सो गिन अगले श्रोता आसूगी कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी
1: नमस्ते जी नमस्ते
0: नमस्ते जी नमस्ते।
1: और
0: कौन बोल रहे ना
1: खरे
0: फिर।
1: ना
0: हाँ जी आए खरे जी तो बोले तो ठीक ना।
1: ठीक
0: अच्छा कौन बोल रहे ना और कड़ी थो बोल रहे जी। सुदेटा थो आमी चंद जी थोड़ा कर रेडियो सेटरी आवाज़ धीमी करी दिया सुई डबल होने होंगे सब भी होने कर दे होने।
1: हाँ हाँ हाँ जी हाँ जी।
0: और अमीचंद जी, नई ताजी सब ठीक ठाक?
2: ठीक
0: अच्छा, करे लुगरेन अमीचंद जी, क्या कर दिन तो है?
2: अरे दुकानदारी कर रही, माड़ी मोटी क्या है, दुकान करूंगा टाइम कट्टे चले जाने।
0: अच्छा
2: हाँ जी, हाँ जी,
0: कितने साल लगे हम कर कर दें दुकानदारी?
2: दुकानदारी तो मते साल ही आई।
0: अच्छा, चा पानी
2: अब तो अभी है। हाँ चा पानी रखा मैं,
0: चा पानी की दुकान। अच्छा,
2: हाँ जी,
0: तो स्टार्टिंग थों तो है दुकानदारी अंदर भी, उरे दुकानदारी करूं देन की कुछ और कर
2: पहले
0: देती है?
2: पहले जिम्मेदारी कर दे ये अपने दुकानदारी ना,
0: अच्छा, तो जिम्मेदारी छड़ी तो रहा।
2: जिम्मेदारी चल देना वे तो जरा सियान चल चुका ना।
0: अच्छा,
2: हाँ
0: सियांस
2: जी,
0: चल चूरा जिंदगी में है ना।
2: क्या करना था, क्या करना।
0: चलिए, तो अबे इस जिंदगी रह सत्य है ना,
2: हाँ ये तो, हाँ ये तो ही ना, एक दिन तो ही ना, ही ना,
0: आख देना सो भी ना। है
2: बिल्कुल बिल्कुल।
0: ना, तो कदे
2: और
0: एक्सपीरियंस रही हो जिंदगी रतन दा क्या?
2: चलो ठीक, चल रहा गड्ढा जी, चल ही रहा गाँव में।
0: कुछ एक एक्सपीरियंस अपने शेयर कर दिया जी, तो बोलो कि बहुत सियांस चल छूरा जिंदगी रे एक्सपीरियंस है, कुछ एक चीज़ा जो असु यूथ वास्ते जो इंदे गद्दे भाईचारा हुणु कर देन, गद्दे मनो हुणु कर देन, इंदे जो यंगस्टर
2: जी
0: हुणु कर देन खास कर, क्या है जिंदगी वे तजुर्बा बनता तुंदा?
2: वही ईमानदारी, हम मेहनत करना तो है बंदा का कामयाबी और क्या है, ये वो चंदा।
0: बिल्कुल बिल्कुल है ना जी।
2: हाँ ना, अपनी मेहनत करना है, अगर सुनाया उल्टे अगर कमाई ना पिया ना गई ना सारे कुछ पिक्चर पे एकदम बैठे बच्ची होता सुना रहे आना दीना दी बहन तो नए जनरेशन नहीं हो
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए,
2: तो
0: हाँ जी, हाँ जी, आज ना धारा री गल लग रही है, तो इन्हें बहुत सारे
2: हाँ
0: श्रोता खनियारा थो, नरवाने थो, अबे तो स्टेडा थो
2: जी, हाँ
0: ना,
2: जी,
0: तो तू है भी कुछ
2: हाँ
0: उरे
2: जी,
0: कदी धारा मन जी, धारा री जिंदगी तो है भी व्यतीत कर रही है जी, उरे कदे कदे बंदे आ।
2: ऐसे भी कर रहे थोड़े ज्यादा क्या ये है वो है ना। रात
0: अच्छा, तो कदे लगो तू धारा मन तुसु?
2: कहते कर गंदे ये तो माला लेकर गंदे ये तो वैसा ही है ना, एक जहाँ तो शांत जिंदगी हमें तड़ी की जा रही है अपने, ये है ना वे जरा कर रहा हूँ बेला हुआ सो है कि संदर्भ तो जो खाना था नहीं कि इंदा था कमाई काम
0: अच्छा,
2: तब होना इन काम में जब जो कमाई बता के चली गई दिए अब जो स्माल ना दी का चलता रहा किसी भी कैसे मामला लेकर। हाँ जी,
0: चलिए ठीक है जी। जनाब कुंडल गीत थोड़ा पसंद कर ले? अच्छा,
2: ये तो होना बट मामूंगा होना ये ला
0: बट बामुनु,
2: होना है
0: बट बामुनु आ,
2: गौरव ने का सुनील राणे से कोई गौरव नहीं आया।
0: अच्छा ठीक है जी। हाँ
2: हाँ
0: जरूर, होने लगे तो सुएगी इतना जी।
2: ठीक है जी, धन्यवाद।
0: धन्यवाद जनाब, धन्यवाद। चलिए श्रोतम, बनी रही तू सब रेडी गुंजन धर्मशाला सुगी, और आइए लेकर चल दे तू श्रोताओं कजू की फरमाइश बहुत सारी हिन फरमाइश दौर बहुत ज़्यादा हा कर दिन फरमाइश दौर पूरा बनी रहे तू सब आरजे सचिन कपूर सो की गूंज अपने पन

ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਤਾਉਮਰਾ ਜੋ ਰੋਗ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਠੀਕ ਨੇ ਜੋ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਨੇ ਉਮਰਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਸਲੀ ਰੋਗ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਤਾਉਣ ਜੋ ਟਾਂਡੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖ ਦੱਸੀਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜੋਨਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੱਸਦਾ, ਜੋ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਰੋਗ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਤਾਉਣ, ਔਰ ਸੋ ਰੋਗ ਕੀ ਆ ਸੋ ਕੱਸੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਰੋਗ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਆ ਸ਼ਤਾਉਣ, ਸੋ अर्श इंसान की सो फर्शा मंच किया सो पुजे गंदा हा इन्या रोगा पिछो बलते ना कि लूणा होगी कि सो फुलका खूरा खराब हुंदा शो तो, लेकिन हॉस्पिटल रे चक्कर कटरे और हॉस्पिटल रे दुख बीमारी कोई बीमारी प्योरी किया सो बहुत बुरे बंदे, बहुत ज़्यादा बुरे बंदे। सो हमेशा अपने शरीर का ध्यान रखा बहुत अहम है, और हमेशा की सो अपने रा ध्यान रखा शो तो खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, जिंदगी ताई बेहतर लगती और अच्छी लगती जहने तो है अपने आप जो किया सो खुश रख देने, अपने आप जो किया सो मुकम्मल रख देन हंसने वास्ते हमेशा है ना। और हम हमेशा बोलना हूँ कि हंसने तो मोटे एक्सरसाइज किया सो कोई भी नहीं, सो हमेशा हंसो करा। आइए फिलहाल कार्यक्रम जो आगे बढ़ देन और अगली फरमाइश किया सो पूरी कर दें शो तो।

चलिए श्रोताओं, बहुत अच्छा लगो, बहुत आनंद भी आज, और कार्यक्रम मंच बहुत सारी चीज़ आज है जो बिछड़ू कर दी थी, सो चीज़ा है आज इन्हेंस करने की कोशिश करी है इन श्रोतों, है ना जी। तो फिलहाल आऊँ सचिन कपूर ले लें गजुके अभी वुचिका की सो खड़ेगी श्रोतों, लैपटॉप लेकर गजुके है हुनाना अभी बुलेटिन पाँच तो पाँच दस तक कुछ एक खास जानकारी लेकर वुचिका की सो कुछ ही देर में तुम्हारे बीच में उपस्थित भूना लगे हा। फिलहाल आऊँ सचिन कपूर ले लो इजाजत, हंसते रहे मुस्कुरेंदे रहे और इस लास्ट गीता जो इंजॉय करते रहे।

नमस्कार 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। जूनियर इंजीनियरों को मिलेगा 1000 मासिक WAMIS भत्ता। परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए पीएम मोदी ने बनाई हाई पावर टास्क फोर्स। प्रभावितों को मकान के लिए देंगे 7.5 लाख। प्रदेश के 7000 गांव को मिलेगा वैज्ञानिक स्वच्छता प्रबंधन का लाभ। प्रतिबंध अवधि में मछुआरों को सहारा देगी प्रदेश सरकार। अब समाचार विस्तार से।

हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बोह पंचायत का दौरा कर हाल ही में आपदा से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उनका कहना है कि संकट की इस घड़ी में प्रभावित परिवारों का मनोबल बनाए रखने और उन्हें हर संभव सहयोग उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने वोह की सड़क के लिए लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 1 करोड़ रुपए जारी करने के निर्देश भी दिए। मंत्री ने मौके पर मौजूद प्रशासनिक एवं विभागीय अधिकारियों को प्रभावित परिवारों की मांगों और त्वरित कार्रवाई करने तथा राहत एवं पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी पात्र परिवारों तक सरकारी सहायता समयबद्ध ढंग से पहुँचाई जाए और पुनर्वास कार्य में किसी प्रकार की कमी न रहने दी जाए। बागवानी विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार के वर्ष 2026 के लिए प्रोसेसिंग ग्रेड आम, सिट्रम फलों और सी ग्रेड सेब के खरीद के लिए मंडी मध्यस्थता योजना लागू करने की मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के फल उत्पादकों को उनकी उपज का उचित मूल्य और बाजार उपलब्ध करवाना है। हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम के माध्यम से फलों की खरीद की जाएगी। इसके अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार सेब की खरीद में हिमफेड का भी सहयोग लिया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि पंजीकृत किसान ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए एचपीएमसी एमआईएस पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य रहेगा। किसान निर्धारित गुणवत्ता वाले फलों को ही अधिसूचित खरीद केंद्रों पर ला सकते हैं। योजना के नियमों के अनुसार किसानों को खरीद के समय वास्तविकरण और अन्य वजन की कमी की भरपाई के लिए कुल वजन का 2.5% अतिरिक्त फल भी देना होगा। प्रवक्ता ने सभी पात्र फल उत्पादकों से समय पर पंजीकरण करवाने और योजना का पूरा लाभ उठाने की अपील की है। अधिक जानकारी और पंजीकरण के लिए किसान अपने नजदीकी बागवानी कार्यालय या अधिसूचित खरीद केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग में फील्ड में कार्यरत जूनियर इंजीनियरों को राहत देते हुए उन्हें वर्क्स एंड अकाउंट्स मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम भत्ता देने का निर्णय लिया है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार फील्ड में तैनात प्रत्येक जूनियर इंजीनियर को 1,000 रुपए प्रतिमाह की दर से WMAIS भत्ता दिया जाएगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। निष्पक्ष, विश्वसनीय एवं पारदर्शी परीक्षा प्रणाली विकसित करना तथा विद्यार्थियों का विश्वास बहाल करना अब केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल दिखाई देती है। इसके लिए उन्होंने प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ और इंफोसिस के संस्थापक नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में हाई पावर टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की है। ये समिति राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की परीक्षा प्रणाली की व्यापक समीक्षा करेगी और विशेष रूप से तकनीक आधारित सुधारों का खाका तैयार करेगी। साथ ही ऐसी व्यवस्था विकसित करने की सिफारिश करेगी जिससे पेपर लीक व अन्य गड़बड़ियों का खतरा न्यूनतम हो सके। खुले में शौच मुक्त हिमाचल अब ग्रामीण स्वच्छता को स्थायी और वैज्ञानिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। प्रदेश सरकार ने अलग अलग फेकलेस ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की अपेक्षा मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उपयोग करने वाले को ट्रीटमेंट मॉडल अपनाया है। इस व्यवस्था से प्रदेश के 7,000 से अधिक गांवों को वैज्ञानिक स्वच्छता प्रबंधन का लाभ मिलेगा। इस मॉडल के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सेप्टिक टैंकों और गड्ढा शौचालयों से निकलने वाले फिकल स्लज का संग्रहण कर उसे पहले से संचालित एसटीपी में उपचारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले शाहपुर उपमंडल के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बोह में स्थापित राहत शिविर का निरीक्षण किया और वहां ठहराए प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। सीएम ने कहा जिन परिवारों की गाय या भैंस आपदा में मरी हैं उन्हें 55,000 रुपए प्रति पशु तथा जिनकी बकरियां मरी हैं उन्हें 15,000 रुपए प्रति बकरी सहायता राशि मिलेगी। जिन घरों में आपदा का पानी घुसने से नुकसान हुआ है उन्हें 1,00,000 रुपए की राहत प्रदान की जाएगी। क्षतिग्रस्त दुकानों के लिए नुकसान के आधार पर 50,000 से 1,00,000 रुपए तक दिए जाएंगे। फसलों के नुकसान पर किसानों को 5,000 प्रति कनाल के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। जिन परिवारों को अस्थायी रूप से किराए के मकान में रहना पड़ेगा उन्हें 5,000 प्रति माह वोह घाटी में पहुंचकर आपदा प्रभावित परिवारों का जाना हाल रिटकुमार पीएचसी को किया अपग्रेड किराया सरकार देगी। प्रभावित परिवारों को 6 माह का राशन भी निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर पिछले 13 दिन से लगातार जारी हमलों पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। लगभग 2 हफ्तों से हर रोज हो रहे हमलों का ये पहला विराम है। नए हमले का प्लान तैयार होने के बावजूद ट्रंप ने सेना को नए स्ट्राइक करने से मना कर दिया। अमेरिका का ध्यान अब बातचीत की ओर बढ़ रहा है। हालांकि जरूरत पड़ने पर अमेरिका ने सैन्य अभियान को फिर से शुरू करने की पूरी तैयारी कर रखी है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक ट्रंप ने कूटनीतिक कोशिशों को मौका देने, घटते मिसाइल रक्षा भंडार की चिंता और युद्ध ज्यादा बढ़ जाने के डर से ये फैसला लिया है। प्रदेश में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की अवधि के दौरान सरकार मछुआरों का सहारा बनेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट में इनके लिए विशेष योजना की घोषणा की थी, जिसे कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इस पर अब काम शुरू हो गया है। राज्य में मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के जलाशयों में मत्स्य पालन से जुड़े पात्र मछुआरों को वित्तीय सहायता ₹3500 एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

नए पुराने जहां हर धुन जगाए जज्बात, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी, और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये नए पुराने गीत हर शाम, हर दिन, हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को, जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। गीत सुहाने नए पुराने

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना होस्ट और दोस्त, आपका अपना वेडियो दोस्त सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी सुनने वालों का, सभी श्रोताओं का, रेडी गुंजन के जितने भी श्रोता हैं आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो श्रोताओं, जैसे कि आप जानते ही हैं कि समय धर्मशाला की बात करूं तो हाल ही में अभी बारिश जो है वो काफ़ी हो रही है श्रोताओं, एट प्रेजेंट काफ़ी बरसात जो है वो हो रही है धर्मशाला में, और अभी भी धीमी धीमी बारिश जो है वो हो रही है श्रोताओं। तो मौसम काफ़ी अच्छा है, ठंडा है, सुहाना है, बेहतरीन है श्रोताओं। और हम बात करें तो आज पूरा दिन तापमान जो है वो 19 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है वो रहा है श्रोताओं, है ना। आसमान में बादल जो हैं वो छाए हुए हैं, अभी भी हल्की बारिश की बौछारें जो हैं वो धर्मशाला में पड़ रही हैं श्रोताओं। नमी की बात की जाए, जिस हवा में नमी की बात करूं तो लगभग श्रोताओं 95% के आसपास जो है वो हवा में नमी है श्रोताओं। और अगर न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 17 डिग्री के आसपास जो है वो न्यूनतम तापमान रहने वाला है आज धर्मशाला का, आज की शाम का। शाम बहुत सुहानी है क्योंकि हम धर्मशाला में हैं और धर्मशाला अपने आप में ही बहुत कुछ कहानियाँ जो है वो बयां करता है। सबसे पहले तो मौसम की कहानी हमने अब तक पहुँचाई है श्रोताओं, और इसी के साथ ये तो आज की अभी की जो है वो मौसम की जानकारी है। अगली बात बताएं श्रोताओं, तो प्रदेश में कल से जो है वो 4 दिन ऑरेंज अलर्ट जो है वो बताया हुआ है। जी बिल्कुल, प्रदेश में मॉनसून जो है श्रोताओं एक बार फिर से सक्रिय होने जा रहा है। प्रदेश में 4 दिनों तक फिर से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया है मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार। अगर हम बात करें श्रोताओं, तो 28 से लेके यानी कि कल से लेके 31 जुलाई तक जो है वो प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश जो है उसका ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है श्रोताओं। विभाग के अनुसार जो है वो श्रोताओं बात की जाए तो अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होगी, और इसके बाद अब बिल्कुल श्रोताओं आप सभी से ये दौर जो है वो चलेगा, तो आप सभी से गुजारिश है कि नदी नालों के साइड जो है वो ना जाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, प्रशासन भी बार बार रेडियो के जरिए आप सुन रहे होंगे, RTV के जरिए जो है वो आप देख रहे होंगे, या फ़ोन के जरिए आप देख रहे होंगे कि बार बार प्रशासन जो है वो इस चीज़ की आप सभी से अपील करता है कि नदी नालों की साइड जो है वो ना जाएं श्रोताओं। जो भूस्खलन वाले एरिया हैं जिसको अंग्रेजी में लैंडस्लाइड कहा जाता है, उन एरियों की साइड जो है वो ना जाएं। मैं आपको आंकड़े साझा करूंगा कि भूस्खलन की वजह से जो है, लैंडस्लाइड की वजह से जो है वो कितने लोगों की जान चली गई है इस मॉनसून के दौरान, तो आप थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाएंगे। बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में मॉनसून सीज़न में कई क्षेत्रों में जो है वो जनजीवन अभी तक सामान्य नहीं हो पाया है श्रोताओं। 30 जून से 26 जुलाई के बीच प्रदेश में 15 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है श्रोताओं। 15 लोगों की मौत जो है वो इस मॉनसून के दौरान हुई है। बताना चाहूँगा श्रोताओं, इनमें से 14 लोगों की जान जो है वो भूस्खलन की घटनाओं में गई है। 14 लोग जो हैं वो मात्र भूस्खलन के कारण ही जो हैं वो मरे हैं श्रोताओं। भूस्खलन की घटनाओं में इनकी जानें जो हैं वो गई है श्रोताओं, जबकि एक व्यक्ति की मौत जो है वो फ्लैश फ्लड की चपेट में आने से हुई है। राहत की बात यह है कि इस अवधि में जो है वो क्लाउड बर्स्ट से किसी की मौत जो है वो नहीं दर्ज हुई है अभी तक, तो ये अच्छी बात है। और बारिश से श्रोताओं लगभग 135 सड़कें जो हैं वो बंद पड़ी हुई हैं, 45 ट्रांसफार्म जो हैं वो ठप पड़े हुए हैं। मॉनसून ने अब तक 15 लोगों की जान जो है वो ले ली है श्रोताओं, और 38 पेयजल योजनाएं जो हैं वो भी बंद पड़ी हुई हैं। तो ये तो थी अभी तक की मौसम की खास जानकारी जो हमने आप तक पहुंचाई, इस नाची सचिन कपूर ने आप तक पहुंचाई श्रोताओं। यूं ही बने रहेगा गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम को, यूं ही सुनते रहेगा। ये सफ़र 8 बजे तक आपके साथ रहेगा, और जाहिर सी बात है इतने प्यारे प्यारे श्रोता हैं, दर्शक हैं हमारे, फ़ोन के जरिए हमें देखते हैं, तो सफ़र बेहतरीन होने वाला है, सफ़र प्यारा होने वाला है, सफ़र लाजवाब होने वाला है। आइए लेके चलते हैं आप सभी को, आगाज करेंगे कार्यक्रम का बहुत प्यारे से गीत के साथ। बने रहेगा वेड़ी गुंजन की इसी गूंज के साथ।

तो FM बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। तो श्रोतों, बहुत प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना। आगाज किया है हमने चने के खेत में गीत के साथ और अनजान मूवी से लिया गया ये गीत है श्रोतों, और पूर्णिमा की आवाज़ में आपने बेहतरीन आवाज़ में ये गीत सुना। तो मैं सचिन कपूर हूँ, बहुत सारी जानकारियाँ जो है वो आप तक हमने साझा करनी है, आप तक हमने शेयर करनी है श्रोतों। चलिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा टॉपिक रहता है, तो उस टॉपिक की ओर जो है वो भी बढ़ते हैं। बहुत सारे श्रोता जो है वो कार्यक्रम को सुनते हैं और बिल्कुल श्रोतों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं जो, और चलिए आज के टॉपिक की ओर जो है वो ज़रूर बढ़ते हैं। हम सभी छात्र शक्ति और सत्ता का समर्पण, ये आज का हमारा टॉपिक है श्रोतों। जब जब देश का युवा सड़कों पर उतरा है तब तब सत्ता के सिंहासन डोले हैं। हाल ही में जंतर मंतर पर छात्रों के उग्र आंदोलन के आगे सरकार को जो है वो नतमस्तक होना पड़ा है श्रोतों, जैसे कि हम सभी भली भांति जानते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के 47 अधिकारियों की छुट्टी, ये बात इस बात का सबूत है कि छात्र शक्ति के आगे कोई भी तंत्र ज़्यादा देर तक जो है वो टिक नहीं सकता। लेकिन क्या ये लगता है श्रोतों आपको कि पहली बार हुआ है? नहीं जी, ऐतिहासिक। क्या लगता है आपको, ये पहली बार हुआ है, ये ऐतिहासिक है? नहीं, भारत के इतिहास के पन्ने इस बात के गवाह हैं श्रोतों। जब जब छात्रों पर लाठियां बरसी हैं तब तब जब जब आंसू गैस के गोले दागे गए हैं तब तब आंदोलन और तीव्र हुआ है। आइए चलते हैं आज़ाद भारत के उन अध्यायों में जहां छात्रों ने सत्ता का अहंकार जो है वो तोड़ा है श्रोतों। 1950 के दशक की मैं बात करना चाहूँगा, लखनऊ और इलाहाबाद से उठी चिंगारी। जी बिल्कुल, 1953 और 1955 की पुरानी अखबारों की आप अगर न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ब्लैक एंड वाइट दृश्य आप देखेंगे श्रोताओं, तो कहानी शुरू होती है यहाँ से। आज़ादी के ठीक बाद नवंबर 1953 लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने अपनी मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया। देखते ही देखते इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र भी समर्थन में उतर गए श्रोतों। विरोध का तरीका जो है वो अनोखा था। कानपुर और लखनऊ में जो है वो श्रोतों बरसी लाठियाँ। 3 नवंबर 1953 की अखबार की सुर्खियां बताती हैं कि किस तरह छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, लेकिन गुस्सा इस कदर था कि 10-10 साल के बच्चे तक ने कांग्रेस नेताओं का जो है वो विरोध किया। तत्कालीन उद्योग मंत्री हुकम सिंह के सामने प्रदर्शन हुए, गांधी टोपियां और झंडे जलाए गए, करोड़ों रुपये का नुकसान जो है वो हुआ श्रोतों। कार्यक्रम को आगे हम ज़रूर बढ़ाएंगे श्रोतों और ये पूरी जानकारियाँ भी जो हैं वो आप तक हम ज़रूर बतलाएंगे। आइए लेके चलते हैं कुछ और अन्य, ये तो हमारा आज का टॉपिक है, अन्य जानकारियों के साथ आपको रूबरू जो है वो बिल्कुल करवाते हैं श्रोतों। लेके चलते हैं इस खास जानकारी की, और आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला आपके अपने रेडियो सेट पर, रेडियो गुंजन धर्मशाला में। आइए तो लेके चलते हैं श्रोताओं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर आप जाना चाहेंगे? बिल्कुल, गीत की ओर भी आपको ज़रूर लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले श्रोतों कुछ एक खास जानकारी आप तक साझा करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला शाहपुर उपमंडल के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बो में स्थापित राहत शिविर का निरीक्षण किया और वहां
ठहराए प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। श्रोताओं, सीएम ने कहा कि जिन परिवारों की गाय या भैंस आपदा में मर गई हैं उन्हें 55,000 रुपया प्रति पशु तथा जिनकी बकरियां मरी हैं उन्हें 15,000 रुपया प्रति बकरी जो है वो सहायता राशि मिलेगी। जिन घरों में आपदा का पानी घुसने से नुकसान हुआ है उन्हें 1,00,000 रुपये की राहत प्रदान की जाएगी। क्षतिग्रस्त दुकानों के लिए जो है श्रोताओं उसके लिए भी मुआवजा है। जी बिल्कुल, क्षतिग्रस्त दुकानों के लिए नुकसान के आधार पर 50,000 से 1,00,000 रुपये तक दिए जाएंगे। श्रोताओं, फसलों के नुकसान पर किसानों को 5,000 प्रति कनाल के हिसाब से मुआवजा जो है वो दिया जाएगा। जिन परिवारों को अस्थायी रूप से किराए के मकान में रहना पड़ेगा उन्हें 5,000 रुपया प्रति माह वो घाटी में पहुंचकर 5,000 रुपया प्रति माह जो है वो मिलेगा। श्रोताओं, अब वो घाटी में पहुंचकर आपदा प्रभावित परिवारों का हाल जो है वो जाना। श्रोताओं, वीरकुमार पीएचसी को किया अपग्रेड, किराए सरकार देगी। श्रोताओं, प्रभावित परिवारों को 6 महीने का राशन भी निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। ये बोल हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के। आइए कार्यक्रम में जानकारियों का पिटारा यूं ही चलता रहेगा, बने रहेगा, जुड़े रहेगा आरजे सचिन कपूर के साथ। गूंज अपने मन की और गूंज आप सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं की। लेकिन चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

शोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन की गूंज के साथ आप सभी बने हुए हैं। शोतो जी ना लगे तुम्हारे बिना तो मैं क्या करूं। चलिए मैं क्या करूं, हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए जी तो लगाना पड़ेगा, जी लगेगा तभी तो काम चलेगा शोतो, है ना। तो बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना शोतो, जी ना लगे तुम्हारे बिना। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, और कुछ एक और जानकारी, क्योंकि आजकल बरसात है, सभी जानकारियां जो है वो हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं श्रोताओं। लाहौल में बादल फटने से तबाही श्रोताओं, बिल्कुल आप सभी जानते हैं। प्रदेश के जनजातीय ज़िला लाहौल स्पीति के मियान घाटी के करपट धुंधल नाले में जो है वो श्रोतों रात को बादल फटने से आए तेज बहाव के कारण जो है वो एक बार फिर से अस्थायी पुल बह गया श्रोतों। आपदा के कहर से लोक निर्माण विभाग को लाखों रुपए का नुकसान जो है वो हुआ है। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने जो है वो तीव्रता कार्रवाई करते हुए जो है वो सड़कों को बहाल कर दिया है। किसी भी आपदा स्थिति से निपटने के लिए विभाग की मशीनरी मौके पर लगातार तैनात है, पूरे हिमाचल में इवन की, तथा लोगों की आवाजाही के लिए एक झूला भी स्थापित जो है वो किया गया है श्रोतों। और इसी के साथ जो है वो लोक निर्माण विभाग ने मौके पर तैनात की मशीनरी, लोगों की कहीं ना कहीं दिक्कतें तो बढ़ी होंगी श्रोतों, है ना। दिक्कतें जो है वो बढ़ती है श्रोतों। देखिए बारिश के कारण अगर 135 सड़कें बंद है तो कितनी दिक्कत होगी उन लोगों को जिनके घरों को ये 135 सड़कें जो है वो कनेक्ट करती है, है ना जी। कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, पिटारा यूं ही खुलता रहेगा श्रोतों। लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर।

श्रोता एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये वेणी गुंजन है। और आइए जी, कार्यक्रम में जानकारियों का पिटारा यूं ही खुलता रहेगा श्रोताओं, और गीत संगीत का पिटारा भी यूं ही खुलता रहेगा। आइए लेके चलते हैं कुछ एक खास जानकारियों की ओर आप सभी को। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग में फील्ड में कार्यरत जूनियर इंजीनियरों जेई को राहत देते हुए उन्हें वर्क्स एंड अकाउंट्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम WAMIS भत्ता देने का निर्णय जो है वो लिया है श्रोताओं। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार फील्ड में तैनात प्रत्येक जूनियर इंजीनियर को ₹1,000 प्रतिमाह की दर से जो है वो भत्ता दिया जाएगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से जो है वो लागू हो गए हैं श्रोताओं। इसी के साथ आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी का पिटारा भी साथ ही साथ खोल देते हैं श्रोताओं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर पिछले 13 दिनों से लगातार जारी हमलों पर फिलहाल ब्रेक लगा दी है। जी बिल्कुल, लगभग 2 हफ्ते से हर रोज हो रहे हमलों का ये पहला विराम है श्रोताओं। नए हमले का प्लान तैयार होने के बावजूद ट्रंप ने सेना को नए स्ट्राइक करने से जो है वो मना कर दिया है श्रोताओं। अमेरिका का ध्यान अब बातचीत की ओर जो है वो बढ़ रहा है। हालांकि ज़रूरत पड़ने पर अमेरिका ने सैन्य अभियान को फिर से शुरू करने की पूरी तैयारी कर रखी है। अमेरिका मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हम बात करें श्रोताओं, तो ट्रंप ने कूटनीतिक कोशिशों को मौका देने, घटित मिसाइल रक्षा भंडार की चिंता और युद्ध ज़्यादा बढ़ जाने के डर से ये फैसला जो है वो लिया है। तो बिल्कुल, कहा जाता है ना कि अहंकार जो है वो बड़े बड़ों को जो है वो श्रोताओं मिट्टी में मिला देता है। अहंकार जो है वो बहुत कुछ करवा देता है, नष्ट कर देता है। 100 बातों की एक बात कि अहंकार जो है वो नष्ट कर देता है। एग्जांपल हमारे पास ईरान और अमेरिका के युद्ध को लेकर है, क्योंकि अमेरिका अपने आप में ही बहुत विकासशील देश है, बहुत शक्तिशाली देश है ना। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो खुद ट्रंप ने युद्ध में जो है वो विराम किया है श्रोताओं। तो इसी तरह बने रहेगा वेणी गुंजन धर्मशाला के साथ। खास जानकारियां आरजे सचिन कपूर आपके साथ यूं ही मैं करता रहेगा, यूं ही साझा करता रहेगा। लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को अब इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा वेणी गुंजन की सी गूंज के साथ, क्योंकि ये मोहब्बत जो है वो आपको भी ज़रूर हुई होगी श्रोताओं। पहली बार तो मोहब्बत ज़रूर हुई होगी, हर किसी को होती है, मुझे भी हुई थी, आपको भी हुई होगी। तो चलिए इसी बीच में जो है ये प्यारा सा गीत जो है वो ज़रूर सुन लेते हैं श्रोताओं, क्योंकि मोहब्बत तो ज़रूर हुई है हमें।

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेडी गुंजन धर्मशाला आपने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेडी जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का, हार्दिक अभिनंदन है। आइए जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और ये खास जानकारियां जो हैं वो आप सभी वेडी गुंजन पर सुन रहे हैं और इस नाचीज सचिन कपूर को सुन रहे हैं जानकारियों के माध्यम से भी और इस गुड इवनिंग कार्यक्रम के माध्यम से भी। आइए तो लेके चलते हैं श्रोताओं आप सभी को अगली कुछ एक खास और जानकारियों की ओर। प्रदेश में श्रोताओं मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की अवधि के दौरान जो है वो सरकार मछुआरों का सहारा बनेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट में इनके लिए विशेष योजना की घोषणा जो है वो की थी श्रोताओं, जिसे कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इस पर अब काम शुरू जो है श्रोताओं वो हो गया है। राज्य में मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के जलाशयों में जो है वो पालन से जुड़े पात्र मछुआरों को वित्तीय सहायता 3500 रुपये एवं सामाजिक सुरक्षा जो है वो प्रदान की जाएगी। ये जानकारी है श्रोताओं। आइए इसके अलावा एक और जानकारी जो है वो आप तक साझा करते हैं। एक अगस्त से जो है श्रोताओं वो हाउस टैक्स का काम डाउन जो है वो शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, ये पूरी जानकारी पहुंचाते हैं। नगर निगम धर्मशाला में वर्ष 2015-16 में शामिल की गई 7 पंचायतों के लोगों को अब जो है वो मार्च 2020 से हाउस टैक्स का भुगतान जो है वो करना होगा। जी बिल्कुल श्रोताओं, नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि 1 अगस्त से मर्ज एरिया के भवन में मालिकों से 5 वर्ष से अधिक समय का बकाया जो है वो हाउस टैक्स वसूला जाएगा। इसके लिए निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे का 90% कार्य जो है वो पूरा कर लिया है, जबकि शेष 10% लोगों से अपनी संपत्ति का विवरण स्वयं उपलब्ध कराने को कहा गया है। नगर निगम आयुक्त जफर अकबाल ने बताया है कि 1 अगस्त से शहरवासी ऑनलाइन माध्यम से भी जो है वो हाउस टैक्स जमा करा सकेंगे। मर्ज एरिया को यूनिट एरिया मेथड के तहत बी जोन में जो है वो रखा गया है, जिससे वहाँ के लोगों पर जो है वो अपेक्षाकृत कम टैक्स जो है वो लागू होगा। श्रोताओं उन्होंने कहा है कि नगर निगम जल्द ही हाउस टैक्स, यूज़र चार्ज, किराया और अन्य भुगतानों की वसूली के लिए विशेष अभियान जो है वो शुरू करेगा। समय पर भुगतान ना करने वालों पर जो है वो जुर्माना भी लगाया जाएगा। आयुक्त ने बताया कि नगर निगम ने पिछले 2 वर्षों में अपने व्हाट्सएप में 3 करोड़ रुपये की वृद्धि जो है वो की है। श्रोताओं तो इसी प्रकार से कुछ खास जानकारियां जो हैं वो आप तक यूं ही पहुंचती रहेंगी। श्रोताओं खास जानकारियां यूं ही चलती रहेंगी। आप सभी बने हुए हैं इस समय वेडी गुंजन की गूंज के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ। आइए जी लेके चलते हैं आप सभी को, क्योंकि सावन का मौसम है और सावन के मौसम में कहते हैं ना झूला झूलना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आजकल कौन झूलता है। आजकल हम वो पुरानी बातें, वो पुराने रीति रिवाज जो हैं वो भूल चुके हैं श्रोताओं। अब मुझे लगता है हम डिजिटल इंडिया तो ज़रूर हैं, लेकिन ये जो पुरानी हमारी बातें थी ना, ये जो पुरानी हमारे रीति रिवाज थे ना, इनको कायम रखना बहुत ज़रूरी है। इसी बीच में ये प्यारा सा गीत ज़रूर सुनते हैं वेडी गुंजन धर्मशाला में।
1: सावन के

बिल्कुल श्रोतों, सागर के झूलों में जब भी झूलाया मैं, परदेसी घर वापस जो है वो ज़रूर आया। FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने जो है वो ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं RJ सचिन कपूर के साथ। बिल्कुल कुछ एक खास जानकारियां जो है वो हम आप तक बिल्कुल पहुंचा रहे हैं श्रोतों, और इसी के साथ साथ श्रोतों आइए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से बिल्कुल जो हमारा आज का टॉपिक है उस टॉपिक की ओर श्रोतों। तो हम पहुंचे थे तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद पंत ने विधानसभा में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि हिंसा करने वालों पर रियायत नहीं होगी, लेकिन जब पूरा विपक्ष छात्रों के समर्थन में आया तो पंडित पंत की सरकार को पीछे हटना पड़ा। इसके ठीक दो साल बाद 1955 में जो है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का आंदोलन 12 दिनों तक चला। आखिरकार तत्कालीन राज्यपाल के एम मुंशी के हस्तक्षेप के बाद जो है वो छात्रों को उनका हक मिला, और मतलब सिग्नेचर के बाद छात्रों को उनका हक मिला और आंदोलन समाप्त हुआ श्रोतों। 1960 की मैं बात करूं श्रोतों, 1960 से 1970 का दौर की अगर मैं बात करूं तो कोलकाता राजभाषा में कोटा राजभाषा और कोटा का संग्राम 1960 कोलकाता की तस्वीरें, 1965 दक्षिण भारत के भाषा विरोध आंदोलन, 1972 राजस्थान कोटा की पुरानी तस्वीरें, 50 के दशक की जीत ने छात्रों को अपनी ताकत का एहसास करा दिया था। 1950 और 60 के दशक में देश में अलग अलग हिस्सों में छात्र असंतोष की लहर फैल गई थी श्रोतों। कोलकाता में खाद्य संकट और छात्र अधिकारों को लेकर आंदोलन हुआ, पुलिस ने लाठियां चलाई, आंसू गैस छोड़ी और गोलियां तक चलाई, लेकिन छात्रों का जज्बा कम नहीं हुआ। 1965 की बात की जाए तो राजभाषा विरोध, 1965 में राजभाषा कानून को लेकर हिंदी और गैर हिंदी राज्यों के छात्र आमने सामने आए और सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे, जिस तरह से जंतर मंतर के छात्र उतरे थे श्रोतों। भारी पुलिस फायरिंग के बावजूद छात्रों ने अपना विरोध जो है वो दर्ज किया। 1972 की मैं बात करूं तो राजस्थान कोटा की मैं बात कर रहा हूं, 1972 में राजस्थान के कोटा में, कोटा से जो है श्रोतों वो बिच्छी आंदोलन शुरू हुआ। एक स्थानीय मुद्दे से शुरू हुआ ये आंदोलन पूरे राजस्थान में फैल गया और आखिरकार राज्य सरकार को झुकना पड़ा। अध्याय 3 की मैं बात करता हूँ, 1974 से 77 का संपूर्ण क्रांति और शार्प पावर का पवार का दौरा श्रोतों। जी बिल्कुल, जयप्रकाश नारायण JP के साथ हजारों छात्रों की भीड़, 1974 बिहार आंदोलन, शरद पवार की पुरानी तस्वीरें, लेकिन भारतीय राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला सबसे बड़ा छात्र आंदोलन 1974 में बिहार से शुरू हुआ। बिहार के छात्रों ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ा। इस आंदोलन की जो है श्रोताओं वो इस आंदोलन की भागदौड़ लोकनायक जयप्रकाश नारायण JP ने संभाली, भागदौड़ जो है वो जयप्रकाश नारायण JP ने संभाली। ये केवल छात्रों का आंदोलन नहीं रहा, ये संपूर्ण क्रांति बन गया श्रोताओं। 1974 से 1977 तक चले इस आंदोलन ने केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार की नींव हिला दी और अंततः 1977 में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी श्रोताओं। इसी दौर में 1978 में महाराष्ट्र में भी छात्रों का उग्र प्रदर्शन हुआ। आंदोलन इतना बड़ा था कि तत्कालीन युवा

0: मुख्यमंत्री शरद पवार को खुद पुलिस तंत्र से अलग हटकर सीधे छात्रों के बीच जाना पड़ा और बातचीत करके आंदोलन को शांत कराया। कंक्लूजन, इतिहास से वर्तमान तक की सीख। 1953 से लेकर 2026 तक के छात्र आंदोलन को एक फास्ट फैट मोनोटेज जंतर मंत्र के हिलाए दृश्य। 1953 में लखनऊ इलाहाबाद के छात्र हो 1974 में जेपी के साथ खड़े युवा हो या आज एनटीए और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर जंतर मंतर पर डटे छात्र, इतिहास इस बात का गवाह है कि सत्ता किसी की भी हो, जब जब शिक्षा, रोजगार और भविष्य से खिलवाड़ होगा तब तब छात्र सड़कों पर उतरेगा। और भी बहुत सारे इस टॉपिक को आगे ज़रूर बढ़ाएंगे श्रोतों। शाम के 7:01 हो चुकी है और अब वक्त हो गया है श्रोतों वेड़ी गुंजन धर्मशाला में समाचारों का।
1: निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है।
2: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। जब सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद फिर शुरू हुआ तो उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। श्री हरिवंश ने सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
3: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
2: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर तचंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इस याचिका में निचली अदालत के नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितम्बर को निर्धारित की है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सेंडर पालिश्चुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हुई थी। मंत्रालय ने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्य जहाजों पर ऐसे हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनके प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, ये अस्वीकार्य है और इनसे बचना चाहिए। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचू में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शानदार प्रदर्शन के लिए ईशा सिंह और मनु भाकर को बधाई दी है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को अपने आवास पर सम्मानित किया। खेल मंत्री ने उन्हें 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात दे करके उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए, वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी है।

0: साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: शोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं सचिन कपूर हूं, कुछ एक खास जानकारियां लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। शोतो एक बार फिर से अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। शोतो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली कुछ जानकारियों के साथ आप सभी को रूबरू करवाते हैं। शोतो अंतराल के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर से। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार को, यानी कि आज जो है वो, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बोह पंचायत का दौरा कर हाल ही में आपदा से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने प्रभावित परिवारों को जो है वो श्रोताओं उनका हाल चाल जाना, उनकी समस्याओं और मांगों को जो है वो गंभीरता से सुना तथा उन्हें विश्वास दिलाया कि प्रदेश सरकार इस कठिन समय में उनके साथ मजबूती से खड़ी है और हर असंभव सहायता जो है वो प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने राजा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन की ओर से सभी 16 प्रभावित परिवारों को जो है वो आर्थिक राहत सहायता भी प्रदान की। श्रोतों उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में प्रभावित परिवारों का मनोबल बनाए रखने और उन्हें हर संभव सहयोग उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बो की सड़क के लिए जो है वो लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 1 करोड़ रुपया जारी करने के निर्देश भी दिए। श्रोतों मंत्री ने मौके पर मौजूदा प्रशासनिक एवं विभागीय अधिकारियों को प्रभावित परिवारों की मांग पर तीव्रता कार्रवाई करने तथा राहत एवं पुनर्वास कार्य में तेजी लाने के निर्देश जो है वो दिए। उन्होंने कहा कि सभी पात्र परिवार तक सरकारी सहायता समयबद्ध ढंग से जो है वो पहुंचाई जाए और कार्य में किसी प्रकार की जो है वो कमी ना रहने दी जाए। जी बिल्कुल श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री साहब हो गए, चाहे वो हमारे लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी हो गए, बेशक केवल सिंह पठानिया जी हो गए, सभी जो सरकार में बैठे जितने भी हमारे लोग हैं वो सभी जो है श्रोतों बो घाटी में हम सभी बखूबी जानते हैं कि क्या कुछ नहीं हुआ, कुदरत का कहर जो है वो बो घाटी के लोगों पर पड़ा। श्रोतों तो क्या कुछ नहीं हुआ, वहाँ बहुत कुछ हुआ, लेकिन लोगों के आशियाना जो हैं वो तबाह हो गए श्रोतों, है ना। लेकिन फिर भी लोगों ने वहाँ हार नहीं मानी और सरकार इस कड़ी में जो है, इस मुसीबत में जो है वो सरकार बिल्कुल खड़ी है और सरकार के लोग जो हैं वो बिल्कुल बो घाटी के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस समय खड़े हैं। श्रोतों खास जानकारियाँ आरजे सचिन कपूर के साथ आप सभी सुन रहे हैं, यूं ही बने रहेगा, जुड़े रहेगा रेडियो गुंजन की गूंज के साथ। लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को, श्रोताओं इस प्यारे से गीत की ओर।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन की गूंज के साथ आप सभी बने हुए हैं और कार्यक्रम इस समय जो है वो गुड इवनिंग धर्मशाला चला हुआ है। आरजे सचिन कपूर के साथ ये जानकारियों का पिटारा जो है वो यूं ही खुलता रहेगा। श्रोताओं आइए लेके चलते हैं अगली जानकारी की ओर। बागवानी विभाग के प्रवक्ता ने आज बताया कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 के लिए जो है वो प्रोसेसिंग ग्रेड आम, स्ट्रेस फलो और सी ग्रेड सेब की खरीद के लिए जो है वो मंडी मध्य स्तर था योजना लागू करने को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के फल उत्पादकों को उनकी उपज और उचित मूल्य और बाजार उपलब्ध करवाना है। हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद एवं प्रसंस्करण निगम के माध्यम से फलों की खरीद की जाएगी। श्रोतों इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार सेब की खरीद में जो है वो हिमफेड का भी सहयोग लिया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि योजना के तहत प्रोसेसिंग ग्रेड सीडलिंग ग्रेफ्टेड और कच्चे अचारी किस्म के आम की खरीद 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 15 जुलाई 2026 से 31 अगस्त 2026 तक जो है वो की जाएगी। आम की खरीद और ढुलाई 20 किलोग्राम क्षमता के जो है वो श्रोतों रिसाइकल लेवल प्लास्टिक क्रेट में की जाएगी। श्रोतों किसान अपनी उपज किसी भी उपयुक्त पैकिंग में ले जा सकते हैं तथा इन क्रेटों की किसानों को वापसी कर इन क्रेटों को जो है वो किसानों को वापस कर दिया जाएगा। प्रदेश में आम की खरीद के लिए 72 संग्रहण केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। श्रोतों कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप सभी बने हुए हैं समय आरजे सचिन कपूर के साथ गूंज अपने बन की और गूंज प्यारे प्यारे श्रोताओं की, और इसी गूंज के साथ आप सभी को श्रोताओं यूं ही बनना है क्योंकि जानकारियों का सिलसिला जो है वो यूं ही चलता रहेगा, पिटारा श्रोताओं यूं ही खुलता रहेगा। और इसी के साथ साथ श्रोताओं मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ज़रूर आप सभी इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि सूखे नशे से जो है वो ज़रूर दूर रहे। श्रोताओं पहले हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो ये कहते थे कि बेटा शराब पी लेना लेकिन भांग से दूर रहना, लेकिन अब जो है वो ये कहा जाता है कि बेटा भांग पी लेना लेकिन चिट्टे से जो है वो दूर रहना, क्योंकि चिट्टा जो है वो किस तरह से हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहा है, किस तरह से जो है वो आप मान नहीं पाओगे श्रोताओं, और मेरे पास शब्द नहीं है कि इस चिट्टे ने जो है वो न जाने कितनी ही माताओं को अपने बेटों से अलग किया है, कितनी ही पत्नियों को अपने पति से अलग किया है, कितनी ही बेटियों को अपने बाप से अलग किया है। आंकड़ा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, शायद मैं बयां भी ना कर सकूं। इसलिए बस यही कहूंगा कि इन सूखे नशों से जो है वो ज़रूर दूर रहिए श्रोताओं। ये सूखे नशे जो हैं वो आपका घर बर्बाद करते हैं, आपको बर्बाद करते हैं, आपकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। इन सूखे नशों से भांग, चिट्टा, अफीम, चरस, गांजा, इनसे आप सभी बहुत दूर जो है वो ज़रूर रहिए। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहेगा, जुड़े रहेगा वीडियो गुंजन की सी गूंज के साथ।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और एक कार्यक्रम में गुड इवनिंग धर्मशाला जो है वो बिल्कुल लाइव आप सभी सुन रहे हैं अपने अपने वेडियो सेट पर। तो श्रोतो अब वक्त हो गया है 7:30 और अब वक्त हुआ है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में एक छोटे से अंतराल का।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात देकर के उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए, वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी।

0: साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठे हैं?
1: पता नहीं उसे टीबी है।
2: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
3: पता है ना मुझे टीबी है।
2: चल चल तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है। तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: Oh, no. देख लो कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
5: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही रहेगा लगता, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे इस घर में और रहते ही कौन है।
7: भारी मिस्टेक हो गया सर।
6: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।

शो तो FM बैंड एक शो तो FM बैंड 91.2 MHz पर वेरी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना RJ वेडियो जो कि सचिन कपूर। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और इस अंतराल के बाद श्रोतों लेके चलते हैं आप सभी को सीधा इस प्यारे से गीत की ओर।

0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं नाचीज सचिन कपूर आप सभी के वीडियो सेट पर हाजिर हूँ। तो आइए श्रोतो, 7:45 हो चुके हैं, अब वक्त हो चुका है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में प्रादेशिक समाचारों का।
1: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, मोदी सरकार ने संसद में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक किया पेश, सार्वजनिक परीक्षाओं में धांधली करने वालों पर कसेगा शिकंजा। सांसद हर्ष महाजन ने हिमाचल की राजनीतिक व आर्थिक परिस्थितियों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की चर्चा और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश इलाकों में वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी, कल से और रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सरकार की तरफ से दिए जा रहे आपदा राहत पैकेज में बढ़ोतरी की घोषणा की है। आज धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकान के निर्माण के लिए 7 लाख रुपए की बजाय 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा घर के बर्तन, फर्नीचर और बच्चों की किताबें खरीदने के लिए 1 लाख रुपए अतिरिक्त तो सहायता प्रदान की जाएगी। इस प्रकार प्रभावित परिवारों को कुल 8.5 लाख रुपए की सहायता मिलेगी।
2: मैंने मकान बनाने के लिए 7.5 लाख रुपया, घर के बर्तन, पलंग, बच्चों की किताबें खरीदने के लिए 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा 8.5 लाख रुपया दिया। जब से हमारी सरकार आई है 2023-24 में 23,000 घर या तो पूर्णतया नष्ट हो गए थे या आंशिक रूप से नष्ट हुए थे। तब से मैंने 7 लाख रुपया रखा था, तो 2 साल में महंगाई भी बढ़ी है, तो इसलिए 50,000 रुपया और बढ़ाया। हमारी सरकार सभी आपदा प्रभावित परिवारों के लिए खड़ी है।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार व पेपर लीक मामले पर श्वेत पत्र लाएगी और उसे जनता के सामने रखा जाएगा।
2: भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक श्वेत पत्र लाने जा रहे हैं, एक कमेटी का गठन करने जा रहे हैं, जो 3.5 साल में भारतीय जनता पार्टी के समय भ्रष्टाचार हुआ है, जो पेपर लीक हुआ है, वो सब हम जनता की अदालत में रखने जा रहे हैं।
1: इस बीच मुख्यमंत्री ने नगरोटा बगवा में आयोजित बाल मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नगरोटा बगवा में मॉडल पुलिस स्टेशन व पुलिस आवास, ओल्ड एज होम और ऑडिटोरियम की आधारशिला भी रखी। इस मौके पर स्थानीय विधायक व राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली भी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि आज संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन बिल लाकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में धांधली करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि इस संशोधन में पेपर लीक जैसे अपराधों के लिए 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, 2 महीने के भीतर जांच पूरी करने और 3 महीने के अंदर ट्रायल समाप्त करने का प्रावधान किया गया है, ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके। जयराम ठाकुर ने कहा कि इसके विपरीत हिमाचल में पेपर लीक मामलों में गंभीर आरोप सामने आने और जांच की संस्तुति होने के बावजूद सुक्खू सरकार ने दोषी अधिकारियों को पदोन्नति देकर महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कर्मचारी हितैषी होने का दावा करने वाली सुक्खू सरकार के समय में प्रदेश भर में कर्मचारी अपने अधिकारों को लेकर सड़कों पर संघर्षरत हैं। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने आज सोलन के कथेड़ में निर्माणाधीन अत्याधुनिक बहुदेशीय अस्पताल में स्थापित होने वाले आधुनिक चिकित्सा उपकरणों के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। उन्होंने अस्पताल में स्थापित की जाने वाली 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीन स्थापित करने के संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बाद में उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया और जन समस्याएं भी सुनी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज भटियात विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में भूस्खलन प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर संबंधित विभागों के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने भारी वर्षा के कारण बाधित सड़क मार्गों की तुरंत बहाली के लिए लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली की सराहना की। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की बोहो पंचायत का दौरा कर हाल ही में आपदा से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने प्रभावित परिवारों की समस्याओं और मांगों को गंभीरता से सुना और उन्हें सरकार की तरफ से हर संभव सहायता प्रदान करने का विश्वास दिलाया। विक्रमादित्य सिंह ने मौके पर मौजूद प्रशासनिक व विभागीय अधिकारियों को प्रभावित परिवारों की मांगों पर त्वरित कार्रवाई करने और राहत व पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। लोक निर्माण मंत्री ने बोह की सड़क के लिए विभाग के माध्यम से 1 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा की। विक्रमादित्य सिंह ने चंबी खड्ड पर क्षतिग्रस्त पुल की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों से पुनर्निर्माण की प्रगति व प्रस्तावित कार्य योजना की जानकारी ली। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने नई दिल्ली संसद भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक व प्रशासनिक परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा की। हर्ष महाजन ने प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न हालात, वित्तीय कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार, विकास कार्यों में आई रुकावट और आपदा प्रबंधन की स्थिति से केंद्रीय गृह मंत्री को विस्तार से अवगत कराया। हर्ष महाजन ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से वित्तीय अनुशासन पूरी तरह समाप्त हो गया है और सरकार ने बिना किसी दूरदृष्टि के प्रदेश को भारी कर्ज के बोझ तले धकेल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को उदारता पूर्वक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई, लेकिन राज्य सरकार उस राशि का उपयोग पारदर्शी तरीके से करने में असफल रही। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने आज हमीरपुर बाईपास के समीप प्राचीन बावड़ी व टियाला के सौंदर्यीकरण और नाले की चैनलाइजेशन का लोकार्पण किया। बाद में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि करीब 12 लाख रुपए की लागत से करवाए गए इन कार्यों से स्थानीय लोगों को काफी सुविधा होगी। सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि आने वाले समय में बाईपास के आसपास एक सुंदर पार्क विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर को नगर निगम का दर्जा देने के साथ साथ कई बड़ी परियोजनाएं मंजूर की हैं। इस दौरान सुनील शर्मा बिट्टू ने लोगों को विभिन्न प्रजातियों के फलदार पौधे भी वितरित किए। प्रदेश में मॉनसून के सक्रिय रहने से राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकांश इलाकों में रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी है। वर्षा से प्रदेश में 108 सड़क मार्ग और 38 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। हालांकि इन सुविधाओं को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा के मुताबिक कल 28 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ेगा। उन्होंने बताया कि आज 2 जिलों सोलन व सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट, जबकि कल 28 जुलाई को बिलासपुर और सिरमौर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
3: आज 27 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में मॉनसून सक्रिय रहेगा और इसी दौरान लगभग पूरे प्रदेश में ही बारिश का दौर देखने को मिलेगा। ये जो रेनफॉल एक्टिविटी देखी कल 28 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक, इसमें इंटेंसिटी वाइज काफी सक्रिय रहेगा और इसके चलते हमारे कुछ एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हैवी रेनफॉल के साथ वेरी हैवी रेनफॉल भी हो सकती है। 28 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर और सिरमौर में ऑरेंज कैटेगरी का हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया है और 29 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया है और वेदर एक्टिविटी देखिए 30 और 31 जुलाई को काफी सक्रिय रहेगा।
1: मौसम विभाग ने भारी वर्षा के अलर्ट को देखते हुए लोगों से नदी नालों के किनारे न जाने की अपील की है। हिमाचल के युवाओं और उद्योगों को स्वदेशी तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से शिमला सचिवालय में आत्मनिर्भर यात्रा क्षेत्रीय आउटरीच सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स, उद्योगों और शोधकर्ताओं ने भाग लिया। सम्मेलन का शुभारंभ पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव सुशील कुमार सिंगला ने किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य एमएसएमई और अनुसंधान संस्थानों को टीडीबी योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना, हिमाचल के स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों से जोड़ना और स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण से औद्योगिक विकास को गति देना है।
4: आत्मनिर्भर बनना हमको है तो चाहे रिसर्च हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। हमारी जो वर्कशॉप है उसी दिशा में एक कदम, रिसर्च के मामले में, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के मामले में हम कैसे आत्मनिर्भर बन सकते, तो इसलिए हम इसका आज रोडमैप भी बनाएंगे।
1: केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में बीज आलू उत्पादन पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय दक्षता विकास कार्यक्रम आज शुरू हुआ। 29 जुलाई तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश भर में स्थित संस्थान के ब्रीडर सीड उत्पादन केंद्रों के वैज्ञानिक व तकनीकी कर्मचारी भाग ले रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार की आपदा राहत पैकेज में बढ़ोतरी की घोषणा। अब पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के निर्माण को मिलेंगे 7.5 लाख रुपए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार पर श्वेत पत्र लाएगी राज्य सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, मोदी सरकार ने संसद में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक किया पेश। सार्वजनिक परीक्षाओं में धांधली करने वालों पर कसेगा शिकंजा। सांसद हर्ष महाजन ने हिमाचल की राजनीतिक व आर्थिक परिस्थितियों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की चर्चा। और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश इलाकों में वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी। कल से और रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं सचिन कपूर हूँ आपके साथ। 6 से 8 बजे तक का हमारा ये सफ़र। श्रोता अब मैं सचिन कपूर एक गीत के साथ जो है अपनी वाणी को आराम देता हूँ श्रोताओं, और मिलते हैं कल फिर हिंदी अपनी गप्पा में 4 बजे। फिलहाल मैं सचिन कपूर लेता हूँ अब इजाज़त। माता पिता की सेवा करते रहिएगा, गुरुजनों की गुरुजनों का आशीर्वाद सदैव अपने पास रखिए श्रोताओं, सदैव उनका आशीर्वाद लीजिए, पर्यावरण को जो है वो सुरक्षित रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सचिन कपूर लेता हूँ आपसे अलविदा। नमस्ते धर्मशाला।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात देकर के उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए, वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी।

0: साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
1: तुझे उसे टीबी है।
2: और भाई लास्ट बेंच को मजा अकेले।
3: पता है ना मुझे टीबी है।
2: चल तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी के दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है, तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: देख लो कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
5: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही होगा लगता, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे इस घर में और रहते ही कौन है।
7: भारी मिस्टेक हो गया सर।
6: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।
8: गजब टूबी वाला।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात देकर के उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए और वो आपको देख करके उस समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी।

0: साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठे हैं?
1: पता नहीं तुझे उसे टीबी है।
2: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले।
3: पता है ना मुझे टीबी है।
2: चल चल तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है। तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: Oh, no. देख लो कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
5: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही होगा लगता है, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे, इस घर में और रहते ही कौन है।
7: भारी मिस्टेक हो गया सर।
6: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।
5: गजब टूबी बाजा।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात देकर के उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए और वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी।

0: साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
1: तुझे उसे टीबी है।
2: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले।
3: पता है ना मुझे टीबी है।
2: चल तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है, तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: Oh, no. देख लो कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
5: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही रहेगा लगता, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे इस घर में और रहते ही कौन है?
7: भारी मिस्टेक हो गया सर।
6: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।
8: गजब टूटी बाजा।

0: छाई छाई हाय।
1: बाय बाय मिस गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय मिस गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे।

फूलों में, मैं न सोया कभी झूलों में, जीना लगा मेरा फूलों में, मैं न सोया कभी झूलों में, जुल्फों के साए में ही नींद आई आई आई।

अगर मुझसे ना मिली, सपनों में आके सारी रात जगाऊं तेरा पीछा ना ना।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुंदरकांड। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।